0: It's 9 a.m. This plan check is brought to you by
1: White-ish Beauty Cream Glowing Skin Jo Raaz, a product by Biocon International Pakistan. खुशखबरी, लेजर हेयर रिमूवल गैर जरूरी बालों को खत्म करने का जदीद हल। अब फिक्र छोड़िए, आपके शहर मेहरापुर में गिम्स अस्पताल गंबर्ट जिल्द के मशहूर डॉक्टर बशीर अहमद मेमन लेकर आए हैं चेहरे, बाजू, टांगे और पूरे जिस्म के गैर जरूरी बालों को खत्म करने के लिए महफूज और मौसर ट्रीटमेंट, बार बार वेक्स और शेविंग से निजात, नरम, साफ और खूबसूरत जिल्द, कम वक्त, बेहतरीन नतायज। अब गैर जरूरी बालों की फिक्र खत्म लेजर हेयर रिमूवल के साथ। आज ही राब्ता करें रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक, नज़्द रेलवे फाटक अक्सा मस्जिद, थरी रोड मेहरापुर, 03003385569।

जी जान चारो मसालो हर वेझे पंसार स्टोर आई जानवर जे डॉक्टर खां नालो वठी खरीद करियो। इरशाद ऑटोस आई होंडा शोरूम मेहरापुर होंडा मोटरसाइकिल जो पुर एतमाद आई बा अख्तियार इदारो इरशाद ऑटोस आई होंडा शोरूम मेहरापुर नईन मोटरसाइकिल जी सेल कंपनी जे मुकरर कर रेट ते दस्तयाब आहे। सर्विस सेंटर एटलस होंडा लिमिटेड जो वारंटी क्लेम सेंटर सर्विस एरिया जिते होंडा मोटरसाइकिल जी बेहतरीन सर्विस कई वेंदी आहे। होंडा कंपनी जा तमाम जेन्युइन स्पेयर पार्ट्स खुसूसी रियायत ते मौजूद। इरशाद ऑटोस ते पंहिंजी होंडा मोटरसाइकिल जी करायो ट्रेनिंग कंप्यूटराइज जैपनीज टेस्टिंग मशीन ज़रिए जंहिंमें मिले थी मोटरसाइकिल जी कारकर्दगी तमाम बेहतर। फ्यूल एडजस्टमेंट RPMG एडजस्टमेंट कंप्यूटराइज जापानी मशीन जरिए कई वनिए थी। होंडा जे क्वालिफाइड टेक्नीशियन जी ज़ेर निगरानी इरशाद ऑटोस हालानी रोड मेहरापुर राब्ते जे लाइ 03201800003।

0: रेजू विस्की और जवानी जिल्द हेयर नोट करवाएं। पति एंड ले नज़द रेलवे फाटक अक्सा मस्जिद थरी रोड रोड 33।
1: आयरन स्टोर हालानी
2: गल चैनल पट्टी लोही दरवाजा चौक

खुशखबरी, जर्मन होम्योपैथिक क्लिनिक सामू वधन बोटा पेट्रोल पंप कोटली कबीर रोड मेरा पर कराची इस्लामाबाद जो मशहूर डॉक्टर मंजूर हुसैन मेमन एमए डीएचएमएस सिंध आरएचएमबी इस्लामाबाद होम्योपैथिक कंसल्टेंट एंड फैमिली फिजिशियन सीनियर लेक्चरर नवाबशाह होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज नवाबशाह हर अरबा खमीस जुमे छंछर आचर सूमर

0: गुर्दे जी पथरी मसाने जी पथरी जो बगैर ऑपरेशन जी कामयाब इलाज कयो वने तो गुर्दन जो इन्फेक्शन चेहरे जो रंग सांवरो चेहरे जी खारिश फट फुरड़ियों बारन में कद जो न वधण मर्दन ऐं औरतुन में वजन जो न वधण उन्हें सभी बीमारियों जो कामयाब इलाज कयो वने तो राबते लाए 0301-9196-851।
1: खुशखबरी, क्या आप बालों के झड़ने से परेशान हैं? अब फिक्र छोड़िए, शहर मेहरापुर में रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक लेकर आया है बालों की जदीद और मौसर इलाज एक्सोसोम्स एंड पीआरपी ट्रीटमेंट के साथ बालों का झड़ना कम करने में मददगार, कमजोर जड़ों को मजबूत बनाए, नए बालों की निशोनुमा में मदद दे, बालों को घना और सेहतमंद बनाए। घने मजबूत और खूबसूरत बालों के लिए आज ही राबता करें रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक नज़्द रेलवे फाटक अक्सा मस्जिद थरी रोड मेहरापुर 03003385 69।

मस्कीन मोहम्मद आरफ लोहार आज गोछिया नवा माहिया पेश करता है इन सैयद असर नजामी लिखते ने। हाँ जी भला किवें लिखते ने।

0: Iron Store Halani, Wholesale Depot, a name to be trusted.
1: Sariya, Garder, Tier, Engel, Channel Patti, Lohi Darwaza, Silverja Chong, Cement, Reti, Kresh, Ai Rang Vagera, Bazar Kham Bariya, Dastyab Ain.
0: Hane Yachu, Mehran Iron Store, Nazd Baloch Petrol Pump, National Highway Halani.
1: Rabte Lai, Proprietor Gulam Nabi Mughal, 0300-320-04372, Ai 0242-460100.
2: आशिक होंडा शोरूम मेहरा पर एटलेस होंडा मोटरसाइकिल चुप पर एतमाद आई मा अख्तियार 3S डीलर आशिक होंडा मोटर्स मेहरा पर जिते नई मोटरसाइकिल जी सेल कंपनी जे मुकरर कल रेट ते दस्तियाब है सर्विस सेंटर एटलेस होंडा लिमिटेड जो वारंटी क्लेम सेंटर सर्विस एरिया जिते होंडा मोटरसाइकिल जी बेहतरीन सर्विस कई वेंदी आहे होंडा कंपनी जा तमाम जेन्युइन स्पेयर पार्ट्स खुसूसी रियायत ते मौजूद आशिक होंडा मोटर्स ते पहेंजे होंडा मोटरसाइकिल जी ट्यूनिंग करायो कंप्यूटराइज जैपनी स्टेचिंग मशीन जे जरिए जिन्हें मिले थी मोटरसाइकिल जी कारकर्दगी तमाम बेहतर फ्यूल एडजस्टमेंट RPM जी एडजस्टमेंट कंप्यूटराइज जापानी मशीन जरिए कई वन्य थी होंडा जे क्वालिफाइड टेक्नीशियन जे जेर निगरानी आशिक होंडा मोटर्स एड्रेस इंडस बाईपास नस्त रेलवे लाइन मेहरापुर राप्ती जिलाए आसिम हुसैन आराई 0307-359-2120
3: जहां उम्मीद के दिए जलते हैं
4: रोशनी का काफिला मंजिल की तरफ गामजन मजहर स्कूल सिस्टम मेहरापुर शानदार तालीमी इमारत प्रोफेसर कुर्बान अली मेमन एयर कंडीशन एकेडमिक ब्लॉक का इनेकार मेहनती मुशाक और तजुर्बेकार तदरीसी अमला सरसब्ज बागीचा बेहतरीन फर्नीचर शानदार कंप्यूटर फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी की लैब्स ऑडियो और विजुअल लेक्चर सिस्टम की सहूलत केमिस्ट्री फिजिक्स बायोलॉजी रियाजी और इंग्लिश पर खुसूसी तवज्जा एंट्री टेस्ट के लिए मेडिकल और इंजीनियरिंग में काबिल तहसीन नतायज खेलों का मैदान और वहां मुनक्किद होने वाले मुकाबले तहरीर तकरीर और जहनी आजमाइश के मुकाबले स्टडी टूर्स अपनी आँखों के नूर बच्चियों और प्यारे बेटों की मयारी तालीम तरबियत के लिए आज ही मजह स्कूल सिस्टम मेहरापुर का विजिट करें मजीद राबते के लिए डॉक्टर अल्ताफ हुसैन मेमन मैनेजिंग डायरेक्टर मजर स्कूल सिस्टम 0300-002724 निसार अहमद मेमन प्रिंसिपल मजर स्कूल सिस्टम मेहरापुर 0301-386-5453
5: खुशखबरी लेजर हेयर रिमूवल गैर जरूरी बालों को खत्म करने का जदीद हल अब फिक्र छोड़िए आपके शहर मेहरापुर में गिम्स अस्पताल गंबर्ट जिल्द के मशहूर डॉक्टर बशीर अहमद मेमन लेकर आए हैं चेहरे बाजू टांगे और पूरे जिस्म के गैर जरूरी बालों को खत्म करने के लिए महफूज और मौसर ट्रीटमेंट बार बार वेक्स और शेविंग से निजात नरम साफ और खूबसूरत जिल्द कम वक्त बेहतरीन नतायज अब गैर जरूरी बालों की फिक्र खत्म लेजर हेयर रिमूवल के साथ आज ही राब्ता करें रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक नज़द रेलवे फाटक अक्सा मस्जिद थरी रोड मेहरापुर 0300-338-5569 खुशखबरी क्या आप बालों के झड़ने से परेशान हैं अब फिक्र छोड़िए शहर मेहरापुर में रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक लेकर आया है बालों की जदीद और मौसर इलाज एक्सोसोम्स एंड पीआरपी ट्रीटमेंट के साथ बालों का झड़ना कम करने में मददगार कमजोर जड़ों को मजबूत बनाए नए बालों की निशोनुमा में मदद दे बालों को घना और सेहतमंद बनाए घने मजबूत और खूबसूरत बालों के लिए आज ही राबता करें रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक नज़द रेलवे फाटक अक्सा मस्जिद थरी रोड मेहरापुर 0300-338-5569
6: खूबसूरती जो असल राज सिर्फ डी स्किन ब्यूटी क्रीम हिन में मौजूद विटामिन ई बीड्स ऐं जदीद माइक्रो बीड्स फार्मूलो अवां जी स्किन के बनाए निखरी ऐं चमकदार सिर्फ बिन डीहन में डार्क स्पॉट्स के करे खत्म ऐं डीए कुदरती असली ग्लो डी स्किन ब्यूटी क्रीम असली ग्लो हर डीह जो शो अ प्रोडक्ट बाय बायोकॉन इंटरनेशनल पाकिस्तान
7: छो न खुश थियां आदी जॾहिं खां मुंहिंजे मुड़ुस ढोरनि खे सखर वारनि जो चारो मसालो खारायो आहे त खीर जी पैदावार ॿीणी थी वई आहे ऐं हाणे पैसा बि ॿीणा था अचनि ही ॾिस सोनियूं चूड़ियूं
5: त मां बि वञी चवां हुन खे त ढोरनि खे सखर वारनि जो चारो मसालो ई खाराए
2: जी जान चारो मसालो हर वेझे पंसार स्टोर ऐं जानवरनि जे डॉक्टर खां नालो वठी ख़रीद करियो
0: खुशख़बरी जर्मन होम्योपैथिक क्लिनिक साम्हूं वधण बोटा पेट्रोल पंप कोटली कबीर रोड मेरापुर कराची ऐं इस्लामाबाद जो मशहूरु डॉक्टर मंज़ूर हुसैन मेमण एम ए डी एच एम एस सिंध आर एच एम पी इस्लामाबाद होम्योपैथिक कंसल्टेंट ऐं फैमिली फिज़िशियन सीनियर लेक्चरर नवाबशाह होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज नवाबशाह हर अरबा ख़मीस जुमे छंछर आचर

0: मसाने जी पथरी जो बगैर ऑपरेशन जी कामयाब इलाज कयो वने तो गुर्दन जो इन्फेक्शन चेहरे जो रंग सांवरो चेहरे जी खारिश फट फुरड़ियों बारन में कद जो न वधण मर्दन ऐं औरतुन में वजन जो न वधण उन्हें सभी बीमारियों जो कामयाब इलाज कयो वने तो राबते लाए 0301-96-8051
1: अस्सलाम वालेकुम अदा
2: वालेकुम अस्सलाम अदा छो परेशान आई
1: अदा नओ दुकान खोलियो तम पर हले ही न तो छा कजे
2: अदा दुकान जी मशवरी कराई थई
1: न अदा
3: यार आज कल शहरन तोड़े गोठन में जी मेरा पर एफएम 94 ही हले थो मु पंजो दुकान खोलियो तो एफएम मेरा पर ते पब्लिसिटी कराई कारोबार एड़ो कामयाब जो एड बंद कराण ते दिल्ली नथी चवे
1: मुजे दुकान जी बेड हलंदी
2: हां दा कारोबारी इश्तिहारात आम इतला मिलाद मजलिस सालगिरह जी मुबारक मतलब

0: It's 11 a.m. This time check is brought to you by
1: White Ish Beauty Cream, Glowing Skin Jo Raaz, a product by Biocon International Pakistan.
2: अब आप सुनेंगे GAFM नेटवर्क पर KTN News.
3: कराची में फोर्सेस की कार्रवाई में फितनल खारजी जा दहशतगर्द मारजी विया शेरशाह में सिटी डी रेंजर्स अहलकारन सा फायरिंग जी वठ में एक दहशतगर्द मारजी वयो सिटी डी असास इदारन जे अहलकार जो जमाली पुल बरसा दहशतगर्दन सा मुकाबलो थियो पुलिस रेंजर्स ते हमलन में मुलविस एक दहशतगर्द मारजी वयो अमेरिका में हिम्मत आए तो ईरानी फौज के मोडे असा के दबा धमकिन से झुकाए नो सके ईरानी सदर मसूद पज़ेशान है तो अमेरिका जारियत बंद करे तो आबनाह अरुस खुली वो आबनाह अरुस बाबत सूमर से ओमान से मुआदे से सयू थी वो अरब मुल्क के सरजमीन त ईरान से हमला थे अमेरिका के पाबंदियों नाकाबंदी खत्म करण घुर्ज इस्माइल बकाई आबनाह अरुम जो कंट्रोल ईरान वट है तेल कीमत में वाद जो जिम्मेवार भी अमेरिका है सऊदी अरब उर्दन ए जापान के ईरान खिलाफ ठहराव की हिमायत करण से नतीजा भोगना पवंदा ईरान के कौमी सलामती बाबत सलाहकार इब्राहिम अजीज़ी मुतालबन की मंझता तीन अमरीका से गालू न थन्दियों

हुसैन जा सऊदी अरब से हमला जारी, वधीक ब जणा जख्मी, मस्जिद इमारतन ए गाडियन के नुकसान पहुतो। सऊदी अरब के शहर जाजान में यमनी हुसैन के मिजाइल हमले में ब जणा जख्मी थी पिया। सऊदी अरब के सिविल डिफेंस तर्जमान चवण आए तो शहरी अंदर के निशानो बणाए आलमी कानून की भंकड़ी आए। इराक पाड़ेसरी मुल्क खिलाफ लॉचिंग पेड से न बणजंदो। इराकी वजीर आजम है तो पांजे सरजमीन ता पाड़ेसरी मुल्क खिलाफ कें भी सरगर्मी के रोको वेंदो। पांजे सरजमीन पाड़ेसरी मुल्क खिलाफ इस्तेमाल थियण न डींदासीं। असांजी सलामती के नुकसान पहुंचाने की कोशिश अवाम के इतिहाद सामूं नाकाम थींदी। मुस्लिम लीग नून पारां पंजाब में बलदियाती चूंडू कराइण जूं तयारियूं शुरू करे छॾियूं। मुस्लिम लीग नून पंजाब जे सदर राणा सनाला जी सदारत हेठे इजलास में पार्टी उहिदेदारनि खे चूंडुनि जी तयारी जी हिदायत कई। इजलास में नवनि सूबनि बाबति बि ॻाल्हियूं कई वयूं।

0: साउथ एशियन फेस्टिवल पारां तकरीब नवनि सूबनि जी मुखालफ़त ज़िलनि खे इख़्तियार ॾियण जी घुर। तकरीब में मज़हर अब्बास, इफ्तिखार आलम, नसीर मेमण, जामी चांडियो, ख़ालिद खोखर, मोहम्मद ख़ान अबड़ो ऐं ॿिया शरीफ़। संदन चवण आहे त मुल्क में सूबनि खे टोड़ण जूं ॻाल्हियूं कंदड़ इंतिशार पखिड़े रहिया आहिनि। सूबनि खे टोड़ण सां पाकिस्तान तरक़ी त न कंदो पर उबतो मुल्क जो वजूद ख़तरे में पइजी वेंदो। सूबनि खे टोड़ण वारनि ॻाल्हियूं करण बदिरां ज़िले सतह ते इख़्तियार ॾिना वञनि। ऐं नवाब अली मोहम्मद ऐं नौजवान जी गुमशुदगीअ ख़िलाफ़ एहतजाज करण ते काज़ी अहमद एक्शन कमेटीअ जे अॻवाननि समेत हुन जा अजरनि ख़िलाफ़ केस दाख़िल। नौजवान उमेर जून जे गुमशुदगीअ ख़िलाफ़ थाणे अॾो एहतजाज कयो वियो। एहतजाज कंदड़नि मथां बचलपुर थाणे ते 34 सुञातलनि समेत 49 ॼणनि ख़िलाफ़ ड्यूटी अटका जो केस दाख़िल कयो वियो, जॾहिं त 8 ॼणनि खे गिरफ़्तार कयो वियो आहे।
1: आप सुन रहे थे GAFM नेटवर्क पर KTN न्यूज।
2: खुशखबरी, अपनी जिल्द को दे नई ताजगी, चमक और खूबसूरती हाइड्रा फेशियल के साथ। अब फिकर छोड़िए, आपके शहर मेहरापुर में रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक लेकर आया है। गहरी सफाई और फोरी ग्लो जिल्द को नरम और हाइड्रेट करे, सन डैमेज और रंगत बेहतर बनाने में मददगार। फेशियल रेजुविनेशन, साफ तरोताजगी और जवान नजर आने वाली जिल्द जदीद टेक्नोलॉजी के साथ, महफूज और मौसर स्किन केयर। नोट, खवातीन स्टाफ की निगरानी में की जाती है। आज ही अपनी अपॉइंटमेंट बुक करवाएं। पता, रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक, नजद रेलवे फाटक, अक्सा मस्जिद, थरी रोड, मेहरापुर, 03003385569।
3: असली चीजां चारों मसालों जी सुनियाण पर ट्रेडमार्क नंबर 34-2000 डीसी करे खरीद कंदा। जीजान चारों मसालो, ढोर जो हाजमो दुरुस्त। जीजान चारों मसालो, ढोर सेहतमंद। जीजान चारों मसालो, जीजान चारों मसालो, हर वेझे पंसार स्टोर ऐं जानवरन जे डॉक्टर खां नालो वठी खरीद करियो। इरशाद ऑटोस ऐं होंडा शोरूम मेहरापुर। होंडा मोटरसाइकिल जो पुर एतमाद ऐं बा अख़्तियार इदारो इरशाद ऑटोस ऐं होंडा शोरूम मेहरापुर। नईं मोटरसाइकिल जी सेल कंपनीअ जे मुक़रर कयल रेट ते दस्तियाब आहे। सर्विस सेंटर एटलस होंडा लिमिटेड जो वारंटी क्लेम सेंटर सर्विस एरिया, जिते होंडा मोटरसाइकिल जी बेहतरीन सर्विस कई वेंदी आहे। होंडा कंपनीअ जा तमाम जेन्युइन स्पेयर पार्ट्स ख़ुसूसी रियायत ते मौजूद। इरशाद ऑटोस ते पंहिंजी होंडा मोटरसाइकिल जी

0: के साथ। बैंक इस्लामी गोल्ड बेस्ड फाइनेंसिंग से अमानत को अपनी जगह रहने दो। आज ही 1114752 64 या bankislami.com.pk पर अप्लाई करें। शराइत जवाबित लागू हैं।
1: मेहरान आयरन स्टोर हालानी होलसेल डिपो अ नेम टू बी ट्रस्टेड
2: सरिया गार्डर टीएल एंगल चैनल पट्टी लोही दरवाजा सिल्वर जा चौंक सीमेंट रेती क्रेश आई रंग वगैरह बाजार का बारिया दस्तियाब आई
1: हाने यचो मेहरान आयरन स्टोर नज़द बलोच पेट्रोल पंप नेशनल हाईवे हालानी
2: राब्ते लाए प्रोप्राइटर गुलाम नबी मुगल 03003204372 02424601 00।
3: हर नजर आपकी खूबसूरती पर ठहर जाए और ये है मेरी खूबसूरती का राज मिल्क राइज ब्यूटी क्रीम। सिर्फ 3 दिन में जिल्द को निखारे और रंगत को रोशन करे, दाग धब्बे झुर्रियां और कील मुहासे फौरन कम करे। इस्तेमाल का आसान तरीका, रात को मिल्क राइज ब्यूटी सोप से चेहरा धोएं, फिर मिल्क राइज ब्यूटी क्रीम चेहरे और गर्दन पर लगाएं। नताइज देखें सिर्फ 3 दिन में। एक्नी के लिए मिल्क राइज एक्नी क्रीम इस्तेमाल करें। दस्तियाब प्रोडक्ट्स मिल्क राइज ब्यूटी क्रीम, मिल्क राइज ब्यूटी सोप, मिल्क राइज एक्नी क्रीम। हर अच्छे कॉस्मेटिक जर्नल स्टोर से नाम लेकर खरीदें। मजीद मालूमात के लिए मलिक जफर इकबाल एंड एम सिद्दीक शाही बाजार मेहरापुर 03000 3105109 03005109।
4: अदा
5: वालेकुम अस्सलाम। अदा छो परेशान आई?
4: अदा नओ दुकान खोलियो तम पर हले ही न तो छा कजे?
5: अदा दुकान जी मशहूरी कराई थई
4: न? अदा
1: यार आज कल शहरन तोड़े गोठन में जी मेरा पर FM 94 ही हले थो। मु पंजो दुकान खोलियो तो FM मेरा पर ते पब्लिसिटी कराई। कारोबार एड़ो कामयाब जो एड बंद कराण ते दिल्ली नथी चवे।
4: मुझे दुकान जी बेड हलंदी?
5: हां दा कारोबारी इश्तिहारात आम इतला मिलाद मजलिस सालगिरह जी मुबारक मतलब हर किस्म जी एडवर्टाइजिंग हलंदी आए।
4: अदा जल्दी कर मुखे बुंजी एड्रेस तो बुदा।
1: ऑफिस जी मेरापुर
6: सखर टाउनशिप मेन बाईपास रोड सखर राबतो
5: रास्ते लाए हाकिम अली जिस्कानी
7: 03013992836।
8: मेहरापुर के हो तो आवाज भी मेहरापुर की है। सुनते रहो जी FM 94।

0: खुशखबरी, लेजर हेयर रिमूवल गैर जरूरी बालों को खत्म करने का जदीद हल। अब फिक्र छोड़िए, आपके शहर मेहरापुर में गिम्स अस्पताल गंबर्ट जिल्द के मशहूर डॉक्टर बशीर अहमद मेमन लेकर आए हैं चेहरे, बाजू, टांगे और पूरे जिस्म के गैर जरूरी बालों को खत्म करने के लिए महफूज और मौसर ट्रीटमेंट। बार बार वेक्स और शेविंग से निजात, नरम, साफ और खूबसूरत जिल्द, कम वक्त बेहतरीन नतायज। अब गैर जरूरी बालों की फिक्र खत्म लेजर हेयर रिमूवल के साथ। आज ही राब्ता करें रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक, नज़्द रेलवे फाटक अक्सा मस्जिद, खरी रोड मेहरापुर, 0300-338-5569।
1: अपना शहर अपना घर मेहरापुर, और मेहरापुर की आवाज़ GAFM 94।

हमारे साथ मौजूद हैं अब्दुल मजीद बुगटी. कहते हैं कि अब्दुल मजीद बुगटी रोड़ी से शो नाई से आरजे सन्ना. थैंक यू सो मच अब्दुल मजीद बुगटी. और आपने मेरे शो को एंजॉय किया है, मुझे ज्वाइन किया है, मेरी आवाज़ को सुने तो लाइक भी करें, कमेंट भी करें और शेयर भी करें. और मुझे बताएं कि आपको मेरा शो कैसा लगता है. ऐसे ही आपने हर संडे मेरे साथ ज्वाइन रहना है और मेरे साथ अपनी आके सारी बातें करनी है. और आओ बात करने में रहना है हर इतवार को साथ सुबह 11 से दोपहर 1 बजे तक, पूरे पूरे 2 घंटे तक आपने अपनी सारी बातें मुझे बतानी हैं. तो जी अच्छा लगा आपने मुझे ज्वाइन किया. ऐसे आपने मुझे ज्वाइन करते रहना है हर संडे को. अच्छा जी, इसके अलावा हमारे साथ मौजूद हैं अब्दुल रज़ाक. कहते हैं मोहम्मद खान खंबार, वफा जमाल खंबार, सरदार सरदार मोहम्मद अली खंबार हेलीपोर्टर स्टाफ से शो सुन रहे हैं. बहन सना थैंक यू सो मच, आप लोग मुझे सुन रहे हैं, इतने सारे लोग, आप सबको मेरा सलाम हूँ. अब्दुल रज़ाक आपको भी, और कैसे हैं आप? और आपने बहुत टाइम बाद मुझे ज्वाइन किया, बल्कि सॉरी मैं आपके पास बहुत टाइम बाद आई हूँ. ओके जी, आप मुझे हमेशा ज्वाइन करते हैं, ऐसी बहुत खुशी होती है. ऐसी आपने हर इतवार को मुझे ज्वाइन करते रहना है. और जैसा कि मैं तो आपके साथ होती हूँ मौजूद, और ऐसे ही जैसे कि आप लोग मुझे बर्दाश्त कर रहे होते हैं तो ऐसे ही. तो और इसके अलावा मैं आपको बताऊँ कि आओ बात करें का मतलब ये नहीं होता कि आप लोगों ने सिर्फ मुझसे बहुत सारी बातें सुननी होती हैं, आप लोगों ने अपनी भी बहुत सारी बातें करनी होती हैं, बतानी होती हैं. तो जी आप लोग मुझे बताएं कि अभी आप लोग क्या कर रहे हैं, कहाँ से आप लोग मुझे ज्वाइन कर रहे हैं, मीन्स कि आप लोग क्या कर रहे हैं. जो ऐसा आप लोगों ने मुझे भी ज्वाइन किया हुआ है और अपना कोई एक्टिविटी जो कर रहे हैं वो भी मुझे ज़रूर बताइएगा. और जो आज ही आपकी एक्टिविटी होने वाली है वो भी जरा मुझे बताएं कि वो आज आपकी एक कौन सी एक्टिविटी है जो आज आप करने वाले हैं. अच्छा, जो अभी गाड़ी चला रहा होगा तो उसको कितने मजे की सॉन्ग सुन रहे होंगे. जो अभी जो गाड़ी में होगा वो कह रहा होगा सॉन्ग चलाएं. तो जी अगर आप लोग अपने पसंद का सॉन्ग सुनना चाहते हैं तो मेरे सवाल का जवाब मुझे अभी दे दें, और साथ में अपने पसंदीदा सॉन्ग का नाम भी जरूर लिख के भेज दें, ताकि अगर आपका जवाब ठीक होगा तो आपका सॉन्ग ऑटोमेटिकली चल जाता है. तो यही रूल्स है मेरा, तो जाके जाइए और मेरे सवाल का जवाब बताइए. अगर मेरा सवाल किसी ने अभी तक नहीं सुना तो मैं उसको अपना सवाल बता देती हूँ कि जी मेरा जो सवाल मेरा ये है कि आप लोगों ने बताना कि अगर एक मुर्गा सुबह के वक्त अंडा दे रहा है तो वो कितनी देर तक हम उसको खा सकते हैं. जरा जाइए और पता लगा के और मुझे बताइए जरूर. जब तक यहाँ पर कर रही हूँ मैं आप लोगों का वेट.

खुशखबरी जर्मन होम्योपैथिक क्लिनिक सामू वदन बोटा पेट्रोल पंप कोटली कबीर रोड मेरा पर कराची इस्लामाबाद जो मशहूर डॉक्टर मंजूर हुसैन मेमन एम ए डी एच एम एस सिंध आर एच एम पी इस्लामाबाद होम्योपैथिक कंसल्टेंट एंड फैमिली फिजिशियन सीनियर लेक्चरर नवाबशाह होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज नवाबशाह हर अरबा खमीस जुमे छंछर आचर सोम

0: तो मेरा फैन।
1: वाइट एच ब्यूटी क्रीम 5 डे ब्यूटी प्लान के साथ एलोवेरा विटामिन और एवोकाडो की भरपूर खूबियाँ, जिसके मिनरल्स स्किन में फुली एब्जॉर्ब हो जाएं, स्किन को फेयर और फ्रेश बनाए, आपको दे बेताब निखरा निखरा चेहरा। वाइट एच ब्यूटी सोप से मिले चमकता निखार ताजगी के साथ। वाइट एच ब्यूटी क्रीम, ग्लोइंग स्किन का राज, अ प्रोडक्ट ऑफ बायोकॉन इंटरनेशनल पाकिस्तान।
2: अस्सलाम वालेकुम अदा।
3: वालेकुम अस्सलाम अदा, छो परेशान आई?
2: अदा नओ दुकान खोलियो तम पर हले ही न तो, छा कजे?
3: अदा दुकान जी मशवरी कराई थई
2: न अदा?
4: यार आजकल शहरन तोड़े गोठन में जी मेरा पर FM 94 ही हले थो। मु पंजो दुकान खोलियो तो FM मेरा पर ते पब्लिसिटी कराई, कारोबार एड़ो कामयाब हो जो एड बंद कराण ते दिल्ली नथी चवे।
2: मुझे दुकान जी बे डरंदी?
3: हां अदा, कारोबारी इश्तिहारात, आम इतला, मिलाद, मजलिस, सालगिरह जी मुबारक, मतलब हर किस्म जी एडवर्टाइजिंग हलंदी।
2: अदा जल्दी कर मुखे बुंजी एड्रेस तो बुदा।
4: ऑफिस जी मेरापुर FM 94 नज गर्ल्स डिग्री कॉलेज हालानी रोड मेरापुर।
3: राबते लाए हाकिम अली जिसकानी
5: 03013992836।
6: मेहरापुर के हो तो आवाज भी मेहरापुर की है, सुनते रहो जी FM 94।

जी आपने मेरे सवाल का जवाब दीजिए और अपने पसंदीदा सॉन्ग का नाम बताइए ताकि हम लोग प्ले करें और आपके मजे के सॉन्ग हम भी तो एंजॉय करें भाई. सवाल मेरा आप लोगों से यही है कि आप लोगों ने बताना है कि अगर एक मुर्गा सुबह में एक अंडा दे रहा है तो वो हम कितनी देर तक खा सकते हैं. आज जाइए और पता लगाइए और मुझे जरूर बताइए यहाँ पर जब तक हम सुनते एक और सॉन्ग.

0: 7:45 AM. This time check is brought to you by
1: Bank Islam ne laya Pakistan ka pehla Sharia compliant gold based financing.
2: Moro,
3: Noshehro,
2: Mirpur Khas,
3: Larkana,
2: Sakhar.
0: AM. This time check is brought to you by
1: Bank Islam ne laya Pakistan ka pehla Sharia compliant gold based financing.
4: Aashiq Honda Showroom Mehrabpur Atlas Honda Motorcycle 2 per Aitmad Aimba Akhtiar 3S Dealer Aashiq Honda Motors Mehrabpur Jite nai motorcycle ji sale Company aje mukarar kel rate de dastiyab ahe Service Center Atlas Honda Limited jo Warranty Claim Center Service Area Jite Honda Motorcycle ji behtareen service kai vendi ahe Honda Company aja tamam genuine spare parts khususi riayat te maujood Aashiq Honda Motors te pehje Honda Motorcycle ji tuning karayo Computerized Japanese Stitching Machine je zariye jehme mile thi motorcycle ji karkardgi tamam better fuel adjustment RPM ji adjustment computerized Japanese machine zariye kai vane thi Honda je qualified technician je zair nigrani Aashiq Honda Motors address Indus bypass Nast Railway Line Mehrabpur Rabte Jilai Asim Hussain Arai 0307-3592120
1: Sona Sirf Zewar Nahi Har Ghar Ki Amanat Hoti Hai Isi Liye Bank Islam Ni Laya Pakistan Ka Pehla Sharia Compliant Gold Based Financing Jisse Mile 50 Lakh Rupay Tak Ki Financing 4 Saal Tak Ki Muddat Ke Saath Bank Islami Gold Based Financing Se अमानत को अपनी जगह रहने दो आज ही 1114752642164 या bankislami.com.pk पर अप्लाई करें शरायत और जवाबत लागू हैं
5: जिंदगी गुजारियो एतमाद सा कुरान के समझी बुधंदा रहो डॉक्टर फरहत हाशमी जो प्रोग्राम तालीमुल कुरान रोजानो सुबह 9 लगी 5 मिनटन ते सिर्फ GFM 88 नेटवर्क ते खुशखबरी क्या आप बालों के झड़ने से परेशान हैं अब फिक्र छोड़िए शहर मेहरापुर में रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक लेकर आया है बालों की जदीद और मौसर इलाज 100 सोम्स एंड पीआरपी ट्रीटमेंट के साथ बालों का झड़ना कम करने में मददगार कमजोर जड़ों को मजबूत बनाए नए बालों की निशोनुमा में मदद दे बालों को घना और सेहतमंद बनाए घने मजबूत और खूबसूरत बालों के लिए आज ही رابطہ करें रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक नजद रेलवे फाटक अक्सा मस्जिद Thari Road Mehrabpur 0300-338-5569 खुशखबरी लेजर हेयर रिमूवल गैर जरूरी बालों को खत्म करने का जदीद हल अब फिकर छोड़िए आपके शहर मेहरापुर में गिम्स अस्पताल गंबर्ट जिल्द के मशहूर डॉक्टर बशीर अहमद मेमन लेकर आए हैं चेहरे बाजू टांगे और पूरे जिस्म के गैर जरूरी बालों को खत्म करने के लिए महफूज और मौसर ट्रीटमेंट बार-बार वैक्स और शेविंग से निजात नरम साफ और खूबसूरत जिल्द कम वक्त बेहतरीन नतीजे अब गैर जरूरी बालों की फिकर खत्म लेजर हेयर रिमूवल के साथ आज ही رابطہ करें रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक नजद रेलवे फाटक अक्सा मस्जिद थरी रोड मेहरापुर 0300-338-5569 खुशखबरी अपनी जिल्द को दे नई ताजगी चमक और खूबसूरती हाइड्रा फेशियल के साथ अब फिकर छोड़िए आपके शहर मेहरापुर में रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक लेकर आया है गहरी सफाई और फोरी ग्लो जिल्द को नरम और हाइड्रेट करे सन डैमेज और रंगत बेहतर बनाने में मददगार फेशियल रेजुविनेशन साफ तरोताजगी और जवान नजर आने वाली जिल्द जदीद टेक्नोलॉजी के साथ महफूज और मौसर स्किन केयर नोट खवातीन स्टाफ की निगरानी में की जाती है आज ही अपनी अपॉइंटमेंट बुक करवाएं पता रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक नजद रेलवे फाटक अक्सा मस्जिद थरी रोड मेहरापुर 0300-338-5569
6: अपना शहर अपना घर मेहरापुर और मेहरापुर की आवाज GAFM 94

अच्छा जी, जिसने जो मुझे अभी न्यूली सुन रहा है और ज्वाइन करने के लिए परेशान है, तो जी मैं आपको बताऊं दोबारा कि आप लोग मुझे ज्वाइन इतने आसान तरीके से कर सकते हैं। आप लोगों ने क्या करना है, मोबाइल उठाना है और टाइप करना है SKR लिख के सेंड करना है अपने 8881 पे अपने नाम के साथ, शहर के नाम के साथ। आप लोग मुझे SMS कर सकते हैं और उसके अलावा जो मुझे लाइव फेसबुक से सुनना चाहते हैं, फेसबुक को ऑन करना है, फेसबुक को ऑन करने के साथ आपने जाके GFM88 का पेज ओपन कर लेना, आपको मेरे नाम का फ्लायर दिख जाता है, आओ बात करें विद अर्जुन सिन्हा के साथ, तो आपने जाके वहाँ पर मुझे मेरी आवाज़ सुननी है और आवाज़ को सुनने के साथ देर किया बगैर लाइक करना, कमेंट करना और शेयर करना है और मुझे कमेंट करके बताना है कि आप लोग मेरे साथ मौजूद हैं और मेरे सवाल सुन चुके हैं। और अगर मेरा सवाल नहीं सुना तो मैं आपको दोबारा से रिपीट कर देती हूँ। जी मेरा सवाल ये था कि आपने मुझे बताना है कि अगर सुबह में एक जो है मुर्गा एक अंडा देता है तो वो हम कितनी देर तक खा सकते हैं, आपने जाके ये पता लगाना है और मुझे जाके बताना है। अच्छा, हम मुझे कमेंट्स आना शुरू हो गए हैं तो जी हम लोग जो है ना कमेंट्स देख लेते हैं और इसके बाद हम लोग सुनेंगे एक और खूबसूरत सा राहत फतेह अली खान की आवाज़ में सॉन्ग, जो कि हमने बहुत टाइम से नहीं सुना, बल्कि मैंने तो बिल्कुल अकेले नहीं सुना, जब भी सुनती हूँ हमेशा आप लोगों के साथ ही, तो ये सॉन्ग भी मैं आज आपके साथ सुनूंगी। लेकिन इससे पहले देखते हैं हमारे साथ और कौन मौजूद है। अब्दुल रजाक ने हमें सवाल का जवाब दिया है और सवाल का जवाब देने के बाद वो कहते हैं कि सॉन्ग हट मथे कया हत मथे कया आसी। अच्छा जी, ज़रूर ज़रूर ये वाला सॉन्ग प्ले करेंगे, जब अगर आपका सवाल बिल्कुल ठीक होगा तो आपका सॉन्ग ऑटोमेटिकली प्ले हो जाएगा। और ऐसे ही मसरूर अहमद ने भी हमें सवाल का जवाब दे दिया है और कहते हैं कि जो सवाल का जवाब दिया है पता नहीं कि ठीक है या नहीं, लेकिन इसका राइट आंसर तो हम आपसे ही सुनेंगे। जी बिल्कुल, इसका राइट आंसर मैं आपको मैं ही बताऊंगी लास्ट में। और अगर आप अपने पसंदीदा कोई सॉन्ग सुनना चाहते हैं वो भी ज़रूर बता दें, ताकि अगर आपका जवाब बिल्कुल ठीक होगा तो हम लोग सॉन्ग प्ले करेंगे ज़रूर। तो चलिए यहाँ पर सुनते हैं हम लोग राहत फतेह अली खान की आवाज़ में जो मैंने सॉन्ग आपको बताया है, वो सॉन्ग हम लोग प्ले करते हैं, वो सुनते हैं।

तो जी सुन रहे थे यहाँ पर हम लोग जो है राहत फतेह अली खान की आवाज में एक सॉन्ग चार्ट। तो जी कैसे हैं आप सब सारे सॉन्ग सुनने के बाद? तो जी यकीन आप लोगों ने मेरे पसंद का सॉन्ग सुना होगा, और जो कि न्यूली सॉन्ग होते हैं या कोई भी ऐसी बहुत टाइम बाद जो हम नहीं चलाए होते तो वो हमेशा आप लोगों के साथ ही सुन रही होती हूँ। तो यहाँ पर अभी हम बस और सारे लोग मौजूद हो गए हैं, और जैसा कि आपको पता है कि 12 बजने वाले हैं, और 12 बजे तक ही मैंने आप लोगों से कहा था कि मैं अपने सवाल का जवाब आप लोगों से लूँगी, लेकिन अभी तक आप लोगों ने सबने मुझे जवाब नहीं दिया है, और जिसने भी दिया है वो सॉन्ग के नाम नहीं बताए हैं। तो जी ज़रूर, और इकबाल लशारी ने भी जो है हमें सवाल का जवाब दिया है, और कहते हैं कि विलय सोनू खान लशारी मीरपुर खास से सुन रहे हैं बाजी सना, और सवाल का जवाब उन्होंने मुझे दिया है जी ओके। और आपने मुझे कोई सॉन्ग का नाम नहीं बताया इकबाल लशारी, अगर आप मुझे सॉन्ग का नाम बता देंगे तो ये तो बहुत ज़्यादा ही वेल एंड गुड हो जाएगा, कि ताकि अगर आपका जवाब बिल्कुल ठीक होगा तो हम आपका सॉन्ग प्ले कर देंगे आपके नाम लेकर। तो आपको कोई भी अगर सॉन्ग पसंद है, कोई भी ऐसा कोई सॉन्ग जो हमने नहीं सुना हो या सुना भी हो तो चलें ठीक है, अगर आपको पसंद है तो आप मुझे ज़रूर बताएं, ताकि वो सॉन्ग हम आपके साथ सुने, हम भी इंजॉय करें आपके पास पसंदीदा सॉन्ग को, और आप हमारे साथ इंजॉय करें अपने पसंदीदा सॉन्ग को। तो जाइए मुझे बताइए कि आपके पसंदीदा सॉन्ग कौन सा है। जी यहाँ पर टाइम होता है अभी हमारे साथ एक न्यूज़ ब्रेक की तरफ जाने का, और हम जैसे ही अभी न्यूज़ ब्रेक की तरफ जाएंगे वापस आएंगे, वापस आके लूँगी मैं अपने सवाल का जवाब आप लोगों से सबसे। तो रहेगा मेरे साथ नहीं जाएगा नहीं, क्योंकि न्यूज़ में पता भी तो अभी हम लोगों को पता चले कि दुनिया में हो क्या रहा है, तो न्यूज़ हमें बताती है कि अभी हम लोग कहाँ हैं और जो है पूरी दुनिया में क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा, तो ये सारी रिपोर्ट हमें मिल जाती है न्यूज़ के जरिए, तो न्यूज़ सुनना भी ज़रूरी है। तो जी चलते हैं एक न्यूज़ ब्रेक की तरफ और वापस आते हैं, वापस आगे करते हैं बाकी की बात। रहेगा मेरे साथ

0: मियाँ साहब का खबर शामिल कंदा हलूं त मियाँ साहब जो गोठ मंदो आहे। शहर जाज़ान में यमनी हुसैन जे मिज़ाइल हमले में ब ॼणा ज़ख़्मी थी पिया। सऊदी अरब जे सिविल डिफेंस तर्जमान जो चवण आहे त शहरी हंधनि खे निशानो बणाइण आलमी कानून जी भञकड़ी आहे। कराचीअ में फोर्सिस जी कार्रवाईअ में फितनल खारजीन जा ॿ दहशतगर्द मारिजी विया। शेरशाह में सीटीडीए रेंजर्स अहलकारनि सां फायरिंग जी ॾेवठ में हिकु दहशतगर्द मारिजी वियो। सीटीडीए असास इदारनि जे अहलकारनि जो जमाली पुल भरिसां दहशतगर्दनि सां मुक़ाबिलो थियो। पुलिस ऐं रेंजर्स ते हमलनि में मुलविस हिकु दहशतगर्द मारिजी वियो। इराक पाड़ेसरी मुल्कनि ख़िलाफ़ लाचिंग पेड न बणजंदो। इराकी वज़ीर आज़म चयो आहे त पंहिंजे सरज़मीन तां पाड़ेसरी मुल्कनि ख़िलाफ़ कंहिं बि सरगर्मीअ खे रोकियो वेंदो। पंहिंजे सरज़मीन पाड़ेसरी मुल्कनि ख़िलाफ़ इस्तेमाल थियण न ॾींदासीं। असांजी सलामतीअ खे नुक़सान पहुचाइण जी कोशिश अवाम जे इताद साम्हूं नाकाम थींदियूं। मुस्लिम लीग नून पारां पंजाब में बलदियाती चूंडियूं कराइण में तयारियूं शुरू करे छॾियूं। मुस्लिम लीग नून पंजाब जे सदर राणा सनाला जी सदारत हेठि इजलास में पार्टी उहिदेदारनि खे चूंड जी तयारीअ जी हिदायत कई वई। इजलास में नवनि सूबनि बाबति बि ॻाल्हि कई वई। धाबे जी पंपिंग स्टेशन ते बिजलीअ जो ब्रेक डाउन। कराचीअ खे पाणी फरहमी मुतासिर। बिजली बंदि थियण सबबि मलीर लांडी चोरंगी डिफेंस क्लिफ्टन समेत ॿियनि इलाइक़नि खे फरहमी बंदि। पाणीअ जी फरहमी बंदि थियण करे मुख़्तलिफ़ इलाइक़नि में पाणीअ जो बोहरान पैदा थी वियो। शहरी तकलीफ़ुनि जो शिकार वाटर बोर्ड इंतिज़ामिया जो चवणु आहे त के इलेक्ट्रिक सिस्टम में केबल फॉल्ट सबबि सुबुह 6 वॻे जो ब्रेकडाउन थियो। बिजली बंदि थियण सबबि धाबे जी पंपिंग स्टेशन जा 21 मां 10 पंप बंदि थी विया आहिनि। लंडन में साउथ एशियन फेस्टिवल पारां तकरीब 9 सूबनि जी मुखालफ़त। ज़िलनि खे इख़्तियार ॾियण जी घुर। तकरीब में मज़हर अब्बास, इफ्तिखार आलम, नसीर मेमुन, जामी चांडियो, ख़ालिद खोखर, मोहम्मद खान अबड़ो ऐं ॿिया शरीक। संदनि चवणु आहे त मुल्क में सूबनि खे टोड़ण जूं ॻाल्हियूं कंदड़नि ॾिफेर पेरा करे रहिया आहिनि। सूबनि खे टोड़ण सां पाकिस्तान तरक़ी त न कंदो पर उबतो मुल्क जो वजूद ख़तरे में पइजी वेंदो। सूबनि खे टोड़ण वारनि ॻाल्हियूं करण बदिरां ज़िले सतह ते इख़्तियार ॾिना वञनि। मियाँ साहब वेझो ॻोठ मुंदोवा में कारा इल्ज़ाम हेठि चाची हथां नींगिरी क़तल। पुलिस जो चवणु आहे त जवाबदार क़ाइमदीन चांडियो पिस्टल जा फायर करे 14 वरनि जी फातिमा खे क़तल कयो आहे। नींगिरीअ जो लाश पोस्टमार्टम बाद वारसनि हवाले। मर घर पहुचण ते कोहराम मची वियो। नवाब वली मोहम्मद में नौजवान जी गुमशुदगीअ ख़िलाफ़ एहतजाज करण ते काज़ी अहमद एक्शन कमेटी जे अॻवाननि समेत 49 ॼणनि ख़िलाफ़ केस दाख़िल। नौजवान उमेर जूणे जे गुमशुदगीअ ख़िलाफ़ थाणे आॾो एहतजाज कयो वियो। एहतजाज कंदड़नि मथां बचलपुर थाणे ते 34 सुञातलनि समेत 49 ॼणनि ख़िलाफ़ ड्यूटी अटका जो केस दाख़िल कयो वियो, जॾहिं त 8 ॼणा गिरफ़्तार।
1: आप सुन रहे थे GAFM नेटवर्क पर KTN न्यूज।
2: माशाला फौजी पाइप फैक्ट्री नर्स्ड गर्ल्स डिग्री कॉलेज हालाणी रोड मैरापुर असां वटि जॻह जूं ॾियारियूं जॻह जा पावा ऐं पाइप 2, 4, 6, 9 ऐं 12 इंच में प्लेन ऐं कालम में मौजूद आहिनि। फौजी भाइरनि लाइ ख़ुसूसी रिआयत हूंदी। राब्ते लाइ फौजी अब्दुल करीम 0301-5431-456 ऐं तौकीर अहमद 0306-1623-793।
3: इरशाद ऑटोस ऐं होंडा शोरूम मेहरापुर। होंडा मोटरसाइकिल जो पुर एतमाद ऐं बा अख़्तियार इदारो इरशाद ऑटोस ऐं होंडा शोरूम मेहरापुर। नईं मोटरसाइकिल जी सेल कंपनीअ जे मुक़रर कयल रेट ते दस्तियाब आहे। सर्विस सेंटर एटलस होंडा लिमिटेड जो वारंटी क्लेम सेंटर सर्विस एरिया, जिते होंडा मोटरसाइकिल जी बेहतरीन सर्विस कई वेंदी आहे। होंडा कंपनीअ जा तमाम जेन्युइन स्पेयर पार्ट्स ख़ुसूसी रियायत ते मौजूद। इरशाद ऑटोस ते पंहिंजी होंडा मोटरसाइकिल जी करायो ट्रेनिंग। कंप्यूटराइज जैपनीज टेस्टिंग मशीन जरिए जै में मिले थी मोटरसाइकिल की कारकर्दगी तमाम बेहतर फ्यूल एडजस्टमेंट RPMG एडजस्टमेंट कंप्यूटराइज जापानी मशीन जरिए कई वनिए थी होंडा जे क्वालिफाइड टेक्नीशियन जी जेर निगरानी इरशाद ऑटोस हालानी रोड मेहरापुर राबते जे लाए 0320180003।

0: खुशखबरी, अपनी जिल्द को दे नई ताजगी, चमक और खूबसूरती हाइड्रा फेशियल के साथ। अब फिक्र छोड़िए, आपके शहर मेहरापुर में रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक लेकर आया है। गहरी सफाई और फोरी ग्लो जिल्द को नरम और हाइड्रेट करे, सन डैमेज और रंगत बेहतर बनाने में मददगार। फेशियल रेजुविनेशन, साफ तरोताजगी और जवान नजर आने वाली जिल्द जदीद टेक्नोलॉजी के साथ महफूज और मौसर स्किन केयर। नोट, खवातीन स्टाफ की निगरानी में की जाती है। आज ही अपनी अपॉइंटमेंट बुक करवाएं। पता, रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक, नजद रेलवे फाटक, अक्सा मस्जिद, ठरी रोड, मेहरापुर। 03003385569।
1: हर नजर आपकी खूबसूरती पर ठहर जाए और ये है मेरी खूबसूरती का राज, मिल्क राइज ब्यूटी क्रीम। सिर्फ 3 दिन में जिल्द को निखारे और रंगत को रोशन करे, दाग धब्बे, झुर्रियां और कील मुहासे फौरन कम करे। इस्तेमाल का आसान तरीका, रात को मिल्क राइज ब्यूटी सोप से चेहरा धोएं, फिर मिल्क राइज ब्यूटी क्रीम चेहरे और गर्दन पर लगाएं, नताइज देखें सिर्फ 3 दिन में। एक्नी के लिए मिल्क राइज एक्नी क्रीम इस्तेमाल करें। दस्तियाब प्रोडक्ट्स, मिल्क राइज ब्यूटी क्रीम, मिल्क राइज ब्यूटी सोप, मिल्क राइज एक्नी क्रीम। हर अच्छे कॉस्मेटिक जर्नल स्टोर से नाम लेकर खरीदें। मजीद मालूमात के लिए मलिक जफर इकबाल एंड एम सिद्दीक, शाही बाजार, मेहरापुर। 03003105109 03005109।
2: अदा
3: वालेकुम अस्सलाम। अदा छो परेशान आई?
2: अदा नओ दुकान खोलियो तम पर हले ही न तो, छा कजे?
3: अदा दुकान जी मशहूरी कराई थई
2: न? अदा
4: यार आजकल शहरन तोड़े गोठन में जी मेरा पर FM 94 ही हले थो। मु पंजो दुकान खोलियो तो FM मेरा पर ते पब्लिसिटी कराई। कारोबार एड़ो कामयाब हो जो एड बंद कराण ते दिल्ली न थी चवे।
2: मुझे दुकान जी बेड हलंदी?
3: हाँ दा, कारोबारी इश्तेहारात, आम इतला, मिलाद, मजलिस, सालगिरह जी मुबारक, मतलब हर किस्म जी एडवर्टाइजिंग हलंदी आए।
2: अदा जल्दी कर, मुखे बुंजी एड्रेस तो बुदा।
4: ऑफिस जी मेरापुर FM 94, नज गर्ल्स डिग्री कॉलेज, हालानी रोड, मेरापुर।
3: राबते लाए हाकिम अली जिसकानी।
5: 03013992836।
6: मेहरापुर के हो तो आवाज भी मेहरापुर की है। सुनते रहो जी FM 94।

जरूर चलाएंगे, आपका जवाब बिल्कुल ठीक होगा तो बिल्कुल चलाएंगे जी। आप लोग, आप हैं कौन? आपने अपना नाम नहीं बताया। नाम मुझे जरूर बताइएगा यार, आपने मैसेज तो मुझे दोनों कर दिए लेकिन मुझे नाम जरूर बताएंगे आप हैं कौन, तो हम आपको सॉन्ग भी जरूर प्ले करेंगे।

अच्छा यकीनन आप लोगों ने तो भाई अकेले के लिए नाश्ता भी कर लिया होगा, और मुझे तो किसी ने पूछा भी नहीं कि आप लोगों ने चाय शाय पी भी ली, और मुझे पूछा भी नहीं कि मैडम आपने चाय पीनी है कि नहीं पीनी, मैंने कौन सा आपके पास आ जाना था, आपने तो बस नाराज़ हूँ मैं आपसे।

अच्छा जी, यहाँ पर जो हमें ओएसटी सॉन्ग के लिए कहा गया है और उनका जो जवाब है, मैं अपने सवाल का आपको जवाब देने लगी हूँ। ओके, तो जी मैं आपको बताऊँ कि जो मेरा सवाल था ये था कि आप लोगों ने जस्ट इतना बताना था कि अगर सुबह में एक मुर्गा अंडा दे रहा है तो हम कितनी देर तक खा सकते हैं। अच्छा, दो और कमेंट्स हैं, पहले वो भी रीड आउट कर लेते हैं। ओके जी, तो जवाब सवाल किसने हमें मैसेज किया, ये कहते हैं कि जलोड़ी से खाली शारी जवाब देते हुए कहते हैं कि मुर्गा अंडा नहीं देता। हे गाना, हम तो तेरी राह देखेंगे सनम, तुम चले आओ पहाड़ों की कसम। ओके जी, जरूर जरूर, कसम की जरूरत नहीं है, हम वैसे ही आ जाएंगे, आप बुलाएं तो सही। अच्छा जी, इसके अलावा मैं आपको बताऊं कि बिल्कुल ठीक कहा आपने, और इसके अलावा एक और हमारे साथ मौजूद हैं कि कहते हैं कि सक्कर गुड मॉर्निंग, हाय आरजी सुना, प्लीज प्ले सॉन्ग पहली दफा सिंगर आतिफ असलम, पहली दफा। अच्छा, दीदी अल्ताफ अली गादी बलोच फ्रॉम कराची। ओके जी, आपने मेरे सवाल का जवाब दिया था, ये मैं देख लेती हूँ कि आपने जवाब दिया था या नहीं, लेकिन हम लोग जरूर कोशिश करेंगे कि आपका सॉन्ग भी हम प्ले जरूर कर रहे हैं। तो इसलिए मैं आप लोगों से कहती हूँ कि आप लोग मुझे टाइमली ज्वाइन कर लिया करें, क्योंकि दो घंटे होते हैं हमारे पास, हम उसमें मजे मजे के सॉन्ग भी सुन सकते हैं, लेकिन अगर आप लोग लास्ट वाले ओवर्स में मुझे बता रहे होते हैं तो यार टाइम हमारे पास बहुत ज़्यादा ही शॉर्ट होता है। तो हम किस किस के सॉन्ग प्ले करेंगे, आप लोग मेरे सवाल इतना आसान होता है, जवाब ढूंढ लेते हैं। अच्छा जी, मेरा सवाल था आप लोगों से ये कि आप लोगों ने बताना था कि जो एक अगर सुबह में मुर्गा अंडा दे रहा है तो वह हम कितने देर तक हम इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। तो किसी ने बोला कि 5 मिनट, किसी ने बोला 3 मिनट, किसी ने बोला कि भाई इसका जवाब हम आपसे राइट सुनेंगे, और जवाब तो हमने दे दिया है। किसी ने बोला कि कुछ देर तक, और कुछ कंफर्म नहीं है। तो जी, और किसी ने बोला कि मुर्गा अंडा कब देता है, और किसी ने बोला कि मुर्गा अंडा देता ही नहीं है। ओके जी, तो मैं आपको उसका जवाब बताऊं कि आप लोगों ने मेरा सवाल तो सुन लिया, आपने टाइम तो देख लिया, आपने ये नहीं देखा कि मुर्गा वाकई में अंडा नहीं देता। अच्छा, ये पता है मुर्गा अंडा कब देता है, जो हम उसको 5 मिनट तक इस्तेमाल करते हैं। लोग दुकान वालों यार, इतने देखो 10-10 दिन तक वो सेल आउट कर रहे होते हैं, इतनी तादाद में अंडे होते हैं, क्या वो उससे 3 घंटे में खत्म कर देते हैं, 4 घंटे में? नहीं यार, वो 5 दिन में भी खत्म नहीं हो पाते। तो ऐसे ही जी कि मुर्गा तो अंडा कभी देते ही नहीं है, तो फिर अंडे का टाइम क्या करेंगे जब अंडे ही नहीं है। तो जी, आप मुझे ये तो बताएं कि थोड़ा दिमाग से आप सोचा करें, मेरा सवाल होता है बहुत आसान, लेकिन नकल के लिए भी अकल, मैंने पहले कहा था, जरूरी होती, लेकिन आप लोगों ने फिर भी नहीं समझा। तो जी, अभी जिसके जवाब ठीक हैं तो हम उसको सॉन्ग जरूर प्ले करेंगे, लेकिन बहुत अच्छा लगता है कि आप लोगों ने जवाब दिया और आपको इसमें शामिल हो जाते हैं, तो ये बहुत अच्छा लग रहा होता है ना। तो ऐसे ही है जी, और यहाँ पर हम एक सॉन्ग प्ले करते हैं जो कि मुझे भी पसंद है, और यहाँ पर फरमाइश भी की गई है, लेकिन नाम नहीं पता कि किसने फरमाइश की है। भाई, मैं आपका पसंदीदा सॉन्ग चला रही हूँ, जरा मुझे नाम लिख के तो बताएं कि आप हैं कौन, आपने मुझे कहाँ से ज्वाइन किया है, जिंदगी आवार की है अगर ये सॉन्ग सुन रहे हैं तो, क्योंकि मैं चलाने वाली हूँ ये सॉन्ग और आप लोग सुनेंगे, तो ज़रूर मुझे बताएं कि आप ये कौन है, किसने मुझे कमेंट किया था, किसने मुझे मैसेज किया था, ताकि हम नेक्स्ट शो में भी मज़े मज़े के सॉन्ग सुन सकें और ऐसे ही इन्जॉय कर सकें, और आप लोग मुझे टाइमली प्लीज़ ज्वाइन किया करें, ताकि ना अगर हम लोग मज़े मज़े के सॉन्ग सुनेंगे तो वो टाइमली हम लोग सुन सकें। तो जी, यहाँ पर करती हूँ मैं प्ले, तो ज़रूर आप लोग मुझे कमेंट करके बताएं कि आप हैं कौन, तो मैं करते हैं सॉन्ग को इन्जॉय।

0: तो जी सुन रहे थे हम लोग जिंदगी अवार की है झूम ओएसटी का ड्रामे का ये ओएसटी सॉन्ग था। तो जी बहुत ही खूबसूरत ये सॉन्ग है और मुझे तो बहुत पसंद है जी, मैंने प्ले कर दी। लेकिन आप मुझे जरूर बताएं जिसने मुझे सॉन्ग कमेंट किया था कि आप कौन है, आपने मुझे कहाँ से एसएमएस किया था कि मुझे और सुनने वालों को पता चल सके आपका नाम क्या है, आप रहते कहाँ हैं, आप कौन है। तो जी जरूर मुझे बताइएगा कमेंट में, मैं यहाँ पर कर रही हूँ आपका इंतजार। और उसके अलावा हमारे पास और भी फॉर्मेटी सॉन्ग है जो कि मैं प्ले करने लगी हूँ। चलो करते हैं प्ले। कौन सा प्ले करना है अभी? इसके अलावा चलें हम लोग यहाँ पर प्ले करते हैं कि तुम चले आओ पहाड़ों की कसम। तो क्यों ना ये सॉन्ग सुनते हैं। तो आइए मैंने कर दिया ये सॉन्ग प्ले।
1: 3 बजे मैं रात के निकल जाता हूँ रास्ता देखने और सुबह 10 बजे धूप की पहली किरण लगती है, थोड़ा सा हीट मुझे मिलता है, अचानक मेरा जो है जिसम में एक झटका सा महसूस होता है और मैं अपने आप को कहता हूँ कि यार उस वक्त मेरा सेंस वो वापस

0: खुशखबरी, क्या आप बालों के झड़ने से परेशान हैं? अब फिक्र छोड़िए, शहर मेहरापुर में रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक लेकर आया है बालों की जदीद और मौसर इलाज, एक्सोसोम्स एंड पीआरपी ट्रीटमेंट के साथ बालों का झड़ना कम करने में मददगार, कमजोर जड़ों को मजबूत बनाए, नए बालों की निशोनुमा में मदद दे, बालों को घना और सेहतमंद बनाए। घने मजबूत और खूबसूरत बालों के लिए आज ही राब्ता करें रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक, नज़्द रेलवे फाटक अक्सा मस्जिद थरी रोड मेहरापुर, 03003385569।
1: सोनी, अज त डाढी खुश थी लगे।
2: हां साईं, गाल भी एड़ी आहे।
1: भला मुखे भी बुदाए केड़ी गाल आहे।
2: चाचे, जुम्मन जी खुशहाली जो राज खबर पयो आहे।
1: छा छा?
2: उहे पेंजे ढोरन के जी जान सखर चारो मसालो पिया खाराइन। ही चारो ढोरन जो हाजमो दुरुस्त करे थो, ढोर सेहतमंद थेन ता, गोश्त सा गडो गड खीर भी वधे थो।
1: वाह सोनी वाह, वाह जी गाल बुदाई। पर किथे मिलंदो यो जी जान सखर चारो मसालो?
2: साईं, रेडीए थे ता बुधाइन, बुध अजी वठी अज।
1: मां हाणे ई थो वञा त जीअं असीं बि खीर वधायूं ऐं नोट कमायूं।
2: हा साईं हा।
3: जी जान चारो मसालो हर वेझे पंसार स्टोर ऐं जानवरनि जे डॉक्टर खां नालो वठी ख़रीद करियो।
4: रोशनी का काफिला मंजिल की तरफ गामजन, मजहर स्कूल सिस्टम मेहरापुर, शानदार तालीमी इमारत, प्रोफेसर कुर्बान अली मेमन, एयर कंडीशन्ड एकेडमिक ब्लॉक का इनेकार, मेहनती मुशाक और तजुर्बेकार तदरीसी अमला, सरसब्ज बागीचा, बेहतरीन फर्नीचर, शानदार कंप्यूटर, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी की लैब्स, ऑडियो और विजुअल लेक्चर सिस्टम की सहूलत, केमिस्ट्री फिजिक्स बायोलॉजी रियाजी और इंग्लिश पर खुसूसी तवज्जा, एंट्री टेस्ट के लिए मेडिकल और इंजीनियरिंग में काबिल तहसीन नतायज, खेलों का मैदान और वहां मुनक्किद होने वाले मुकाबले, तहरीर तकरीर और जहनी आजमाइश के मुकाबले, स्टडी टूर्स, अपनी आँखों के नूर बच्चियों और प्यारे बेटों की मयारी तालीम तरबियत के लिए आज ही मजर स्कूल सिस्टम मेहरापुर का विजिट करें। मजीद राबते के लिए डॉक्टर अल्ताफ हुसैन मेमन, मैनेजिंग डायरेक्टर मजर स्कूल सिस्टम, 03000027234, निसार अहमद मेमन, प्रिंसिपल मजहर स्कूल सिस्टम मेहरापुर, 03013865453।
5: मेहरान आयरन स्टोर हालानी, होलसेल डिपो, अ नेम टू बी ट्रस्टेड।
6: सरिया गार्डर टीए एंगल चैनल पट्टी लोही दरवाजा सिल्वर जा चौंक सीमेंट रेती क्रेश आई रंग वगैरह बाजार का बारिया दस्तियाब आई।
5: हाँ अचो मेहरान आयरन स्टोर, नज़्द बलोच पेट्रोल पंप, नेशनल हाईवे हालानी।
6: राबते लाए प्रोपराइटर गुलाम नबी मुगल, 03003204372 आई 02424601100।
7: खूबसूरती का असल राज सिर्फ डी स्किन ब्यूटी क्रीम। इसमें मौजूद विटामिन ई बीड्स और जदीद माइक्रो बीड्स फॉर्मूला आपकी जल्द को बनाए निखरी और चमकदार। सिर्फ दो दिन में डार्क स्पॉट्स को करे फेड और दे कुदरती असली ग्लो। डी स्किन ब्यूटी क्रीम, असली ग्लो हर दिन का शो।
8: खुशखबरी, जर्मन होम्योपैथिक क्लिनिक सामू वधन बोटा पेट्रोल पंप, कोटली कबीर रोड मेहरापुर, कराची ए इस्लामाबाद जो मशहूर डॉक्टर मंजूर हुसैन मेमन, एमए डीएचएमएस सिंध, आरएचएमपी इस्लामाबाद, होम्योपैथिक कंसल्टेंट एंड फैमिली फिजिशियन, सीनियर लेक्चरर, नवाबशाह होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज नवाबशाह, हर अरबा खमीस जुमे छंछर आचर।

0: It's 12:45 PM. This time check is brought to you by
1: Bank Islam ne laya Pakistan ka pehla Sharia compliant gold based financing. Sona sirf zevar nahi, har ghar ki amanat hoti hai. Isiliye Bank Islam ne laya Pakistan ka pehla Sharia compliant gold based financing. Jisse mile 50 lakh rupaye tak ki financing 4 saal tak ki muddat ke saath. Bank Islami gold based financing se अमानत को अपनी जगह रहने दो. आज ही 1114752 64 या bankislami.com.pk पर अप्लाई करें. शराइत और जवाबित लागू हैं.
2: अपना शहर अपना घर मेहराबपुर और मेहराबपुर की आवाज GAFM 94.

0: sabía, vas a Ot Sabía.
1: तो जी वेलकम बैक वंस अगेन. जैसा कि आपको पता है कि यार यहाँ पर 10 मिनट हमारे पास रह गए हैं और 2 घंटे हमारे पता नहीं कहाँ चले गए, जैसे कि हमारे तेरी नहीं. ऐसे ही होता है जी, इतनी सारी बातें हो जाती हैं और इतने सारे मजे मजे के सॉन्ग्स हो जाते हैं लास्ट में, तो जी पता ही नहीं चल रहा होता कि टाइम कहाँ गया. तो जी बिल्कुल अभी देख लेते हैं कि अभी हमारे साथ और कौन मौजूद है. हमारे साथ मौजूद हैं अच्छा जी, जो जिसने हमें सॉन्ग का नाम बताया था वो कहते हैं कि शक्कर. वैसे तो लोग जे के नाम से जानते हैं, पूरा नाम जयपल है कराची से. तो जी थैंक यू सो मच जयपल, आपने मुझे मतलब ज्वाइन किया है और ऐसे आपने अपने राइट आंसर भी दिया था, तो आपका सॉन्ग भी प्ले किया हमने. सॉन्ग भी बहुत अच्छा था, जो कि मेरी पसंद थी वो आपकी पसंद भी हो गई. ओके, और इसके अलावा मैं आपको बताऊं कि इसके अलावा कहते हैं कि शक्कर से जो अली मोरत से थे वो कहते हैं मियो नहीं, मैंने मियो नहीं बोला था, मैंने बोला था अगर आप मेरे पर खांसे हो सकते हैं क्योंकि मोरत का आपने बिल्कुल वैसे ही मोरत शॉर्ट फॉर्म में है तो आपने और छोटा कर दिया था उसको, जी पता नहीं चल रहा था. खैर, और इसके अलावा मैं आपको बताऊं कि बहुत अच्छा लगा था मोहम्मद अली कि आपने मुझे ज्वाइन किया था. ऐसे आपने मुझे ज्वाइन करते रहना ओनली ओनली ऑन संडे सुबह ग्यारह से तो 1 बजे तक रहता है मेरा और आपका साथ. उसके अलावा जयपल कहते हैं कि हमारी बात सही है कि मुर्गा अंडा नहीं देता, जी बिल्कुल ठीक. जब भी हमने आपका सॉन्ग भी प्ले किया था और साथ में कहते हैं कि आपका शो संडे संडे को होता है, हम ट्राई करेंगे ज्वाइन करेंगे शो. और ओके थैंक यू अगेन, थैंक यू जी वाली जी जी बिल्कुल, और आप मुझे ज़रूर जो है ज्वाइन करिएगा संडे संडे को, मैं होती हूँ आपके साथ पूरे पूरे 2 घंटे के लिए. और इसके अलावा कि वेलकम वेलकम और डबल वेलकम और इसके अलावा मैं आपको क्या बोल सकती हूँ, और इसके अलावा मैं आपको बताऊँ कि साथ में कहते हैं कि थैंक यू सो मच कि आपने मेरा सॉन्ग जो है वो वेरी वेरी मच वाला, अच्छा जी थैंक यू ओके कहते हैं सॉन्ग प्ले किया. नहीं नहीं कोई बात नहीं, आपने बिल्कुल राइट आंसर दिया था. ऐसे ही अगर आप लोग मुझे टाइमली जवाब दे दिया करें तो मैं आपका सॉन्ग पहले ही प्ले कर लेती, लेकिन आप मुझे जो है ना देर से आपने ज्वाइन किया. और साथ में कहते हैं दूसरे एक और बंदा हमारे साथ ज्वाइन है, कहते हैं कि शक्कर से विनोद कुमार. जी विनोद कुमार कैसे हैं आप, और आपने बहुत लेट ज्वाइन किया है और थैंक यू सो मच, लेकिन आपने ज्वाइन तो किया है. और इसके अलावा मैं आपको बताऊं कि आपने अगले इतवार को मुझे टाइमली ज्वाइन करने आए हैं और मेरे सवाल को सुनना है और जवाब भी देना है विनोद कुमार, तो ताकि मैं आपका वेट करूंगी और मुझे अब आपका नाम भी याद रहेगा. तो देखते हैं कि आप अगले इतवार को मेरे पास किस टाइम तक ज्वाइन कर लेते हैं और मेरे सवाल का जवाब देते हैं भी हैं क्या नहीं. तो ठीक है, मुझे ज्वाइन जरूर करिएगा. और जैसा कि आपको पता है कि यहाँ पर हमारे पास टाइम हो गया है बिल्कुल टाटा बाय बाय करने वाला, क्योंकि अभी सिर्फ 5-6 मिनट बचे हैं जिसमें लास्ट में एक और फरमाइश सॉन्ग हमने पूरी करती हुई जानी है. फौजी सुनमो के आवाज़ में जो है वो एक सॉन्ग प्ले करते हुए जाऊँगी, वो आप लोग इन्जॉय करिएगा, मैं भी इन्जॉय करूँगी आप लोगों के साथ. उसके बाद मिलेंगे अगले इतवार को एक नए सवाल के साथ. तो जी टाइम को तो देखते हुए भी मैं आपको बोल सकती हूँ कि अल्लाह हाफिज़ करने का टाइम आ गया है. और उसके अलावा अगले इतवार को मिलेंगे नए सवाल के साथ, और थोड़ा सा दिमाग चला के जवाब दीजिएगा. और कोई बात नहीं है, थोड़ी सी नकल के लिए भी अकल के लिए अकल की ज़रूरत है, ये मैं दोबारा कहते जा रही हूँ आपको. तो जी और रखिएगा अपना बहुत सारा ख्याल, मुझे भी दुआ में याद रखिएगा, मेरी भी दुआ में हमेशा आप लोग मौजूद रहते हैं. और इसके अलावा ये सॉन्ग मैंने कर दिया है प्लीज़, इस सॉन्ग को भी सुनते हैं और मिलते हैं फिर अगले इतवार को एक नए सवाल के साथ. जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़ है, और जब तक के लिए रखिएगा अपना बहुत सारा ख्याल. थैंक यू.

0: मौसम गर्मी का हो या पड़े ठंड,
1: नॉन स्टॉप लॉट्स ऑफ फन,
0: तबीयत हो डल या छाए सुस्ती,
1: मिलेगी लोड्स ऑफ मस्ती,
0: ओनली ऑन GFM 88 नेटवर्क.
2: It's 1 PM. This time check is brought to you by
3: White-ish Beauty Cream, glowing skin jo raaz. A product by Biocon International Pakistan.
4: अब आप सुनेंगे

एक जनो मारजी वियो, टे जणा जख्मी। ईरानी सदर मसूद पज़ेशान चयो आहे त खिते जे सभिनी मुल्कन खे गॾिजी अमन अमान क़ाइम करणु घुर्जे। अमेरिका में हिमत आहे त ईरानी फ़ौज खे मोह ॾे असां खे दबाउ ऐं धमकियुनि सां झुकाए नथो सघिजे। अमेरिका जारियत बंदि करे त आबनाए हुरुम्स खुली वेंदो। आबनाए हुरुम्स बाबति सूमर ते ओमान सां मुआदे ते सहियूं कयूं वेंदियूं। हुसैन जा सऊदी अरब ते हमला जारी, वधीक ॿ ॼणा ज़ख़्मी। मस्जिद इमारतुनि ऐं गाॾियुनि खे नुक़सान पहुतो। सऊदी अरब जे शहर जाज़ान में यमनी हुसैन जे मिज़ाइल हमले में ॿ ॼणा ज़ख़्मी थी पिया। सऊदी अरब जे सिविल डिफेंस जे तर्जुमान जो चवणु आहे त शहरी हंधनि खे निशानो बणाइण आलमी कानून जी भञकड़ी आहे। कराचीअ में फोर्सिस जी कार्रवाईअ में फितनल खारजीन जा ॿ दहशतगर्द मारिजी विया। शेरशाह में सीटीडी ऐं रेंजर्स अहलकार सां फायरिंग जी ॾेवठ में हिकु दहशतगर्द मारिजी वियो। सीटीडी ऐं हसास इदारनि जे अहलकारनि जो जमाली पुल भरिसां दहशतगर्दनि सां मुक़ाबिलो थियो। पुलिस ऐं रेंजर्स जे हमले में मुलविस हिकु दहशतगर्द मारिजी वियो। इराक पाड़ेसरी मुल्कनि ख़िलाफ़ लाचिक बेड न बणजंदो। इराकी वज़ीर आज़म चयो आहे त पंहिंजे सरज़मीन तां पाड़ेसरी मुल्कनि ख़िलाफ़ कंहिं बि सरगर्मीअ खे रोकियो वेंदो। पंहिंजे सरज़मीन पाड़ेसरी मुल्कनि ख़िलाफ़ इस्तेमाल थियण न ॾींदासीं। असांजी सलामतीअ खे नुक़सान पहुचाइण जी कोशिश अवाम जे इताद साम्हूं नाकाम थींदी। मुस्लिम लीग नून पारां पंजाब में बलदियाती चूंडूं कराइण जूं तयारियूं शुरू करण जो फ़ैसिलो। मुस्लिम लीग नून पंजाब जे सदर राणा सनाउला जी सदारत हेठि इजलास थियो। पार्टी उहिदेदारनि खे चूंडुनि जी तयारी जी हिदायत कई। इजलास में नवनि सूबनि बाबति बि ॻाल्हि कई वई। ढाबे जी पंपिंग स्टेशन ते बिजलीअ जो ब्रेक डाउन। कराचीअ खे पाणी फरहमी मुतासिर। बिजली बंदि थियण सबबि मलीर, लांडी, कोरंगी, डिफेंस, क्लिफ्टन समेत ॿियनि इलाइक़नि खे फरहमी बंदि। पाणीअ जी फरहमी बंदि थियण करे मुख़्तलिफ़ इलाइक़नि में पाणीअ जो बोहरान पैदा थी वियो। शहरी तकलीफ़ुनि जो शिकार वाटर बोर्ड इंतिज़ामिया जो चवणु आहे त के इलेक्ट्रिक सिस्टम में केबल फॉल्ट सबबि सुबुह 6 वॻे बिजलीअ जो ब्रेक डाउन थियो। बिजली बंदि थियण सबबि ढाबे जी पंपिंग स्टेशन जा 21 मां 10 पंप बंदि थी विया आहिनि। लंडन में साउथ एशियन फेस्टिवल पारां तकरीब मुनक़द। नवनि सूबनि जी मुख़ालफ़त, ज़िलनि खे इख़्तियार ॾियण जी घुर। तकरीब में मज़हर अब्बास, इफ्तिखार आलम, नसीर मेमण, जामी चांडियो, ख़ालिद खोखर, मोहम्मद खान अबड़ो ऐं ॿिया शरीफ़। संदनि चवणु आहे त मुल्क में सूबनि खे टोण जूं ॻाल्हियूं कंदड़ डिफेड़ पखिड़े रहिया आहिनि। सूबनि खे टोण सां पाकिस्तान तरक़ी त न कंदो, पर उबतो मुल्क जो वजूद ख़तरे में पइजी वेंदो। सूबनि खे टोड़ण वारियूं ॻाल्हियूं करण बदिरां ज़िले सतह ते इख़्तियार ॾिना वञनि।

0: सूबाई डिज़ास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी इम्कानी बरसातनि सबबि एडवाइज़री जारी करे छॾी। सूबाई सलाहकार ज्ञानचंद इस्टाणीअ पारां PDMA ऐं रेस्क्यू 112 खे हाई अलर्ट करण जो हुकुम ॾिनो आहे। संदसि चवणु आहे त मुख़्तलिफ़ ज़िलनि में 13 खां 16 सेप्टेम्बर ताईं तेज़ हवाउनि सां गॾु बरसाति जो इम्कान आहे। कराची डिवीज़न में बि 14 खां 16 सेप्टेम्बर ताईं बरसाति जो इम्कान आहे। थरपारकर, उमरकोट, मीरपुर खास, ठटो, सजावल ऐं बदीन में खिवण सां तेज़ बरसाति जो इम्कान आहे। सांगड़, मटियारी, खेरपुर, नवाबशाह, टंडोलयार ऐं ॿियनि शहरनि में हल्की बरसाति जो इम्कान आहे। जॾहिं त हेठनि वारनि इलाइक़नि में बरसातनि ऐं हसास हंधनि ते निगरानी करे पाणी नेकाले जा इंतज़ाम कया वञनि। जमायत इस्लामीअ जा पेट्रोलियम लेवीअ ख़िलाफ़ 36 शहरनि में धरणा जारी। जमायत इस्लामीअ जे अमीर हाफिज़ नईम चयो आहे त हिन मुल्क में हिकु अछराफ़िया ग्रुप आहे जेको माण्हुनि खे लुटे रहियो आहे। 20 सेप्टेम्बर ते सॼे इस्लामाबाद मां माण्हू ईंदा। अवाम पेट्रोलियम लेवीअ खे भताखोरी टैक्स करार ॾेई छॾियो आहे। धरणनि में माण्हुनि जो तइदादु हर गुज़रंदड़ ॾींहं मां वधी रहियो आहे। पेट्रोलियम लेवीअ जो पेट्रोल जे क़ीमत सां को बि तालुक न आहे। सिंध पुलिस में सिपाहीअ जी भर्तीअ लाइ टेस्ट पास कंदड़ उमेदवारनि जो हैदराबाद में एहतजाज। उमेदवारनि जो
1: आप सुन रहे थे GAFM नेटवर्क पर KTN न्यूज।
2: आशिक होंडा शोरूम मेहरापुर, एटलेस होंडा मोटरसाइकिल जोपुर एतमाद ऐं बा अख्तियार 3S डीलर आशिक होंडा मोटर्स मेहरापुर, जिते नई मोटरसाइकिल जी सेल कंपनीअ जे मुकरर कयल रेट ते दस्तियाब आहे। सर्विस सेंटर एटलेस होंडा लिमिटेड जो वारंटी क्लेम सेंटर सर्विस एरिया, जिते होंडा मोटरसाइकिल जी बेहतरीन सर्विस कई वेंदी आहे। होंडा कंपनीअ जा तमाम जेन्युइन स्पेयर पार्ट्स ख़ुसूसी रियायत ते मौजूद। आशिक होंडा मोटर्स ते पंहिंजे होंडा मोटरसाइकिल जी ट्यूनिंग करायो। कंप्यूटराइज्ड जैपनी स्टेचिंग मशीन जे ज़रिए जंहिंमें मिले थी मोटरसाइकिल जी कारकर्दगी तमाम बेहतर। फ्यूल एडजस्टमेंट, RPM जी एडजस्टमेंट कंप्यूटराइज्ड जापानी मशीन ज़रिए कई वञे थी। होंडा जे क्वालिफाइड टेक्नीशियन जी ज़ेर निगरानी। आशिक होंडा मोटर्स, एड्रेस इंडस बाईपास नज़्द रेलवे लाइन मेहरापुर। राब्ते जे लाइ आसिम हुसैन आराई 0307359212020।

कॉलम में मौजूद आहिन फौजी भाइरन लाइ ख़ुसूसी रियायत हूंदी राबते लाइ फौजी अब्दुल करीम 0301 54 51 456 ऐं तौकीर अहमद 0306

0: सर्विस एरिया जिते होंडा मोटरसाइकिल जी बेहतरीन सर्विस कई वेंदी आहे। होंडा कंपनिया जा तमाम जेन्युइन स्पेयर पार्ट्स खुसूसी रियायत ते मौजूद। इरशाद ऑटोस ते पंहिंजी होंडा मोटरसाइकिल जी करायो ट्रेनिंग कंप्यूटराइज जैपनीज टेस्टिंग मशीन ज़रिए, जंहिं में मिले थी मोटरसाइकिल जी कारकर्दगी तमाम बेहतर। फ्यूल एडजस्टमेंट RPM जी एडजस्टमेंट कंप्यूटराइज जापानी मशीन ज़रिए कई वञे थी। होंडा जे क्वालिफाइड टेक्नीशियन जी ज़ेर निगरानी। इरशाद ऑटोस हालाणी रोड मेहरापुर। राब्ते जे लाइ 03201800003।
1: हर नज़र आपकी खूबसूरती पर ठहर जाए और ये है मेरी खूबसूरती का राज। मिल्क राइज ब्यूटी क्रीम सिर्फ 3 दिन में जिल्द को निखारे और रंगत को रोशन करे, दाग धब्बे झुर्रियां और कील माह से फौरन कम करे। इस्तेमाल का आसान तरीका, रात को मिल्क राइज ब्यूटी सोप से चेहरा धोएं, फिर मिल्क राइज ब्यूटी क्रीम चेहरे और गर्दन पर लगाएं, नताइश देखें सिर्फ 3 दिन में। एक्नी के लिए मिल्क राइज एक्नी क्रीम इस्तेमाल करें। दस्तियाब प्रोडक्ट्स मिल्क राइज ब्यूटी क्रीम, मिल्क राइज ब्यूटी सोप, मिल्क राइज एक्नी क्रीम हर अच्छे कॉस्मेटिक जर्नल स्टोर से नाम लेकर खरीदें। मजीद मालूमात के लिए मलिक जफर इकबाल एंड एम सिद्दीक शाही बाजार मेहरापुर 03000-3105-109 03000-3105-109।
2: खुशखबरी, अपनी जिल्द को दे नई ताजगी, चमक और खूबसूरती हाइड्रा फेशियल के साथ। अब फिकर छोड़िए, आपके शहर मेहरापुर में रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक लेकर आया है। गहरी सफाई और फोरी ग्लो जिल्द को नरम और हाइड्रेट करे, सन डैमेज और रंगत बेहतर बनाने में मददगार। फेशियल रेजुविनेशन साफ तरोताजगी और जवान नजर आने वाली जिल्द जदीद टेक्नोलॉजी के साथ महफूज और मौसर स्किन केयर। नोट, खवातीन स्टाफ की निगरानी में की जाती है। आज ही अपनी अपॉइंटमेंट बुक करवाएं। पता, रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक नजद रेलवे फाटक अक्सा मस्जिद थरी रोड मेहरापुर 03000-338-5569।
3: अस्सलाम अदा छो परेशान आई?
4: अदा नओ दुकान खोलियो तम पर हले ही न तो छा कजे?
3: अदा दुकान जी मशहूरी कराई थई
4: न? अदा
5: यार आज कल शहरन तोड़े गोठन में जी मेरा पर FM 94 ही हले थो। मो पंजो दुकान खोलियो तो FM मेरा पर ते पब्लिसिटी कराई। कारोबार एड़ो कामयाब हो जो एड बंद कराण ते दिल्ली न थी चवे।
4: मुझे दुकान जी बेड हलंदी?
3: हां दा कारोबारी इश्तिहारात आम इतला मिलाद मजलिस सालगिरह जी मुबारक मतलब हर किस्म जी एडवर्टाइजिंग हलंदी आए।
4: अदा जल्दी कर मुखे बुंजी एड्रेस तो बुदा।
5: ऑफिस जी मेरापुर FM 94 नज़ गर्ल्स डिग्री कॉलेज हालाणी रोड मेरापुर।
3: राबते लाए हाकिम अली जिसकानी
6: 03013992836।
7: मेहरापुर के हो तो आवाज भी मेहरापुर की है। सुनते रहो जी FM 94।

क्योंकि वैसे भी कहते हैं कि जो भी प्रोडक्ट अगर आप परचेज करें तो आपको उसके बारे में पता होना चाहिए कि आप जो प्रोडक्ट इस्तेमाल कर रहे हैं वो क्यों इस्तेमाल कर रहे हैं। तो बिल्कुल वैसे यहाँ पर डी स्किन ब्यूटी क्रीम के बारे में बहुत ज्यादा वाली बातें हैं जो कि आप लोगों को इस प्रोग्राम में मालूम पड़ने वाले हैं। ऐसे के साथ साथ अगर आप हमारा प्रोग्राम सुन रहे हैं तो आप लोगों को वेलकम एंड खुशामदीद कहा जाता है। बिल्कुल जी, आपकी मोहब्बत हो, समात हो और चाहत हो का बेहद वाला शुक्रिया। साथ ही साथ जरा अपना भी तारीफ करवाते हैं। सो लिसनर्स, फॉर प्रेजेंटिंग द मोस्ट ब्यूटीफुल, फैंटास्टिक, इंटरेस्टिंग एंड एंटरटेनिंग कैरेक्टर, यू आर जे एंड योर डीजे सिद्रा मुस्कान, नाम तो सुना ही होगा। बिल्कुल जी, आपकी सिद्रा के साथ मौजूद है ब्यूटीफुल से प्रोग्राम में आप लोगों को ब्यूटीफुल बनाने के लिए। चलें जल्दी जल्दी से रेडी शेडी हो जाइए हमारे साथ मजे करने के लिए, एंजॉय करने के लिए और सुनने के लिए कि डी स्किन ब्यूटी क्रीम के कितने सारे फायदे हैं। और यहाँ पर बहुत सारे खूबसूरत से लोग हमारे साथ मौजूद हैं, खूबसूरती के राजों को जानने के लिए बेताब हैं। तो जब आपकी बेताबी को दूर किया जाएगा, खूबसूरती की दुनिया में कदम रखना चाहते हैं तो डी स्किन ब्यूटी क्रीम के बारे में तो आपको पता होना चाहिए। साथ ही साथ अगर आप हमारा प्रोग्राम सुनना चाहते हैं तो कैसे आप हमें ज्वाइन करेंगे और क्या तरीकेकार होने वाले हैं जी प्रोग्राम में शामिल होने के, सब कुछ बताया जाएगा। लेकिन कहते ना कितनी जल्दी क्या है, अभी तो हमने स्टार्ट किया है और यहाँ पर बहुत सारे लोग हमारे साथ ऐसे मौजूद होते हैं जो कि अपने कामों के दौरान हमें सुन रहे होते हैं। बहुत से लोग ऐसे जिन्होंने अपने सारे काम कर लिए, यानी कि फ्री होकर हमारा इंतजार कर रही थी। ऐसे बहुत सारी अंटियां, अम्मियां, खालाएं, बाजियां और पापा की परियां जो हमें किचन में सुन रही होंगी, यानी कि लंच बनाने के दौरान। सो भी अपने काम भी कीजिए, हमें भी सुनिए, आपको कहेंगे वेरी वाली गुड आफ्टरनून। साथ ही साथ अगर आप लोगों ने घर वालों के ताने सुनी लिए हैं तो जनाब अब जबरदस्त गाने सुनने के लिए जरा रेडी हो जाइए, क्योंकि आपकी बोरिंग लाइफ में भरेगी चटपटा मसाला। बिकॉज आली रे आली, सदर आली बॉस आपके होंठों पर 440 उल्की स्माइल लाने के लिए। तो बिल्कुल आपके होंठों पर 440 उल्की स्माइल लाते हैं और यहाँ पर ऐसा करते हैं, आगे से प्रोग्राम कर लेते हैं। आगे से प्रोग्राम करेंगे जी हम एक बहुत ही खूबसूरत से कसीदे के साथ। हमारी लिस्ट में एक बहुत प्यारा कसीदा मौजूद है, तो आइए जरा कसीदा सबसे पहले एंजॉय कर लेते हैं, उसके बाद जैसे ही वापस आप लोगों के पास मुखातिब होते हैं तो बताते हैं कि आज के प्रोग्राम में आप लोगों के लिए क्या होने वाला है। बिल्कुल जी, आप सुन रहे हैं व्हाइटिश एंड डी स्किन ब्यूटी शो, स्पॉन्सर्ड बाय व्हाइटिश ब्यूटी प्रोडक्ट्स एंड डी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स। इस्तेमाल करती रहिए और खूबसूरतियाँ हासिल करती रहिए।

0: मेरी
1: खूबसूरती जो असल राज सिर्फ डी स्किन ब्यूटी क्रीम इन में मौजूद विटामिन ई बीड्स और जदीद माइक्रो बीड्स फार्मूलो अवाजी स्किन के बनाए निखरी और चमकदार सिर्फ बिंदीहन में डार्क स्पॉट्स के करे खत्म दिए कुदरती असली ग्लो डी स्किन ब्यूटी क्रीम असली ग्लो हर डी जो शो अ प्रोडक्ट बाय बायोकॉन इंटरनेशनल पाकिस्तान जी बिल्कुल आप सुन रहे हैं प्रोग्राम व्हाइट एश एंड डी स्किन ब्यूटी शो स्पॉन्सर्ड किया जा रहा है व्हाइट एश ब्यूटी प्रोडक्ट्स एंड डी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स के तावन से बिल्कुल जी आपके सदराव के साथ मौजूद है मेरे साथ कौन है मुझे बताते जाएंगे अपने होने का एहसास दिलाइए जनाब आप जिंदा है मुझे पता होना चाहिए अगर आप हमें ज्वाइन करना चाहते हैं शामले प्रोग्राम होना चाहते हैं तो क्या तरीके कार फॉलो करेंगे सब कुछ बताएंगे लेकिन आज के प्रोग्राम का टॉपिक क्या होने वाला है सबसे पहले ये बता देते हैं बिल्कुल जी अगर आज के प्रोग्राम के टॉपिक की बात करी जाए तो आज मेरा आप लोगों से जो सवाल होने वाला है ना वो बिल्कुल ये होने वाला है कि वैसे हमें ऐसा लगता है कि हमें अगर फ्यूचर दिखाया जाए या फिर हमें अगर फ्यूचर में जाना पड़े तो हम अपने लिए ये चीज देखेंगे कि हमने अपने फ्यूचर में जाकर क्या किया है कई मरतबा ये वाला सीन हो जाता है कि हम फ्यूचर में जाकर ना खुद को देख नहीं सकते ये चीज वैसे इसके ऊपर काम चल रहा है कि हाँ भाई लोग फ्यूचर में जाकर देख सकते हैं कि उनके साथ क्या हो सकता है या फिर वो फ्यूचर में जाकर क्या कर सकते हैं लेकिन आज मेरा आप लोगों से सवाल कुछ इस तरह होगा कि आपने मुझे बताना है फर्ज कर लेंगे अगर आप लोगों को एक आधा घंटा मिल जाएगा भाई आप अपने फ्यूचर में जाएं और आपको आधा घंटा मिल जाएगा फ्यूचर में जाकर अपने लिए देखें कि आप फ्यूचर में जाकर क्या कर रहे हैं आप क्या बन चुके हैं आपने क्या किया है अगर आधा घंटा जाकर आप देख सकते तो आप अपने लिए क्या जाके देखते हाँ जी हमें ये लगता है कुछ लोगों को लगता है कि भाई हम जाके देखना चाहेंगे कि हम अपने आगे जाकर फ्यूचर में हमने क्या किया है कौन सा हम काम कर रहे हैं क्या जॉब कर रहे हैं पढ़ाई की नहीं की ये चीज वो चीज तो इस तरह आप मुझे बताएं कि अगर आपको मौका मिले फ्यूचर में जाकर अपने लिए आधा घंटा देखने के लिए कि भाई आप फ्यूचर में जाएं और आप आधा घंटा अपना फ्यूचर जो है ना वो देकर आए तो आप क्या देखना पसंद करेंगे फ्यूचर में जाकर उसके लिए अगर आप हमें ज्वाइन करना चाहते हैं तरीकेकार बहुत ज्यादा आसान ऐसा कीजिए अपना सेल फोन उठाइए मोबाइल के राइट ऑप्शन में जाइए टाइप कीजिए LRK सिंगल स्पेस दीजिए अपना नाम लिखिए पूरा मैसेज लिखिए और उसे सेंड कीजिए 8881 पर अगर आप हमें फेसबुक पर सुनना चाहते हैं फेसबुक पर ज्वाइन करना चाहते हैं तो जिए लाड़काना FM 88.8 हमारा पेज है बिल्कुल ही तो जिए लाड़काना FM 88.8 के पेज के ऊपर आप जब आएंगे तो वहां पर आपको हमारे प्रोग्राम की लाइव पोस्ट मिल जाती है जैसे आप लाइक करेंगे कमेंट करेंगे और शेयर कर देंगे हाँ जी ऐसा वाला सीन है कि आप लोगों के पैनल के मैसेजेस शामले प्रोग्राम किए जाते हैं और जो लाड़काना वाली पोस्ट है ना उसके ऊपर आप आकर कमेंट कीजिए तो आपके कमेंट शामले प्रोग्राम रखे जाएंगे ठीक है अदरवाइज बाकी जो नूरियाबाद की पोस्ट के ऊपर मौजूद है तो उनसे भी गुजारिश करूंगी कि भाई आप आकर लाड़काना के पेज के ऊपर हमें ज्वाइन कीजिए बाकी जो नूरियाबाद वाले लिसनर्स हैं कल तो मुझे लग रहा था कि कोई भी नूरियाबाद का बंदा मुझे नजर नहीं आया था प्रोग्राम के अंदर आज देखेंगे कि आज शामले प्रोग्राम होते हैं या नहीं होते हैं जल्दी से हमें ज्वाइन कीजिए और अपनी खामोशी को तोड़ लीजिए और आप भी बताइए कि डी स्किन ब्यूटी क्रीम का इस्तेमाल करने वाले हैं या फिर पहले से कर रहे हैं ओके जी सो ये तरीके कार हमारे प्रोग्राम में शामिल होने के और जल्दी से टॉपिक को फॉलो कीजिए अपने होने का एहसास दिलाते जाइए और साथ ही साथ डी इस ब्यूटी क्रीम का इस्तेमाल करते जाइए तो डी स्किन ब्यूटी क्रीम अगर आप भी चाहते हैं कि भाई हमारे करीबी जनरल स्टोर्स पर मिलनी चाहिए हमारे करीबी जनरल स्टोर्स पर अवेलेबल होनी चाहिए तो जल्दी से आपको जो नंबर बता रही हूँ ना उसके ऊपर रब्ता कीजिए रब्ता करने के फौरन बाद ये हो जाता है कि भाई आपके करीबी जनरल स्टोर्स के ऊपर डी स्किन ब्यूटी क्रीम अवेलेबल करा दी जाएगी कुछ लोग ऐसे ही जहाँ पर अभी तक डी स्किन ब्यूटी क्रीम नहीं पहुंची है वो ये चाहते कि भाई हम भी लगाना चाहते हैं हम भी इस्तेमाल करना चाहते हैं असा केड़ो डो कयो सी भला तो बिल्कुल तहां डो ना कयो तहां बस इन नंबर ते राबतो करे वठो ऐ नंबर ते जडी तहां राबतो करे वठना ना पो जल्दी तहां जे करीबी जनरल स्टोर्स ते अवेलेबल कराई वेंदी डी स्किन ब्यूटी क्रीम ऐ नंबर आही जनाब जल्दी नोट करे वठो 03 12 50 25 907 बुड़ी 312 50 25 970 ऐं बियो नंबर आहे 033 27 38 43 09 बुड़ी 332 74 89 ही नंबर साइन जी की तमाम डायल करी पाने करे भी जनरल स्टोर से डी स्किन ब्यूटी क्रीम की अवेलेबल कराए सगो था जल्दी जल्दी पांच जी करीबी जनरल स्टोर से डी स्किन ब्यूटी क्रीम की अवेलेबल करायो बाकी खोड़ सारी गालियां जी तमाम से पूरे प्रोग्राम में कई वेंदी छो तमाम जो साथ खबर आ तो पूरे 3 बजे ताई आ है सो बिल्कुल तमाम सा के ज्वाइन भी करना मन्यो पया तमाम जा फीडबैक्स भी आ है नहीं ज्यादा का ज्यादा तमाम पोस्ट के लाइक एंड शेयर करना लो ठीक है जी तुम असि पोस्ट के लाइक एंड शेयर करना ना बबा इन से यो फर्क पवन है जो पोस्ट है ना वह खोड़ सारे मानन ताई पहुंची वेंदी है खोड़ सारे मानन के असि यो बुधाए सकता है तो बबा डी स्किन ब्यूटी क्रीम तुम भी लगाए सको था डी स्किन ब्यूटी क्रीम जहाँ केतरा सारा फायदा सब कुछ बुधायां थी पर इतने असि ज्वाइन किया है फरवा गुल खेती असलम गुड आफ्टरनून हैव अ नाइस डे अल्लाह ब्लेस यू विद द बेस्ट विशेस टेक केयर हाय आप ही आप कैसी हैं मैं ठीक हूं जी आप बताएं कैसी हैं बरकत रमदानी जमाली बलोच में ज्वाइन कर चुके हैं जाफराबाद बलोचिस्तान से भाईजान को वेलकम कहते हैं अखलाक बलोच हमारे साथ मौजूद कहते हैं वालेकुम अस्सलाम हेलो अच्छा फहीम शेख कहते हैं सलाम अलैहिस्सलाम मदद वालेकुम अस्सलाम कहते हैं अदा चाला सफा चाक स्लेट कलम शो तो सफा भलो आहे प्ले अच्छा ठीक है था गानो लिखियो है गानो हलायूं था और फरवा कहती है आप ये पोइट्री है कभी रास्ते बदल गए कभी इरादे बदल गए हम ना बदले मगर तेरे वादे बदल गए मोहब्बत के अंधेरे में पत्थर पिघल गए गेरों से क्या गिला जब अपने बदल गए आईली और कहती है गाने की रिक्वेस्ट है मैं कोशिश क्या थी बिल्कुल तांज लाए गानो हलाइना सी और हमारे साथ ही जी अखलाक भाई कह रहे हैं डी स्किन कमाल की क्रीम है हाँ जी बिल्कुल डी स्किन ब्यूटी क्रीम के बहुत सारे फायदे हैं और यहाँ पर स्मार्ट किशोर भाई कहते हैं सलाम अदा स्मार्ट आयो आर रिली विशाय रिली थे हलड़े चलो चलो ताकि चौंधा भली करे आया और गुलाम फरीद बलोच कहते हैं जिंदगी से नजर मिलाओ कभी हार के बाद मुस्कुराओ कभी तरके उल्फत के बाद उम्मीद वफा रेत पर चल सके है नाओ कभी अब जफा के सराहते बेकार बात से फिर सका है घाव कभी शाक से मोझे गुल थमी है क्यों हाथ से रुक सका बहाओ कभी अंधे जहनों से सोचने वालों हरफ में रोशनी मिलाओ कभी बारिशें क्या जमीन के दुख बांटे आंसुओं से बुझा लाओ कभी अपनी स्पेन की खबर रखना कश्तियां तो मगर चलाओ कभी गुलाम फरीद जागरानी की आप बातें आते साथ इतनी लंबी शायरी भेज दी ढा करके मार दी अच्छा उनके अलावा फहीम भाई कहते हैं दादा डी स्किन ब्यूटी क्रीम लाजवाब आए बिल्कुल जी जगह डी स्किन ब्यूटी क्रीम जो इस्तेमाल कर पाया हुए बिल्कुल यही चवन पाया एंड डी स्किन ब्यूटी क्रीम अगर तमाम भी इस्तेमाल करना चाहो था तो जल्दी जल्दी पाने करीबी जनरल स्टोर से भरी उतना वी मोटी अचो डी स्किन ब्यूटी क्रीम जो इस्तेमाल करे बुधाए मुख्य तमाम भी इस्तेमाल किया है अच्छा वकास अली कहते हैं अस्सलाम वालेकुम अस्सलाम अदर प्लीज प्ले मास्टर मंच उदासी और चाचा खाली जुड़ी जो हमारे साथ मौजूद है वालेकुम अस्सलाम कहते हैं चाचा आपको भी मैं ठीक हूँ आप बताएं आपकी तबीयत कैसी है कहते हैं बेटा सिद्रा

0: डी स्किन ब्यूटी क्रीम हम भी लगाना चाहते हैं। असा बिल्कुल तव्हां वठो नी तव्हां खे कंहिं जलो आहे तव्हां डी स्किन ब्यूटी क्रीम जो इस्तेमाल करे सघो था बाबा। ऐं डी स्किन ब्यूटी क्रीम तव्हां पंहिंजे करीबी जनरल स्टोर से अवेलेबल कराए जेको नंबर तव्हांखे ॿुधायो नंबर ते तव्हां राबितो करे वठो। ऐं तव्हां टॉपिक खे ज़रा ॾिसी वठो, टॉपिक मां तव्हां खां पुछो आहे अगरि बाबा इंसान खे चांस मिलंदो आहे न, ख़ैर इंसान खे त खोड़ सारा चांस मिलंदा आहिनि पर इंसान जेको आहे न पंहिंजे हथनि सां काफ़ी सारियूं चीज़ूं विञाए छॾींदो आहे, हू हिकिड़ो पहाको न हथनि सां विञाए वरी पेरेंट्स सां ॻोल्हींदा आहिनि, इहे हरकतूं न कंदा कयो। अगरि तव्हां बि चाहियो था बाबा त तव्हां खूबसूरत थियो त बिल्कुलु तव्हां डी स्किन ब्यूटी क्रीम जो इस्तेमालु करे खूबसूरत थी सघो था। टाइम बि थियो आहे त शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक जी तरफ़ हलियो वञे वञी वरी पोइ जल्दी मोटी वेंदमि। तव्हां दिलजाए न कयो, दिलजाए कयो बाबा, दिलि न लाहियो। ऐं जल्दी जल्दी मोटी अचूं था, हिकिड़ा नंढड़ा सफ़ा कमर्शियल ब्रेक आहे, ओ हीअं वञी ओ हीअं मोटूं था। सो स्टे ट्यून्ड, स्टे कनेक्टेड एंड कीप लिसनिंग। White Asian D Skin Beauty Show is sponsored by White Asian Beauty Products and D Skin Beauty Products. इस्तेमाल कीजिए और खूबसूरतियाँ हासिल कीजिए।
1: It's 1:30.
2: नूरे जा पीउ रेडीअ ते चाढ़े मसाले जो ॿुधाइनि पिया, भला इहो त ॿुध ऐं वठी अच।
3: जीजा ढोर चारो मसालो हाज़मेदार वधाए खीर ऐं गोश्त जी पैदावार 50 सालनि खां आज़मायल सखर वारनि जो जीजा ढोर चारो मसालो हर पंसार ऐं जानवरनि जे डॉक्टरनि खां नालो वठी तलब कंदा।
4: हा भाग भरी चङो थो लॻे, मां हाणे ई थो वठी अचां।
5: जीजा चारो मसालो हर वेझे पंसार स्टोर ऐं जानवरनि जे डॉक्टर खां नालो वठी ख़रीद करियो।
6: अवां जी स्किन डल ऐं बेरोनक लॻे थी, हाणे पंहिंजी स्किन खे ॾियो हिकु नओं गिलो। पेश आहे वाइट एज ब्यूटी क्रीम, अवां जी स्किन खे बणाए फ्रेश, सॉफ्ट ऐं ग्लोइंग। इन जो स्किन फ्रेंडली फार्मूलो ॾिए अवां खे रेडियंट लुक रोज़ानो जे इस्तेमाल सां, हर क़िस्म जी स्किन जे लाइ परफेक्ट। हाणे थियो खूबसूरत थियण वधीक आसान। वाइट एज ब्यूटी क्रीम, खूबसूरती जेका चमके हर ॾींहुं। बहितरीन रिज़ल्ट हासिल करण लाइ वाइट एज ब्यूटी क्रीम सां गॾु इस्तेमाल करियो वाइट एश ब्यूटी सोप। वाइट एश ब्यूटी सोप सां मिले चमकदार निखार ताज़गी सां गॾु। वाइट एश ब्यूटी क्रीम, ग्लोइंग स्किन जो राज। अ प्रोडक्ट बाय बायोकॉन इंटरनेशनल पाकिस्तान। खुशखबरी, लेजर हेयर रिमूवल गैर जरूरी बालों को खत्म करने का जदीद हल। अब फिक्र छोड़िए, आपके शहर मेहरापुर में गिम्स अस्पताल गंबर्ट जिल्द के मशहूर डॉक्टर बशीर अहमद मेमन लेकर आए हैं चेहरे, बाजू, टांगे और पूरे जिस्म के गैर जरूरी बालों को खत्म करने के लिए महफूज और मौसर ट्रीटमेंट। बार बार वेक्स और शेविंग से निजात, नरम, साफ और खूबसूरत जिल्द, कम वक्त बेहतरीन नतायज। अब गैर जरूरी बालों की फिक्र खत्म लेजर हेयर रिमूवल के साथ। आज ही राब्ता करें रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक, नज़द रेलवे फाटक अक्सा मस्जिद, थरी रोड, मेहरापुर। 0300-338-5569।
7: जिंदगी गुजारियो एतमाद सां, कुरान खे समझी बुधंदा रहो। डॉक्टर फरहत हाशमी जो प्रोग्राम तालीमुल कुरान रोजानो सुबह 9:05 ते सिर्फ GFM 88 नेटवर्क ते।
8: खुशखबरी, जर्मन होम्योपैथिक क्लिनिक साम्हूं वधण बोटा पेट्रोल पंप, कोटली कबीर रोड, मेहरापुर, कराची ऐं इस्लामाबाद जो मशहूर। डॉक्टर मंजूर हुसैन मेमन, MA, DHMS सिंध, RHMP इस्लामाबाद, होम्योपैथिक कंसल्टेंट ऐं फैमिली फिज़िशियन, सीनियर लेक्चरर, नवाबशाह होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज, नवाबशाह। हर अरबा, खमीस, जुमे, छंछर, आचर ऐं सूमर ते सुबुह 10 खां शाम 5 वॻे ताईं मरीज़नि जो इलाज कंदा आहिनि। हर जुमे, छंछर ऐं आचर ते बग़ैर फीस जे चेकअप कयो वेंदो। यादि रखंदा, मरीज़नि खे दवा स्टोर तां वठणी पवंदी। माहिरे अमराज़, नक, कन, गलो, पुराणो नज़लो, निछो, मथे जो सूर, नज़र जी कमज़ोरी, कन जो वहण, कन जो सूर, घटि ॿुधण में अचणु, शुगर, ब्लड प्रेशर, दिलि जा मर्ज़, फालिज, खंघि, टीबी, मादे जी अल्सर, मादे जी जलन, दिली जो वधण, जिगर जा मर्ज़, हेपाटाइटस BC, गुर्दे जी पथरी, मसाने जी पथरी जो बग़ैर ऑपरेशन जे कामयाब इलाज कयो वञे थो। गुर्दनि जो इन्फेक्शन, चेहरे जो रंग सांवरो, चेहरे जी ख़ारिश, फट, फुरड़ियूं, ॿारनि में कद जो न वधणु, मर्दनि ऐं औरतुनि में वज़न जो न वधणु, उन्हनि सभिनी बीमारियुनि जो कामयाब इलाज कयो वञे थो। राब्ते लाइ 0301-2196-851।
9: सोना सिर्फ़ ज़ेवर नहीं।
1: हर घर की अमानत होती है, इसीलिए बैंक इस्लामनी लाया पाकिस्तान का पहला शरिया कंप्लायंट गोल्ड बेस्ड फाइनेंसिंग, जिससे मिले 50 लाख रुपए तक की फाइनेंसिंग 4 साल तक की मुद्दत के साथ। बैंक इस्लामी गोल्ड बेस्ड फाइनेंसिंग से अमानत को अपनी जगह रहने दो। आज ही 1114752 64 या bankislami.com.pk पर अप्लाई करें। शराइत और जवाबित लागू हैं।
9: खुशखबरी, क्या आप बालों के झड़ने से परेशान हैं? अब फिक्र छोड़िए, शहर मेहरापुर में रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक लेकर आया है बालों की जदीद और मौसर इलाज, एक्सोसोम्स एंड पीआरपी ट्रीटमेंट के साथ बालों का झड़ना कम करने में मददगार, कमजोर जड़ों को मजबूत बनाए, नए बालों की निशोनुमा में मदद दे, बालों को घना और सेहतमंद बनाए। घने मजबूत और खूबसूरत बालों के लिए आज ही राब्ता करें रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक, नज़्द रेलवे फाटक अक्सा मस्जिद, थरी रोड मेहरापुर, 03003385 69।

जी वापस आ चुके हैं दोबारा से आप लोगों के पास और आप सुन रहे हैं जी FM 88 नीट पर. हमारे साथ यहाँ पर मौजूद है जनाब सखर मोरो मिरपुर खास मटियारी सकरन बेहरापुर मातली 92 नूरियाबाद और जनाब लाड़काना के लाइव स्टूडियो से आप सुन रहे हैं YTH एंड डी स्किन ब्यूटी शो स्पॉन्सर्ड किया जा रहा है YTH ब्यूटी प्रोडक्ट्स एंड डी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स के तावन से. और डी स्किन ब्यूटी क्रीम के बारे में यहाँ पर आप लोगों के साथ बातें की जा रही है और डी स्किन ब्यूटी क्रीम अगर आप भी इस्तेमाल करना चाहते हैं तो बिल्कुल आप सही जगह पर मौजूद है. और ये स्किन ब्यूटी क्रीम के बारे में जरा सा आप लोगों को बताते हैं, जरा सा क्या बल्कि थोड़ा सा नहीं बल्कि बहुत ज्यादा सा आपको बताते हैं कि जब आप डी स्किन ब्यूटी क्रीम इस्तेमाल करने लगेंगे तो आपके जहनों में ये चीजें तो होनी ही चाहिए कि हम डी स्किन ब्यूटी क्रीम क्यों इस्तेमाल कर रहे हैं. क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जिनको पता नहीं होता, बस दुकानदार कोई भी प्रोडक्ट पकड़ा देता है या फिर वो अगर देखते हैं कि भाई फला इंसान को इस प्रोडक्ट से अच्छा रिजल्ट मिल रहा है तो हम लगाएंगे तो हमें भी अच्छा रिजल्ट मिलेगा. तो ऐसा कोई सीन नहीं होता. अगर कोई भी प्रोडक्ट किसी और के ऊपर अच्छा वर्क कर रहा है तो ये चीज बिल्कुल भी सही नहीं होती कि वो आपकी स्किन के ऊपर भी बिल्कुल वैसे ही वर्क करेगा जैसे वो उसकी स्किन के ऊपर कर रहा है. क्योंकि हर एक इंसान की स्किन टाइप अलग अलग होती है. अगर आप अपनी स्किन टाइप नहीं जानते, आपको नहीं पता कि हमारी स्किन टाइप क्या है, तो आप थोड़ा सा जो है ना वो हर एक प्रोडक्ट जो है ना उसे अवॉइड किया करें. ऐसा नहीं कि बस कोई भी प्रोडक्ट बता दिया उसके ऊपर आपने अप्लाई करना स्टार्ट कर दिया. आप ऐसा किया करें, पहले जान लीजिए, समझ लीजिए कि जो भी प्रोडक्ट आप इस्तेमाल करने वाले हैं, जो भी प्रोडक्ट इस्तेमाल करना चाहते हैं तो उसको आप क्यों इस्तेमाल करेंगे. तो सबसे पहले हम यहाँ पर बात करेंगे डी स्किन ब्यूटी क्रीम के बारे में. तो यहाँ पर डी स्किन ब्यूटी क्रीम जो है, सबसे पहली बात तो ये है कि डी स्किन ब्यूटी क्रीम ये ऑल स्किन टाइप के लिए है. और ऑल स्किन टाइप के लिए क्यों है, क्योंकि डी स्किन ब्यूटी क्रीम एक मेडिकेटेड फार्मूला है. और मेडिकेटेड फार्मूला होने की वजह से डी स्किन ब्यूटी क्रीम को हर स्किन के ऊपर आराम से इस्तेमाल किया जा सकता है. और डी स्किन ब्यूटी क्रीम जिसके अंदर वाइटामिन बीट्स हैं, माइक्रो बीट्स फार्मुलेशन है. और ये जो चीजें होती है ना जैसे वाइटामिन बीट्स और माइक्रो बीट्स फार्मुलेशन, ये पाकिस्तान में 2 से 3 प्रोडक्ट्स है जिनके अंदर पाई जा रही है. और डी स्किन ब्यूटी क्रीम तो भाई क्या बात है, आपकी स्किन को ऐसे चमका देगी. और डी स्किन ब्यूटी क्रीम के अंदर अल्फा आरबुटीन है, कोजिक एसिड है, ग्लूटाथायोन है. ये तमाम चीजें भी आपकी स्किन के लिए बहुत ज्यादा फायदेमंद साबित होने वाली. वैसे कहते हैं ना जो अच्छा महंगे महंगे प्रोडक्ट नहीं इस्तेमाल कर पा रहे हैं तो आप डी स्किन ब्यूटी क्रीम का इस्तेमाल कर सकते हैं. वैसे जब आप देखते हैं ना कि बहुत सारी खवातीन जब बहुत महंगे महंगे फेशियल करा के आती हैं और फेशियल कराने के बाद जो उनके चेहरे पर ऐसे आपको लगता है ना कि बहुत ज्यादा वाला निखार आ चुका है, तो जब आप डी स्किन ब्यूटी क्रीम का इस्तेमाल करते हैं तो ये 2-in-1 क्रीम है. यानी कि आपको इस तरह का निखार देती है कि जैसे आपने फेशियल किया हुआ हो. ये एक नाइट क्रीम है जैसे आपका टाइम भी बच जाता है, आपके पैसे भी बच जाते हैं और आपको बहुत से भी बहुत अच्छा वाला निखार भी मिल जाता है. तो डी स्किन ब्यूटी क्रीम के बहुत ज्यादा वाले फायदे हैं. ये बात हो बिल्कुल आप सभी जानते हैं कि खूबसूरती की बात हो और स्किन केयर को नजरअंदाज कर देना ये जो होता ना ये चीज हमसे बिल्कुल भी नहीं हो पाती. और ये तो हो ही नहीं सकता कि भाई आप डी स्किन ब्यूटी क्रीम का इस्तेमाल कर आपको रिजल्ट ना मिले. इतना अच्छा इतना कमाल का आपको रिजल्ट मिलने वाला है कि आजकल हर कोई चाहता है ना कि जैसे भाई उनकी जल्द जो है वो साफ सुथरी हो, नरम हो, फ्रेश हो, बेदाग हो, गोरी हो. लेकिन उसके लिए ये भी हो जाता है कि भाई आप समझ नहीं पाते कि हमने कौन सा प्रोडक्ट इस्तेमाल करना है. तो डी स्किन ब्यूटी क्रीम जो है आपकी स्किन के लिए बहुत ज्यादा फायदेमंद साबित होने वाली है. क्योंकि डी स्किन ब्यूटी क्रीम के अंदर जैसे पहले ही मैंने आपको बताया कि ये मेडिकेटेड फार्मूला है, डॉक्टर्स की निगरानी के अंदर तैयार किया गया है और ये हर स्किन के ऊपर इस्तेमाल हो सकता है. तो बिल्कुल जी आप डी स्किन ब्यूटी क्रीम को अपनी रोजमर्रा स्किन के रूटीन का हिस्सा बना लीजिए. चाहे आप रात को सोने जाएं तो कुछ ही जो पल होते हैं ऐसा होता है कि भाई मुझे ये लगता है कि कुछ लोगों के पास चलें, अगर आपके पास दिन में कोई भी टाइम नहीं है तो शाम में रात में आप थोड़ा जो ना 4 से 5 मिनट अपने लिए निकाल लीजिए. 4 से 5 मिनट मुझे लगता है कि ये इनफ टाइम होता है अपनी स्किन को अच्छे से वॉश करने के लिए और एक ब्यूटीफुल सी क्रीम अपने चेहरे पर अप्लाई करने के लिए. ये 4 से 5 मिनट बहुत काफी होंगे. तो अगर आप भी डी स्किन क्रीम का इस्तेमाल करना चाहते हैं तो मोस्ट वेलकम. आपके पास इतना प्रीमियम क्वालिटी का प्रोडक्ट मौजूद है जिसका इस्तेमाल करके आप ना सिर्फ खूबसूरती हासिल कर सकते हैं बल्कि अपनी खूबसूरती की हिफाजत भी कर सकते हैं. तो डी स्किन ब्यूटी क्रीम आप खवातीन हैं, मर्द हजराती हर कोई इस्तेमाल कर सकता है. अपनी स्किन को जरा पहचानिए उसे क्या चाहिए. आपकी स्किन को जैसे आपकी बॉडी को खाने पीने की जरूरत होती है वैसे ही आपकी स्किन को भी भाई प्रोडक्ट की और अच्छे प्रोडक्ट की नीड होती है. तो बिल्कुल वैसे ही अपनी स्किन के ऊपर डी स्किन ब्यूटी क्रीम का इस्तेमाल करते रहिए. और स्किन ब्यूटी क्रीम जो कि भाई बिल्कुल सेफ है और इस प्रोडक्ट को इस्तेमाल करने वाले लोगों का बहुत अच्छा रिस्पांस मिल रहा है, ना सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि बाहर के ममालकात में भी यूज की जा रही है. तो
جناب استعمال کر کے دیکھیے گا ڈی اسکن بیوٹی کریم اور خوبصورت ہو جائیے کیونکہ یہ آپ ڈیزرو کرتے ہیں. ویسے ڈی اسکن کا فیس واش بھی مارکیٹ میں اویلیبل ہے, کہیں کہیں پر مل رہا ہے, ویسے ہر جگہ پر اویلیبل ابھی تک نہیں ہوا. تو آپ ایسا کیجیے کہ آپ ابھی قریبی جنرل اسٹور پر اویلیبل کرائیے, چلے جائیے اپنے قریبی جنرل اسٹور سے, وہاں سے معلومات لیجیے ڈی اسکن بیوٹی کریم اویلیبل ہو چکی ہے یا پھر نہیں, کیونکہ اویلیبل ہونا بہت زیادہ ضروری ہے. آپ جہاں پر رہتے ہیں وہیں پر آپ کے لیے یہ پروڈکٹس اویلیبل ہونے چاہیے. بالکل جی, چاہے آپ ہمیں سکھر سے سن رہے ہیں, مورو سے, میرپور خاص سے, مٹیاری سے, سکھرن سے, مہراپور سے, یا پھر 92 نوریا باد سے, یا پھر لاڑکانہ کی سماتے ہیں, تو ہر جگہ آپ کے لیے ڈی اسکن بیوٹی کریم اویلیبل ہونی چاہیے. بس آپ اپنے قریبی جنرل اسٹورز پر چلے جائیں اور وہاں سے نام لے کر طلب کریں. تو جلدی جلدی سے استعمال کرتے جائیے, خوبصورتی کو ذرا پہچانیے, آپ کون سے پروڈکٹ استعمال کر رہے ہیں اور وہ آپ کو کس طرح کے رزلٹ دے رہے ہیں, یہ چیز میٹر نہیں کرتی, بلکہ آپ استعمال کیجیے ڈی اسکن بیوٹی کریم, کیونکہ جب آپ ڈی اسکن بیوٹی کریم کا استعمال کریں گے تو آپ کو ملے گی وہ والی خوبصورتی جو کہ آپ ہمیشہ سے حاصل کرنا چاہتے تھے. اوکے جی, مدھس رات خواتین ہر کوئی استعمال کر رہا ہے, اپنی خوبصورتی کا خیال رکھتے جا رہے ہیں, اور جلدی جلدی سے ہمیں بھی بتائیے کہ آپ میں سے کتنے لوگ جو ڈی اسکن بیوٹی کریم کے بارے میں جانتے ہیں اور پہلے سے استعمال کرے, کیونکہ بھائی آپ اچھے سے جانتے, پہلے بھی 3 مہینے پروگرام کر کے جا چکی ہوں, دوبارہ سے یہ پروگرام اسٹارٹ ہوا ہے, تو آپ لوگوں میں سے بہت سارے لوگ ہیں جو پہلے سے ہی ڈی اسکن بیوٹی کریم کا استعمال کر رہے ہوں. اوکے جی, سو جلدی سے میرے ساتھ شیئر کیا کریں, ویسے بھی کہتی ہوں شیئرنگ از کیئرنگ ہوتی ہے, اور فیس بک والے جتنے بھی لوگ ہمارے ساتھ ہیں جی پوسٹ کو لائک اور شیئر کیا کریں. کنجوسیاں کس بات کی, اور میں نے جو آج آپ لوگوں سے سوال پوچھا ہے کہ آپ مجھے بتائیں, اگر آپ فرض کر لیجئے آپ کو ایسا مطلب چانس مل جائے فیوچر میں جانے کا, آپ کو موقع مل رہا ہو صرف آدھے گھنٹے کے لیے, آپ اپنے فیوچر میں جائیں اور دیکھیں کہ بھائی آپ کی کیا حالت ہے, آپ کی حالت اچھے ہو چکے ہیں یا برے ہو چکے ہیں, تو آپ جا کر دیکھیں گے فیوچر میں. آپ مجھے بتائیں جب آپ اپنے فیوچر میں جائیں تو اپنے لیے کیا دیکھنا پسند کریں گے, کیا ایسی چیز ہے جو آپ کو لگتا ہے کہ یہ میں فیوچر میں جا کر اپنے لیے دیکھنا چاہوں گا یا دیکھنا چاہوں گی. جلدی سے مجھے بتائیے, ہمارے پروگرام کا ایسا بنتے جائیے اور مجھے 888 اور فیس بک پر جوائن کرتے جائیے. اوکے جی, آپ کے لیے گانے لگاتے ہیں, بہت اچھی اچھی جو ہماری لسٹ میں موجود ہے, اور آپ لوگوں سے باتیں کرتے ہیں, آپ کے میسجز جو کہ کافی تعداد میں جمع ہو چکے ہیں, چاہے وہ کامنٹس ہو چاہے وہ پینل پر ہو, تو بالکل آپ کے میسجز کی جانب بھی آتے ہیں. آپ کا ہمارے ساتھ 3 بجے تک کا ہوگا, آپ سن رہے ہیں وائٹش اینڈ ڈی اسکن بیوٹی شو.

हमारे साथ यहाँ पर गुलाम फरीद बलोच लिखनी है. अस्सलाम वालेकुम जनाब, क्या हाल है? तबीयत ठीक ठाक है और बाकी सारे लोग ठीक है हो? अच्छा, सब लोगों से पूछ रहे हैं. सही है जी, कहती हैं आपका प्रोग्राम ब्यूटीफुल है, थैंक यू वेरी मच जी. और फहीम भाई लिखते हैं कि मेरा नाम तक जो ना ले सका, जो मुझे करार ना दे सका, जिसे अख्तियार तो था मगर मुझे अपना प्यार ना दे सका, वही शख्स मेरी तलाश से, वही दर्द मेरी हयात है. वाह वाह वाह वाह वाह. अच्छा, किशोर भाई लिखते हैं कि टॉपिक, अगर मुझे फ्यूचर में वञण जो मौको मिले तो आ सब खां पहिरीं ही ॾिसां हां त तू अञा घणा दफ़ा दर बंद कंदी. बाबा, असांजे अस में त ॻाल्हि हूंदी न आहे न, असां पाण हिकिड़ा छा चवां, हाणे नौकर माण्हू आहियूं, नौकरी कंदा आहियूं.

में जी पोस्ट के लाइक एंड शेयर करना. हेलो. अच्छा जेड एस हमारे साथ है फ्रॉम मोरो कहते हैं सलाम अलैकुम आप और तमाम सुनने वालों को सलाम. शो नाइस है प्लीज प्ले तू. अच्छा अच्छा मैं समझी वैसे शमन मिटाली जी गाने जी फरमाइश कर यही तो शमन नची हुए पेरी. चलो डिसूं था. और नूरियाबाद से नेक मोहम्मद पालारी हमारे साथ है. अदी आपका शो सुन रहा हूँ जबरदस्त आवाज और अंदाज क्या ही बात है कसम से क्या बात है जी. एक मुझे मैसेज मिल गया नूरियाबाद से. मैं सोच रही थी कि वैसे तो पहले भी मेरा प्रोग्राम नूरियाबाद में कनेक्ट हुआ था कुछ टाइम पहले तो नूरियाबाद से मुझे अच्छा खासा रिस्पॉन्स मिलता था. तो कल का दिन जो था वो पहला दिन था. मुझे ऐसा लग रहा था कि भाई पहले दिन लोगों को पता नहीं होगा. आज दूसरा दिन ही एक मैसेज मिला. देखते हैं आगे क्या सूरत हाल होने वाली है. तो मुझे अच्छा खासा आप सब लोगों से रिस्पांस मिलना चाहिए. और ये भी आप बताएं कि डी स्किन ब्यूटी क्रीम आप कब इस्तेमाल करने वाले हैं क्योंकि डी स्किन ब्यूटी क्रीम के ये जो इतनी तारीफें कर रही है बिला वजह नहीं कर रही हूँ. इसके बहुत ज्यादा फायदे आपको मिलने वाले हैं जब आप डी स्किन ब्यूटी क्रीम को इस्तेमाल करेंगे. तो नूरियाबाद हो कश्मीर हो कराची हो कहीं पर भी आप चले जाएं वहां पर आपके लिए डी स्किन ब्यूटी क्रीम अवेलेबल होनी चाहिए. तो बस जो नंबर आपको बता रही हूँ प्रोग्राम में उसके ऊपर रब्ता करते रहिए और अवेलेबल कराते रहिए.

क्या बात है, बहुत प्यारा गाना एंजॉय कर रहे हो यहाँ पर. अखलाक भाई कहते हैं कि आंसर चांद पे पहुंचने वाला था, अचानक जहाज का टायर पंचर हो गया. नींद से जा गए होंगे मुझे ये लग रहा है. और जी हमारे साथ यहाँ पर फहीम भाई लिखते हैं कि भाव रेशम गली में दुकानदार ऐसे हैं, जो भी प्रोडक्ट उनसे मांगो वो क्रीम उनके पास ना हो तो पांच और क्रीमें दिखा देते हैं. कहते हैं ये उससे भी ज्यादा अच्छी. हाँ बिल्कुल, असम रेशम गली में ना असांगे खबर आए तरीके तांगे नसीनी आना. तो बाबा इन चीजों का थोड़ो बच्चो अगर दुकानदार तवां सा भी आ ठगी करे तो उनके चोस बाबा सीधी गाल कर नथई डी स्किन ब्यूटी क्रीम तक घुराए वठ बाबा, बाकी असा के गुमराह न कर. नटा गुमराह थे लायो सो डी स्किन ब्यूटी क्रीम वठो बाबा, इस्तेमाल कयो और पाने खूबसूरती जो ख्याल रखो.

हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी, पोस्ट को लाइक शेयर कर रहे नहीं। अच्छा, ये हमारे साथ है मीरू खान चौक से अली अकबर बिरोही भाई, शफन अली, मीर बहर, अब्दुल खालिक सियाल, सब भाइयों को वेलकम कहा जाता है, बहुत शुक्रिया। और एम अली मोरो सिटी से कहती है अस्सलाम वालेकुम, सदरा मस्कान डी स्किन की क्या बात है, हदीका ज्ञानी का सॉन्ग तो सुनाए, हाजिर हाजिर बिल्कुल बुधरायू था। और हमारे साथ है जयपाल भाई, कहते हैं कि मेरी दोस्ती का बाग छोटा है मगर सारे फूल गुलाब रखता हूँ, दोस्त कम जरूर है मगर जो रखता हूँ लाजवाब रखता हूँ, बिल्कुल ये हुजन गुर्जर।

0: WhatsApp पे क्या है वापस आकर बताती हूँ मैं, और यही आप रहिएगा. टाइम हो जाता है जरा न्यूज ब्रेक की जाने जाएंगे, उसके बाद शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक होने वाली है. वापसी जल्दी आप लोगों के पास, तो सुनते रहिए और हमारे साथ दीजिए. मैं जरा यूं जाकर यूं वापस आ रही हूँ, आप सुन रहे हैं व्हाइटिश एंड टेस्ट इन ब्यूटी शो. सुनते रहिए और हमारे साथ रहिए.
1: जी एफएम 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज.
2: It's 2 p.m. This time check is brought to you by
0: D Skin Beauty Cream. Asli Glow Har Diya Josho. A product by Biocon International Pakistan.
3: Khush Khabri. Hadan je mubtale bimarin mein mubtala. Kandhra ae pas girdaiye mein rehna. मरीजन जो मुफ्त मुआइनो कंदो तारीख है 19 सितंबर छंछर जे दिन है सुबह 10 बजे का मझंद 3 बजे ताई हडन जे बीमारी में मुब्तला मरीज हडन ए जोड़न जे सूर जे
4: आप सुन रहे थे
5: गुर्जे अमेरिका में हिम्मत आए त ईरानी फौज के मोड़े असा के दबाए धमक सा झुकाए नथो सके अमेरिका जारियत बंद करे तो आबने हाउस खुली वेंदो आबने हाउस बाबत सूमर ते ओमान सा मुआहदे ते सही थी वेंदी हुसैन जा सऊदी अरब ते हमला जारी वधिक बजना जख्मी मस्जिद इमारत ने गाड़ियों के नुकसान पहुंतो सऊदी अरब के शहर जाजान में यमनी हुसैन के मिजाइल हमले में बजना जख्मी थी पिया सऊदी अरब के सिविल डिफेंस के तर्जुमान जो चवण आए त शहरी हदन के निशानो बढ़ाण आलमी कानून की भनकड़ी आए लंडन में साउथ एशियन फेस्टिवल पारा तकरीब मुनकद कई वही नवन सूबन की मुखालफत जिलन के इख्तियार देने की घुर तकरीब में मजहर अब्बास इफ्तकार आलम नसीर मेमण जामी चांडियो खालिद खोखर मोहम्मद खान अबड़ो संदन चवण है तो मुल्क में सूबन के ट्रोण जो गाल कंदड़ डिफेड़ पखेड़ रहा है सूबन के ट्रोण से पाकिस्तान तरक्की तो न कंदो पर उबतो मुल्क जो वजूद खतरे में पेजी वेंदो सूबन के ट्रोण वारन गालियों करण बदरा जिले सतह से इख्तियार न वन ढाबे की पंपिंग स्टेशन से बिजली जो ब्रेकडाउन कराची के पानी फरहमी मुतासर बिजली बंद थे सबब मलीर लांडी कोरंगी डिफेंस क्लिफ्टन समेत बेन इलाकन में फरहमी बंद पानी की फरहमी बंद कर मुख्तलिफ इलाकन में पानी जो बोरान पैदा थी वो शहरी तकलीफन जो शिकार वाटर बोर्ड इंतजाम चवण है तो के इलेक्ट्रिक सिस्टम में केबल फॉल्ट सबब सुबह 6 वगे बिजली जो ब्रेकडाउन थो बिजली बंद थे सबब ढाबे की पंपिंग स्टेशन जहा 21 मां 10 पंप बंद थी रहा है जमायत इस्लामी जा पेट्रोलियम लेवी खिलाफ शक्तियन शहरन में धरना जारी जमायत इस्लामी जे अमीर हाफिज नईम चयो आए त इन मुल्क में एक अचरा पिया ग्रुप मानन के लुटे रहयो आए 20 सितंबर ते सजी इस्लामाबाद मां मानो ईंदा आवाम पेट्रोलियम लेवी के भत्ताखोरी टैक्स करा दई छडयो आए धरनन में मान जो तादाद हर गुजरंदड़ दिया खा वधी रहयो आए पेट्रोलियम लेवी जो पेट्रोल जे कीमत सा को भी ताल्लुक ना है काजी अहमद में वधंदड़ बदमनी ए मंशा जे हजार खिलाफ शहरन जी रैली कॉम्परस पार्टी सियासी समाजी तंजीमन ए सिविल सोसाइटी पारा रैली कढ़ी थाने आडो एहतजाज कयो वयो अगवाण चयो त काजी अहमद में अमन अमान की सूरत हालन ताईं खराब आए मंशा जो सरेआम विकरो जारी आए आई जी सिंध नोटिस वठी मंशा जो विकरो बंद कराए सिंध पुलिस में सिपाही की भर्ती लाए टेस्ट पास कंदड़ उम्मीदवार जो हैदराबाद में एहतजाज उम्मीदवार जो चवण है तो सजी सिंध जा 1400 उम्मीदवार बिन साल का ऑफर आर्डर्स न मिलने खिलाफ सरापा एहतजाज बनल लागापल अख्तार हैदराबाद के 800 उम्मीदवार समेत बिन जिलों के नौजवान के आर्डर जारी नायन कया वा सूबाई घरू वजीर ए आई जी सिंध मामले जो नोटिस वी ऑफर आर्डर्स दियारे इंसाफ कन सिंध में एमडीके टेस्ट 2026 जो इम्तिहान 20 सितंबर से 8 सेंटर कायम कराची हैदराबाद जामछोरो मीरपुर खास शहीद बेनज़ीराबाद लाड़काणो ए सखर में सेंटर कायम कया वया आहिनि। एसटीएस जो चवण आहे त उम्मीदवार सुञाणप कार्ड या आईडी ज़रिए एडमिट स्लिप डाउनलोड करे सघनि था। रजिस्ट्रेशन वक़्तु चूंडियल इम्तिहानी शहर हतमी करार टेस्ट सेंटर तब्दील न थींदो। एमडीके टेस्ट उम्मीदवारनि खे रजिस्टर मोबाइल नंबरनि ते एसएमएस मोकिलिया विया आहिनि। एसटीएस पारां उम्मीदवारनि खे एडमिट स्लिप जो प्रिंट अॻुवाट कढण जी।
4: अब आप सुनेंगे
6: मालवन भारन लाए खुश खबरी। 50 सालन खां आजमायल सखर वारन जो जीजान ढोर चारो मसालो जानवरन में खीर ऐं गोश्त वधाए अव्हां के खुशहाल बनाए। हर पंसार ऐं जानवरन जे डॉक्टरन वट दस्तियाब आहे।
7: हर नजर आपकी खूबसूरती पर ठहर जाए और ये है मेरी खूबसूरती का राज। मिल्क राइस ब्यूटी क्रीम सिर्फ 3 दिन में जिल्द को निखारे और रंगत को रोशन करे। दाग धब्बे झुर्रियां और की महा से फौरन कम करे। इस्तेमाल का आसान तरीका, रात को मिल्क राइस ब्यूटी सोप से चेहरा धोएं, फिर मिल्क राइस ब्यूटी क्रीम चेहरे और गर्दन पर लगाएं। नताइज देखें सिर्फ 3 दिन में। एक्नी के लिए मिल्क राइस एक्नी क्रीम इस्तेमाल करें। दस्तियाब प्रोडक्ट्स मिल्क राइस ब्यूटी क्रीम, मिल्क राइस ब्यूटी सोप, मिल्क राइस एक्नी क्रीम। हर अच्छे कॉस्मेटिक जर्नल स्टोर से नाम लेकर खरीदें। मजीद मालूमात के लिए मलिक जफर इकबाल एंड एम सिद्दीक शाही बाजार मेहरापुर 03000310509 03000310509।

0: कॉलम में मौजूद आहिन फौजी बायरन लाए खुसूसी रियायत हुंदी राबते लाए फौजी अब्दुल करीम 0301-54-4456 ऐं तौकीर अहमद 0306-1623-793।
1: इरशाद ऑटोस ऐं होंडा शोरूम मेहरापुर होंडा मोटरसाइकिल जो पुर एतमाद ऐं बा अख्तियार इदारो इरशाद ऑटोस ऐं होंडा शोरूम मेहरापुर नईं मोटरसाइकिल जी सेल कंपनी जे मुकरर कर रेट ते दस्तयाब आहे। सर्विस सेंटर एटलस होंडा लिमिटेड जो वारंटी क्लेम सेंटर सर्विस एरिया जिते होंडा मोटरसाइकिल जी बेहतरीन सर्विस कई वेंदी आहे। होंडा कंपनी जा तमाम जेन्युइन स्पेयर पार्ट्स खुसूसी रियायत ते मौजूद। इरशाद ऑटोस ते पंहिंजी होंडा मोटरसाइकिल जी करायो ट्रेनिंग कंप्यूटराइज जैपनीज टेस्टिंग मशीन जरिए जिनमें मिले थी मोटरसाइकिल जी कारकर्दगी तमाम बेहतर। फ्यूल एडजस्टमेंट आरपीएमजी एडजस्टमेंट कंप्यूटराइज जापानी मशीन जरिए कई वनी थी। होंडा जे क्वालिफाइड टेक्नीशियन जी जेर निगरानी इरशाद ऑटोस हालानी रोड मेहरापुर राबते जे लाइ 0320180003।
2: खुशखबरी अपनी जिल्द को दे नई ताजगी चमक और खूबसूरती हाइड्रा फेशियल के साथ। अब फिक्र छोड़िए आपके शहर मेहरापुर में रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक आपके शहर मेहरापुर में रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक लेकर आया।

जरा आप लोगों को अवेयर करती हूँ कि सिर्फ गोरी रंगत ही हुसन नहीं होता, बल्कि आपके चेहरे की स्किन जो है ना उसका क्लियर होना भी बहुत जरूरी होता है. आपके चेहरे पर रिंकल्स नहीं होने चाहिए, निशानात नहीं होने चाहिए. आपकी स्किन जो है वो सॉफ्ट होनी चाहिए, ग्लोइंग होनी चाहिए, तभी जाकर आप मुकम्मल खूबसूरत बनते हैं. और ये सब काम जो है वो डी स्किन ब्यूटी क्रीम यू चुटकियों में कर देती है. तो डी स्किन ब्यूटी क्रीम आप इस्तेमाल कीजिए जो कि 2-in-1 है, यानी कि ये एक नाइट क्रीम भी है. और आपके चेहरे पर जब आप इस्तेमाल करेंगे तो आपको ऐसा हुसन मिलेगा, ऐसी खूबसूरती मिलेगी जैसे आप कोई महंगा सा फेशियल करा के आए. क्योंकि डी स्किन ब्यूटी क्रीम के अंदर विटामिन बीट्स हैं और माइक्रो बीट्स हैं, और विटामिन बीट्स और माइक्रो बीट्स जो है ना ये दोनों चीजें फेशियल के अंदर यूज की जाती है. तो बिल्कुल वैसे ही आपके लिए डी स्किन ब्यूटी क्रीम के अंदर भी एड की गई है ताकि आपकी स्किन की जो है ना वो हिफाजत भी होती रहे और आपकी स्किन की खूबसूरती जो ना वो भी बरकरार रहे. तो डी स्किन ब्यूटी क्रीम का इस्तेमाल आप सारे लोग कर सकते हैं, मर्द हजरात हैं, खवातीन हैं, आपकी खूबसूरती को ऐसे सफाई वीआईपी बनाई चली दी. और डी स्किन ब्यूटी क्रीम एक नाइट क्रीम है तो इसे आप रात के टाइम इस्तेमाल कीजिएगा. डी स्किन ब्यूटी क्रीम जब आप इस्तेमाल करेंगे तो सिर्फ 2 रातों के इस्तेमाल से ही आपको अच्छे रिजल्ट्स मिलना स्टार्ट हो जाते हैं. तो सिर्फ 2 दिनों में वास्ते नतीज के लिए आप डी स्किन ब्यूटी क्रीम का इस्तेमाल कर सकते हैं. जबकि जदीद अज़ा, जैसे आपको पता है कि इसके अंदर अल्फा आर्बुटीन भी है, कोजिक एसिड भी है, ग्लूटाथायोन भी है, ये तमाम चीजें जो है ना डी स्किन ब्यूटी क्रीम के अंदर एड की गई और आपकी स्किन के अंदर तक जाकर आपकी स्किन को इस तरह खूबसूरत बना देंगे कि आपके चेहरे पर डार्क स्पॉट हो या हाइपर पिगमेंटेशन हो या फिर आपके चेहरे पर बहुत ज्यादा इस तरह के मसले हैं जो कि भाई आप चाहते हैं कि ये खत्म होने चाहिए, आपकी स्किन मॉइस्चराइज नहीं है, तो हर तरह से आपकी स्किन को जो है ना खूबसूरत बनाएगा, चमकदार बनाएगा और आपकी खूबसूरती की जो है ना वो एक अलग ही लेवल हो जाएगी. वैसे

आपकी जल्द की साख जो है ना वो बेहतर हो जाएगी और आपको ऐसा महसूस होगा कि भाई अब हमारी स्किन जो है वो नरम मुलायम और सॉफ्ट होना स्टार्ट हो चुकी है। तो डी स्किन ब्यूटी क्रीम के इतनी सारे फायदे हैं जब आपको मिलेंगे जब आप डी स्किन ब्यूटी क्रीम का इस्तेमाल करना शुरू करेंगे। डी स्किन ब्यूटी क्रीम को इस्तेमाल किस तरह करना है, क्योंकि ये एक नाइट क्रीम है तो इसे आप रात के टाइम इस्तेमाल करेंगे। सोने से पहले आपने बस डी स्किन ब्यूटी क्रीम का इस्तेमाल करना है और सबसे पहले आप क्या करते हैं अपना फेस वॉश करेंगे। फेस वॉश रात का जो होता है ना वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। अगर आप रात को फेस वॉश नहीं करके सोते हैं तो यकीन जाने अपनी स्किन के साथ आप दुश्मनी कर रहे हैं। रात को फेस वॉश लाजमी किया करें, लाजमी। मतलब ऐसा नहीं कि अगर आप नाइट क्रीम लगा रहे हैं तभी आप फेस वॉश करेंगे, अगर आप ना भी लगाएं तब भी आप रात का फेस वॉश स्किप बिल्कुल भी ना किया करें। रात को फेस वॉश करें, अच्छी तरह से अपने चेहरे को क्लीन करें, उसके बाद डी स्किन ब्यूटी क्रीम अपने चेहरे पर अप्लाई करें। सॉफ्टली नरम नरम हाथों से आप अप्लाई किया करें और जब आप नाइट क्रीम लगा रहे होते हैं तो उसको मसाज नहीं किया करें, ये चीज भी थोड़ी सी डिस्टर्ब कर देती है आपकी स्किन को। तो बिल्कुल जी आराम से लगाइए, प्यार से लगाइए और मोहब्बत से लगाइए, आपको मिलेगी ऐसी खूबसूरती जो कि आप हमेशा से डिजर्व करते आ रहे हैं। और उसके साथ साथ खूबसूरती की बात हो और स्किन केयर आप जरा इग्नोर करें तो ये कैसे चलेगा। तो स्किन केयर बहुत ज्यादा जरूरी हो जाती है। अगर आपको दिन में टाइम नहीं मिलता, आप महंगे महंगे पार्लर नहीं जा सकते हैं, फेशियल्स नहीं करा पाते हैं, आपके पास इतने पैसे भी नहीं है, आपके पास इतना टाइम भी नहीं है, तो बस आप एक डब्बी जो है ना परचेज करेंगे जिसका नाम है डी स्किन ब्यूटी क्रीम और ये डब्बी आपके स्किन के लिए बहुत ज्यादा फायदेमंद है। ऐसा जादुई सा असर हो जाएगा और एक मैजिकल प्रोडक्ट है, बस आप इसे लगाएंगे तो आपकी खूबसूरती आपको चुटकियों में मिल जाएगी और वो वाली खूबसूरती जो हमेशा आपके साथ मौजूद रहने वाली है। तो जल्दी जल्दी से इस्तेमाल करती रहिए, खूबसूरती का ख्याल रखिए और हमेशा के लिए हसीन, प्यारे और पुरकशिश बनते जाइए। अच्छा, तो यहाँ पर आप जितने भी लोग हमें सुन रहे हैं सबको वेलकम इन खुशामदीद कहा जाता है। प्रोग्राम के दूसरे घंटे में हमने एंट्रियां मार ली हैं और जितने भी लोग हमारे साथ हैं जनाब वेलकम। और साथ ही साथ मैंने आज आप लोगों से सवाल पूछ लिया है कि आप मुझे बता रहे हैं, फर्ज कर लीजिए अगर आपको फ्यूचर में जाने का चांस मिल जाए, यानी कि फ्यूचर में आप चले जाएं, तो आप अपने लिए क्या देखना पसंद करेंगे कि भाई हम फ्यूचर में तो गए हैं लेकिन हम अपने लिए ये देखेंगे भाई हमारे पास बड़ा घर है, गाड़ी है, ये है, वो है, ये सब मिला या नहीं मिला देखेंगे या क्या देखेंगे। जल्दी से मुझे बताइए हमारे प्रोग्राम का हिस्सा बनते जाइए और आप मुझे 8881 और फेसबुक पर ज्वाइन करते जा रहे हैं। तो फेसबुक वाले लोग पोस्ट को लाइक और शेयर करते जाइए, ऐसे आपकी मोहब्बतें जो ना प्रोग्राम से साबित होती हैं। तो मोहब्बतें दिखाइए, पोस्ट को लाइक और शेयर करते जाइए। बाकी आपके मैसेजेस की जानब आते हैं, बिल्कुल जी यहाँ पर पैनल की जानब आते हैं तो आपके मैसेजेस हैं और ये हमारे साथ हैं जी हमारी फजली। और फजली क्या कहती है, कहती है अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम, वालेकुम अस्सलाम, गुड आफ्टरनून, वेलकम कहते हैं स्वीटी आपको भी और कहती है कि सलाम टू माई स्वीट हार्ट मॉम इन कायनात और सब स्वीट सिस्टर्स को। ओके जी, ओके, सबको वेलकम कहते हैं आपकी तरफ से और आपको भी वेलकम कहते हैं अपनी तरफ से। जी हमारे साथ हैं यहाँ पर और भाऊ, एक सॉन्ग सुनाओ शाम जो दिलकश नजारो तू ऐ माँ, काशिफ अघानी की आवाज में। बिल्कुल जी आपके लिए लगाएंगे गाना। वोट गुलाब लगा रही खान, साबिर लगा रही, सुल्तान लगा रही, रिजवान लगा रही, वालेकुम अस्सलाम, वेलकम शो, नाइस, प्लीज प्लीज समीना गुडी, ओके। और ये भाऊ लिखते हैं कि अच्छा भाऊ जी मैं डी स्किन ब्यूटी क्रीम यूज करूंगा। अच्छा अच्छा, वैसे आप डी स्किन ब्यूटी क्रीम का इस्तेमाल कर सकते हैं। डी स्किन ब्यूटी क्रीम जो है ना ये एक ऐसा प्रोडक्ट है जो कि भाई मेडिकेटेड फार्मूला है। बहुत से लोगों की स्किन थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड टाइप सी होती है ना, यानी कि सर्दियों में तो उनकी स्किन बड़ी ड्राई हो जाती है लेकिन गर्मियों में बड़ी ऑयली हो जाती है, उनको समझ नहीं आता कि भाई मेरी स्किन ऑयली है या ड्राई है या फिर सेंसिटिव है। लेकिन इस स्किन को कॉम्बिनेशन टाइप कहते हैं जो कि भाई हर मौसम के हिसाब से चेंज होती रहती है। तो अगर आपकी स्किन भी कॉम्बिनेशन टाइप है तो आप भी डी स्किन ब्यूटी क्रीम का इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि डी स्किन ब्यूटी क्रीम हर मौसम में भी यूज की जा सकती है, हर स्किन के ऊपर भी यूज की जा सकती है और हर एक इंसान यूज कर सकता है, चाहे आप मर्द हजरात हैं चाहे आप खवातीन हैं। तो बस इस्तेमाल कीजिए और खूबसूरत हो जाइए। और कहते हैं कि भाऊ भाऊ पैनल पे नजरे करम करें, पैनल पर ही मेरी नजरें करम है, कमेंट्स की जाने में गई नहीं हूँ। और कहते हैं मैं तो कराची से सुन रहा हूँ, यहाँ नहीं मिलती, कराची में नहीं मिलती, तो नंबर के ऊपर रब्ता किया करें जी, नंबर किस लिए बताती हूँ बाकी। ओके जी, नंबर आपको बताने लगी हूँ, जल्दी से नंबर्स के ऊपर रब्ता कीजिए ताकि आप दुनिया के किसी भी कोने में हैं तो वहाँ पर डी स्किन ब्यूटी क्रीम आपके लिए अवेलेबल हो जाए। तो नंबर है जनाब 03-12-50-25-9.
पंजवीह नव सौ सत ॿियो नंबर आहे 0332738 4309 ॿुड़ी 332 73 84 टे सौ नव ही नंबर आहे बिल्कुल तव्हां डायल करे पंहिंजे क़रीबी जनरल स्टोर ते अवेलेबल कराए सघो था चाहे तव्हां दुनिया जे कहिड़े बि कोने में हूंदा तव्हांजे लाइ डी स्किन ब्यूटी क्रीम अवेलेबल कराई वेंदी ठीकु आहे और जी हमारे साथ मुनव्वर अली मुगल भाई मीरपुर खास ही हमारा शो सुन रहे थे सिद्रा मुस्कान नाइस शो मीरपुर खास एफएम की आवाज बहुत स्लो है आवाज तेज करवा दें ये चीज मैंने भी जरा देखी है मीरपुर खास में जो होता है ना कभी गाने की आवाज बहुत स्लो आती है आरजे की आवाज बड़ी तेज आती है तो थोड़ा जो ना वो सिस्टम को सेट रखें जी आवाज को जरा ऊंचा कर दे कुछ नहीं होता और ये जरा सिस्टम का जो ना थोड़ा इश्यू है वाकई उनका मुझे भी लगता है जब हम सुनते हैं जी मीरपुर खास का प्रोग्राम तो है उनके अंदर ये चीज ठीक करें जी आप आवाज को जरा तेज कीजिए कुछ नहीं होगा लोगों तक आवाज ज्यादा पहुंचेगी और ज्यादा लोग हमें सुन पाएंगे अच्छा ये मुनव्वर भाई हमारे साथ है बहुत शुक्रिया थैंक यू वेरी मच आपका बाकी आप फेसबुक वाले लोगों की जाने भी आ जाते लेकिन मेरे पास एक गाना मौजूद है तो हम जरा सोच रहे थे कि एक गाना भी सुन लेते हैं तो ये वाला गाना सुनते हैं

जी आप सुन रहे हैं व्हाइट एश एंड ईस्ट ब्यूटी शो, स्पॉन्सर किया जा रहा है व्हाइट एश ब्यूटी प्रोडक्ट्स एंड ईस्ट ब्यूटी प्रोडक्ट्स के तावन से। जल्दी से इस्तेमाल कीजिए और खूबसूरत रहिए, क्योंकि आप खूबसूरत बनना चाहते हैं, लेकिन वो अलग बात है कि आपको सही तरह से गाइड नहीं किया जाता कि भाई आपने कौन से प्रोडक्ट का इंतखाब करना है। तो जल्दी जल्दी से डी स्किन ब्यूटी क्रीम आप अपने करीबी जनरल स्टोर्स पर अवेलेबल कराइए और डी स्किन ब्यूटी क्रीम का इस्तेमाल करते जाइए। अच्छा किशोर भाई हमारे साथ मौजूद है, क्या बात है जी, अपना दुखड़ा सुना रहे। बचपन में मेरे साथ ये हो गया ऐसी बात है, वैसे एक चीज मेरे साथ ही हुई थी बचपन में, लेकिन वो मैं शेयर नहीं करूंगी। तो हाँ ये आए जैसे मानो खुदा रूना है, जैसे साफ दिल जमा रूना है ना, वो बिल्कुल ये करना है। तो ये अच्छी बात है, ऐसा ही करना चाहिए मुझे ये लगता है। अच्छा सो अखलाक भाई को शायद नींद आ रही है और ये हमारे साथ हैं जी रिजवान अली। रिजवान भाई क्या कहते हैं, कल आपने मेरी फरमाइश नहीं लगाई थी। बिल्कुल जी आपकी फरमाइश मुझे याद है, आपका गाना लगाते हैं। नजर मोहम्मद भट्टी हमें सुन रहे हैं, वालेकुम अस्सलाम अटियारी से आपने हमें ज्वाइन किया है, आपका प्रोग्राम पसंद आ रहा है, बहुत शुक्रिया। फरवा कहती हैं आपकी, आपका प्रोग्राम बड़ा जबरदस्त है, बहुत शुक्रिया फरवा। एहसन अली बुक्टी हमारे साथ है लाड़काना से, आप हमारा शो सुन रहे हैं जी, बहुत शुक्रिया। लाड़काना में आपको हर जगह डी स्किन ब्यूटी क्रीम मिल रही है, आए हाय जब मैं बोल रही हूँ मुझे इतना अच्छा लग रहा है ना कि लाड़काना में आप कहीं भी चले जाएंगे तो आपको डी स्किन ब्यूटी क्रीम मिल जाएगी। और डी स्किन ब्यूटी क्रीम की ना एक ये क्वालिटी है कि भाई डी स्किन ब्यूटी क्रीम एक मेडिकेटेड फार्मूला है, और यानी कि इसका कोई डर नहीं कि भाई आपकी अगर स्किन सेंसिटिव हो, कॉम्बिनेशन टाइप हो, ये प्रॉब्लम है स्किन के साथ हो, आप नहीं प्रोडक्ट यूज कर पाते हैं, तो आप डी स्किन ब्यूटी क्रीम बिल्कुल लगा सकते हैं। तो डी स्किन ब्यूटी क्रीम का इस्तेमाल कीजिए, दिल खोल कर इस्तेमाल कीजिए और खूबसूरत हो जाइए। ओके जी चाचा खालिद भी हमारे साथ ही, चाचा खालिद बिल्कुल जी टॉपिक आपको समझ आया या अभी तक नहीं आया। आरडी किंग हमें सुन रहे कहते हैं राशिद अली शो बहुत जबरदस्त है माशाल्लाह, थैंक यू वेरी मच जी। बख्त अली सियाल भाई हमें सुन रहे हैं, बहुत शुक्रिया, थैंक यू। अच्छा फहीम भाई कहते हैं मैं संडे वाले दिन कराची में अवेलेबल कराऊंगा और सर खालिद से भी तबीयत पूछने जाऊंगा। चलिए ये अच्छी बात है, और आप जरा मालूमात कीजिएगा कराची में कहाँ कहाँ पर डी स्किन ब्यूटी क्रीम अवेलेबल कराने की नीड है। वैसे जहाँ जहाँ पर आप रहते ना वहाँ पर तो करा ही रहे, ताकि आपके लिए भी आसानी हो और बाकी जो लोग जाएं तो वो भी डी स्किन ब्यूटी क्रीम आराम से परचेज कर सके। अच्छा बिलाल अली हमें सुन रहे हैं, वालेकुम अस्सलाम, ठीक हूं जी आप बताएं कैसे हैं। और यहाँ पर महर इरफान सियाल साहब हमारे साथ हैं, ज्वाइन कर चुके प्रोग्राम को, कहते हैं ग्रेट प्रोग्राम में मार्जे, थैंक यू वेरी मच सर, ये तो आपकी मेहरबानी है कि आपको प्रोग्राम पसंद आता है बहुत शुक्रिया। अच्छा अब्दुल गफार भाई हमारे साथ है, खुश आमदीद, वेलकम। और सी खालिद नोटकानी हमारे साथ ही, वालेकुम अस्सलाम, वालेकुम अस्सलाम, मातली से आप हमारा शो सुन रहे हैं, खुश आमदीद। मातली में बताएं जरा डी स्किन ब्यूटी क्रीम मिली या फिर अभी तक नहीं।

जी तसल्ली कर लीजिए, लाड़काना पूरे लाड़काना में जी स्किन ब्यूटी क्रीम हर जगह अवेलेबल हो चुकी है, तो आप भी बस कहीं पर भी जाइए आपको आराम से जी स्किन ब्यूटी क्रीम मिल जाएगी। और इसी के साथ साथ नहीं भी मिल रही है, फर्ज कर लीजिए कोई छोटा मोटा जनरल स्टोर है वहाँ पर अगर अवेलेबल नहीं है, तो आप क्या कर सकते हैं, आप जी नंबर के ऊपर रब्ता करेंगे जो नंबर आपको मैं बता रही हूँ प्रोग्राम के अंदर। अच्छा जी पाल भाई कहते भाई नंबर तो ऐसे बता रही हूँ जैसे वो फ्री में दे जाएंगे प्रोडक्ट, नहीं नंबर आपको याद हो जाए ना इसीलिए ऐसे बताती हूँ आराम से स्लो स्लो। वैसे कई लोगों की ये भी शिकायत आती है कि सदरा आप बड़ा तेज बोलती हैं, नंबर बड़ा तेज बताती हैं, तो हम नोट ही नहीं कर पाते, इसलिए मैं जरा कोशिश करती हूँ थोड़ा स्लो में बता दूँ ताकि

अच्छा खालिद भाई जान कहते हैं कि मातली में नहीं अवेलेबल हुई अभी तक डी स्किन ब्यूटी क्रीम. भाई आप जाइए तो मालूमात लीजिए और वहाँ से अच्छे से पूछिए दो चार जनरल स्टोर से और फिर जो आपको नंबर बता रही हूँ उसके ऊपर आप रब्ता कीजिएगा. ठीक है. और हसनैन दर्स भाई हमारे साथ ही शहर दड़ोखा हसनैन दर्स सतार दर्स वकार दर्स भावन के चौथा भली करी आया. अच्छा जाहिद अली बुर्दी भाई हमें सुन रहे हैं. वालेकुम अस्सलाम. मैं ठीक हूँ जी, आप बताएं कैसे हैं. सही बात है, सारे लोग कराची जा रहे हैं, कराची वाले लोग आ जाएंगे.

मुझे सां भाग वारा आयो छदा डे स्किन ब्यूटी क्रीम असान जी आए तव्हां बि भाग वारा थियो बाबा डे स्किन ब्यूटी क्रीम पंहिंजी करायो छो त वठी अचो ऐं डे स्किन ब्यूटी क्रीम इस्तेमालु कयो छो त तव्हां सुहिणा थी वेंदा ऐं ये हमारी साथियुनि जी अच्छा महर इरफान सियाज साहब कहते हैं मैम आई एम लिसनिंग योर प्रोग्राम फ्रॉम डिग्री ओके जी डिग्री से आप हमारा शो सुन रहे सर बहुत शुक्रिया और पहलवान चांडियो भाई हमारे साथ हैं क्या बात है हेलो जी हेलो डी स्किन ब्यूटी क्रीम लगाएगा पहलवान भाई ओके जी सो यहाँ पर टाइम हुआ है शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक का छोटे से शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक होंगे जल्दी से वापसी आप लोगों के पास आते आपने बिल्कुल कहीं नहीं जाना अपनी जगह से नहीं हिलिएगा ठीक है मैं यूं जाकर यूं वापस आती हूँ सो स्टे ट्यून्ड स्टे कनेक्टेड एंड कीप लिसनिंग व्हाइटिश एंड डी स्किन ब्यूटी शो स्पॉन्सर्ड बाय व्हाइटिश ब्यूटी प्रोडक्ट्स एंड डी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स इस्तेमाल कीजिए और खूबसूरत हो जाइए

सोना सिर्फ जेवर नहीं, हर घर की अमानत होती है। इसीलिए बैंक इस्लामनी लाया पाकिस्तान का पहला शरिया कंप्लायंट गोल्ड बेस्ड फाइनेंसिंग, जिससे मिले 50 लाख रुपए तक की फाइनेंसिंग 4 साल तक की मुद्दत के साथ। बैंक इस्लामी गोल्ड बेस्ड फाइनेंसिंग से अमानत को अपनी जगह रहने दो। आज ही 1114752 64 या bankislami.com.pk पर अप्लाई करें। शराइत व जवाबित लागू हैं।

0: گردے جی پتھری مسانے جی پتھری جو بغیر آپریشن جی کامیاب علاج کیو بنے تو گردن جو انفیکشن چہرے جو رنگ سانورو چہرے جی خارش فٹ فرڈیوں بارن میں قد جو نہ بدن مردن عورتن میں وزن جو نہ بدن انہن سبنی بیمارن جو کامیاب علاج کیو بنے تو رابطے لے 0301-196-851
1: खुशखबरी, क्या आप बालों के झड़ने से परेशान हैं? अब फिक्र छोड़िए, शहर मेहरापुर में रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक लेकर आया है बालों की जदीद और मौसर इलाज एक्सोसोम्स एंड पीआरपी ट्रीटमेंट के साथ बालों का झड़ना कम करने में मददगार कमजोर जड़ों को मजबूत बनाए नए बालों की निशोनुमा में मदद दे बालों को घना और सेहतमंद बनाए घने मजबूत और खूबसूरत बालों के लिए आज ही राब्ता करें रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक नज़्द रेलवे फाटक अक्सा मस्जिद थरी रोड मेहरापुर 0300-338-5569 रोशनी का काफिला मंजिल की तरफ गामजन मजहर स्कूल सिस्टम मेहरापुर शानदार तालीमी इमारत प्रोफेसर कुर्बान अली मेमन एयर कंडीशन्ड एकेडमिक ब्लॉक का इनेकार मेहनती मुशाक और तजुर्बेकार तदरीसी अमला सरसब्ज बागीचा बेहतरीन फर्नीचर शानदार कंप्यूटर फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी की लैब्स ऑडियो और विजुअल लेक्चर सिस्टम की सहूलत केमिस्ट्री फिजिक्स बायोलॉजी रियाजी और इंग्लिश पर खुसूसी तवज्जो एंट्री टेस्ट के लिए मेडिकल और इंजीनियरिंग में काबिल तहसीन नतायज खेलों का मैदान और वहां मुनक्किद होने वाले मुकाबले तहरीर तकरीर और जहनी आजमाइश के मुकाबले स्टडी टूर्स अपनी आँखों के नूर बच्चियों और प्यारे बेटों की मयारी तालीम तरबियत के लिए आज ही मजर स्कूल सिस्टम मेहरापुर का विजिट करें मजीद राबते के लिए डॉक्टर अल्ताफ हुसैन मेमन मैनेजिंग डायरेक्टर मजर स्कूल सिस्टम 0300-002-7234 निसार अहमद मेमन प्रिंसिपल मजहर स्कूल सिस्टम मेहरापुर 0301-3865-453
2: आशिक होंडा शोरूम मेहरापुर एटलेस होंडा मोटरसाइकिल टू पर एतमाद अम्बा अख्तियार 3S डीलर आशिक होंडा मोटर्स मेहरापुर जिते नई मोटरसाइकिल जी सेल कंपनी जे मुकरर कल रेट ते दस्तियाब है सर्विस सेंटर एटलेस होंडा लिमिटेड जो वारंटी क्लेम सेंटर सर्विस एरिया जिते होंडा मोटरसाइकिल जी बेहतरीन सर्विस कई वेंदी है होंडा कंपनी जा तमाम जेन्युइन स्पेयर पार्ट्स खुसूसी रियायत ते मौजूद आशिक होंडा मोटर्स ते पहेंजे होंडा मोटरसाइकिल जी ट्यूनिंग करायो कंप्यूटराइज जैपनी स्टेचिंग मशीन जे जरिए जिनमें मिले थी मोटरसाइकिल जी कारकर्दगी तमाम बेहतर फ्यूल एडजस्टमेंट आरपीएम जी एडजस्टमेंट कंप्यूटराइज जापानी मशीन जरिए कई वने थी होंडा जे क्वालिफाइड टेक्नीशियन जे जैर निगरानी आशिक होंडा मोटर्स एड्रेस इंडस बाईपास नस्त रेलवे लाइन मेहरापुर राप्ती जिलाए आसिम हुसैन आराई
3: मेहरापुर के हो तो आवाज भी मेहरापुर की है सुनते रहो जी एफ एम 94

वापस आ चुके हैं दोबारा से आप लोगों के पास और आप सुन रहे हैं जीएफएम 88.8 पर। हमारे साथ यहाँ पर मौजूद है जनाब सखर मोरो मीरपुर खास मटियारी सकरन मेहरापुर मातली 92 नूरियाबाद और जनाब लाड़काना के लाइव स्टूडियो से आप सुन रहे हैं व्हाइट एज एंड डेज की ब्यूटी शो। बिल्कुल जी, इस प्रोग्राम में आप लोगों के साथ बातें की जाती हैं बहुत ज्यादा और आगे खूबसूरती का ख्याल रखा जाता है उससे भी बहुत ज्यादा। अगर आप भी हसीन बनना चाहते हैं, खूबसूरत बनना चाहते हैं, खूबसूरती का ख्याल रखना चाहते हैं तो बिल्कुल जी आप हमारे प्रोग्राम में आ जाइए। आपको मालूम पड़ेगा कि अगर आप डी स्किन ब्यूटी क्रीम का इस्तेमाल करना चाहते हैं तो आपके लिए खूबसूरती और खूबसूरती हासिल करना कितना आसान काम हो जाएगा। वैसे तो जब आप मार्केट जाते हैं तो वो वाली बात है कि बिल्कुल दुकानदार बहुत सारे आपको प्रोडक्ट दिखा देते हैं और कहते हैं कि ये वाला बहुत अच्छा है, ये वाला बहुत अच्छा है, इसकी ज्यादा आजकल डिमांड चल रही है, ऐसा कोई सी नहीं होता। अगर आप मार्केट जाएं तो आप डी स्किन ब्यूटी क्रीम परचेज करने जाएं, आपके जहन पे ये चीज होनी चाहिए। और डी स्किन ब्यूटी क्रीम जब आप इस्तेमाल करेंगे तो आपको अंदाजा हो जाएगा कभी सिद्रा क्यों इतनी बातें करती है डी स्किन ब्यूटी क्रीम के बारे में, क्योंकि पर्सनली बताऊं तो भाई हमारे घर में भी यूज हो रही है, सब लोगों का बड़ा अच्छा रिस्पांस मुझे मिल रहा है। और डी स्किन ब्यूटी क्रीम जो लोग इस्तेमाल कर रहे हैं उनको पता है कि सिद्रा बिल्कुल सही कह रही है। और डी स्किन ब्यूटी क्रीम अगर आप भी इस्तेमाल करना चाहते हैं तो बिल्कुल इस्तेमाल कीजिए। और डी स्किन ब्यूटी क्रीम को जो ये विटामिन ई बीट्स और माइक्रो बीट्स फार्मुलेशन है, ये दोनों चीजें बड़ी निराली बना देते हैं, क्योंकि डी स्किन ब्यूटी क्रीम ये 2-in-1 क्रीम है, यानी कि ये एक नाइट क्रीम भी है। जब आप इसे इस्तेमाल करेंगे तो आपको रिजल्ट मिलेगा ऐसा जैसे कि आपने फेशियल किया हुआ है। तो ये इतना कमाल का प्रोडक्ट आपके लिए मार्केट में अवेलेबल है तो भाई क्यों आप चांस मिस कर रहे हैं, मौके पे चौका मारिए और डी स्किन ब्यूटी क्रीम इस्तेमाल कीजिए। क्योंकि खूबसूरती को मजीद निखारने के लिए अपनी रोजमर्रा ब्यूटी केयर में आप शामिल करेंगे जब डी स्किन ब्यूटी क्रीम, तो इसका नरम और खूबसूरत एहसास आपकी स्किन के रूटीन को मजीद खास बना देगा और साफ सुथरे अच्छी तरह मॉइस्चराइज भी आपकी स्किन को कर देगा। आपकी शख्सियत में ताजगी और एतमाद का एहसास भी पैदा हो जाएगा। तो अपनी रोजमर्रा की ब्यूटी केयर रूटीन में आप इस्तेमाल कीजिए डी स्किन ब्यूटी क्रीम, जो कि आपकी स्किन को बनाए इतना खूबसूरत, इतना शानदार, ये बस आपकी सोच है। अच्छा, मर्द हजरात भी इस्तेमाल कर सकते हैं, खवातीन भी इस्तेमाल कर सकती है। और डी स्किन ब्यूटी क्रीम के बारे में ये चीज भी आपको पता है कि डी स्किन ब्यूटी क्रीम सिर्फ और सिर्फ 2 दिनों में आपको रिजल्ट देना स्टार्ट कर देती है। तो डी स्किन ब्यूटी क्रीम को इस्तेमाल करने वाले लोग भाई रेडी हो जाइए, डी स्किन ब्यूटी क्रीम आपकी खूबसूरती को नेक्स्ट लेवल पर ले जाएगी। और डी स्किन ब्यूटी क्रीम आपकी स्किन को ग्लोइंग बना देती है। और डी स्किन ब्यूटी क्रीम जब आप परचेज करें तो आप जरा इन चीजों से भी बचें कि दुकानदार आपको कोई और प्रोडक्ट पकड़ा दे। कहते कुछ मासूम लोग होते ना, पढ़े लिखे नहीं होते, जिनको नहीं होता पता, बस वो चाहते हैं दुकानदार उनको जो भी बोलता है तो बस वो यकीन कर लेते हैं। तो जब आप डी स्किन ब्यूटी क्रीम परचेज करें ना, तो ये चीज आपको पता होनी चाहिए कि डी स्किन ब्यूटी क्रीम के डब्बे के ऊपर एक डॉक्टर औरत का फोटो है, ठीक है, डॉक्टर माई जो फोटो आए। और जब तुम ॾिसो त बाबा डी स्किन ब्यूटी क्रीम आयो उनजे मथां हिकड़ी माई जो फोटो आहे जेका डॉक्टर आहे, त पोइ तव्हां समझी वञो ओ ही आहे त उहो क्रीम जेका सिद्रा ॿुधाईंदी आहे। बिल्कुल ॾिसो, इहा निशानी तव्हां यादि रखी छॾियो, जॾहिं डी स्किन ब्यूटी क्रीम वठो त माई डॉक्टर जेका आहे हुन जो फोटो ॾिसी करे वठिजो, ठीकु आहे। ऐं ॾाढी सफ़ा प्रीमियम क्वालिटी जी प्रोडक्ट आहे, पाकिस्तान में, पाकिस्तान खां ॿाहिरि जे मुल्कनि में बि तव्हांखे मिले थी, तमामु ज़बरदस्त प्रोडक्ट आहे। ऐं सॼे पूरे पाकिस्तान में सिर्फ़ 2 या 3 अहिड़ा प्रोडक्ट आहिनि जंहिंजे अंदरि वाइटमिन बीट्स आहिनि, माइक्रो बीट्स फार्मुलेशन आहे, ऐं डी स्किन ब्यूटी क्रीम बि उन्हनि मां हिकु आहे। सो तव्हां ख़ुशि नसीब आहे, तव्हां वटि डी स्किन ब्यूटी क्रीम पहुती आहे। सो डी स्किन ब्यूटी क्रीम जो फ़ाइदो वठो बाबा, डी स्किन ब्यूटी क्रीम इस्तेमाल कयो ऐं सुहिणा सुहिणा थी वञो। अच्छा, तव्हां नंबर ते राबितो नथा कयो छो भला? नंबर से रातो कयो ऐं पंहिंजे करीबी जनरल स्टोर से अवेलेबल करायो। अच्छा, हुन खां अलावा हिकड़ी अदी मूंखे चयो न त मातली में कोन थी मिले डी स्किन ब्यूटी क्रीम, त अदा हुनखे ॾिसींदा मां त तव्हां फानी ऐं माती खान जनरल स्टोर आहे जंहिं ते तव्हां वञी करे डी स्किन ब्यूटी क्रीम वठी सघो था। फानी जनरल स्टोर ऐं माती खान जनरल स्टोर ते तव्हांजे लाइ डी स्किन ब्यूटी क्रीम अवेलेबल थियल आहे, मातली वारा वञी उतां वठी सघंदा, ठीकु आहे। सो बाक़ी ॿिया बि कुझु जनरल स्टोर हूंदा जेके आराम आराम सां मूंखे ॿुधाईंदा वेंदा त तव्हांखे ॿुधाईंदा वेंदासीं। सो इहे उहे जनरल स्टोर आहिनि जितां तव्हां वञी आराम सां डी स्किन ब्यूटी क्रीम वठी सघो था। बाक़ी नंबर ॿुधाईंदी हलां जेको तव्हां डायल करे पंहिंजे करीबी जनरल स्टोर ते अवेलेबल कराईंदा, त उहे नंबर आहे सभ खां पहिरियां जेको हिकिड़ो नंबर आहे उहो आहे 03-1250-2597-0312-50-2970 ऐं ॿियो नंबर आहे 03-273-38-4309 ॿुड़ी 333-84-309। बिल्कुल सही नंबर आहे, हिन नंबर ते तव्हां कॉल बि करे सघो था, मैसेज बि करे सघो था ऐं भाई साहब खे ॿुधायो भाई साहब असां वटि कोन थी मिलेव डी स्किन ब्यूटी क्रीम, अवेलेबल कराए वञो, असां बि हणूं, असां बि सुहिणा थियूं।

ओके जी, हम लास्ट लिंग में आ चुके हैं प्रोग्राम की, तो सब लोगों को वेलकम इन खुश आमदीद. फहीम भाई कहते हैं कि भाऊ डॉक्टर जो नालो छाए, डॉक्टर माई जो नालो डॉक्टर आए, पराइन माई जो नाला न पसंद. बस तव्हांखे निशानी ॿुधाई न, निशानी ते तव्हां गौर कजो. सही आहे जी, उन्हनि माण्हुनि खे जंहिंखे थोरो बेवकूफ़ बणाईंदा आहिनि दुकानदार, उहे थोरो उन्हनि खां होशियार आहिनि. सही आहे. और यहां पर जी

अच्छा ये हमारे साथ हैं जयपाल भाई, लिखते हैं कि जरूरी नहीं कि ताल्लुक मोहब्बत का ही हो, दोस्ती के रिश्ते भी इश्क से ऊंचा मकाम रखते हैं। और लिखते हैं भाऊ जी, जनाब खुशी जी की तरफ से भी सलाम पूछ रही थी आपका, दीदी का शो ज्वाइन करते हो? मैंने कहा कभी कभी ज्वाइन करता हूँ। अच्छा खुशी का बताओ कैसी है? ठीक ठाक है, मजे में है। और ये हमारे साथ किसी ने मैसेज किया है, सिर्फ लिखा है हाय कैसी हो। जी हाय, मैं ठीक हूँ, आप बताएं कौन है और कैसे हैं। और ये हमारे साथ हैं जी ज्वेलरी का खालिक लाशाही शो नाइसा सॉन्ग फरजाना परवीन जो बुधायो। फरजाना परवीन तांके बिल्कुल बुधराइंदा सी भाजू मोहब्बतवान पिराई बुधायो तांटी स्किन ब्यूटी क्रीम इस्तेमाल कई या कौन। अच्छा मोहम्मद जमान भाई लिखते हैं कि ट्रॉपिक फ्यूचर में जाऊंगा तो सबसे पहले कुछ देखना है, लेकिन मैं ये देखूंगा कि वो जो फेस पर डी स्किन ब्यूटी क्रीम लगाती है तो रिजल्ट चेक करूंगा जाकर। इतना फ्यूचर में जाएंगे बस ये देखने जाएंगे। ये तो आप वैसे अभी चुटकियों में देख सकते हैं, आप इस्तेमाल कीजिए डी स्किन ब्यूटी क्रीम, आपको पता चल जाएगा कि डी स्किन ब्यूटी क्रीम का कितना अच्छा रिजल्ट है। जयपाल भाई कहते हैं कि वैसे भाव ट्राई करूंगा मगर पहले खुशी जी को यूज करवाऊंगा। ओके ओके जी ओके, भाभी को पहले यूज करवाइए फिर आप यूज कीजिए, ठीक है? और कुछ नहीं होगा, भाभी बोलेगी कि वाह फर्स्ट टाइम जयपाल ने इतनी अच्छी प्रोडक्ट की फरमाइश करी है। अच्छा दिवेक भाई भी हमारे साथ है, कहते हैं हेलो सिस्टर, मैं भी आपका शो सुन रहा हूँ, छोटी सी रिक्वेस्ट आपके लिए, मास्टर मंजूर का कोई भी सॉन्ग प्ले करें। भाई रिक्वेस्ट जब होना तो थोड़ा पहले आते हैं प्रोग्राम में, आप जानते हैं कि लास्ट लिंक जो होता है ना वो ऑलरेडी पहले से लोग फरमाइश कर देते हैं तो उनके गाने लग चुके होते हैं, तो ये जो आप गाने की फरमाइश करें ना ये आपको 5 बजे वाले प्रोग्राम में सुनाऊंगी, ठीक है? और बहुत शुक्रिया प्यारे भाई आप हमारे साथ है। ये हमारे साथ है सिद्रा जी, गुजरे पल वापस मिल जाए तो क्या ही बात है। मोरी से राजा हमीरचंद, किशोर कुमार, हीरा भाई, सुरेश अकबर और कुंभर नवाब। अच्छा सुरेश अलग है और अकबर कुंभर अलग है और नवाब ड्राइवर है। और जी हमेरा चना का गाना सुनना चाहते हैं, चले मैं कोशिश करूंगी, आपकी फरमाइश चल गई तो चला लेंगे। और फ्रॉम प्यार अली जरवार भाई हमारे साथ ही, वालेकुम अस्सलाम, माशाल्लाह बाजी आप कैसी हैं? हमेशा हंसी मुस्कुराती रहे बाजी, पर बस चाह के मारे कोई इतने छो आता कोई इतने छो हर के पांजो हिकड़ो आज कौन है तो रीजन आए। सो थैंक यू, तव्हांजो मोहबतूं आहिनि तव्हां हिन क़ाबिल समझो पिया ऐं यकीन ॼाणो त इलाही तकलीफ़ थींदी आहे जॾहिं बिला वजा तव्हांखे माण्हू तंग कंदा आहिनि। सो ख़ैर हिननि ॻाल्हियुनि खे त ॾिठो वेंदो, बरहाल तव्हां मूंखे ॿुधायो डी स्किन ब्यूटी क्रीम कॾहिं था इस्तेमाल कयो। और जी ये खालिद भाई हमारे साथ हैं जो हमें मातली से सुन रहे हैं, तो मातली में बिल्कुल आपको बता दिया कि आप कहां से जाकर डी स्किन ब्यूटी क्रीम परचेज कर सकते हैं, तो जल्दी जल्दी से आप मातली में जाइए पानी जनरल स्टोर के ऊपर या फिर माती जनरल स्टोर ऊपर, वहां पर आपको डी स्किन ब्यूटी क्रीम आराम से मिल जाएगी। अच्छा ये हमारे साथ है गुलजार हुसैन। ओके जी गुलजार भाई आपको वेलकम कहते हैं, बहुत शुक्रिया के साथ। भाई मैं भी आपको यही कहती हूँ, अपने एरिया में ही विजिट किया करें, बताएं जरा, बताएं नहीं बल्कि पूछे लोगों से कि कहाँ कहाँ पर डी स्किन ब्यूटी क्रीम अवेलेबल होनी चाहिए, ताकि अगर आप जाएं अपने दरवाजे से निकलें जो भी करीबी जनरल स्टोर है वहाँ पर आपके डी स्किन ब्यूटी क्रीम मिल जाए। अच्छा फरवा तव्हां गाने जी फरमाइश कई आहे, मां ॾिसां थी हली वियो त हलाईंदो न त 5 बजे वारे प्रोग्राम में ॿुधी वठंदासीं। अच्छा पहलवान चांडियो भाउ तव्हां बि गाने जी फरमाइश कई आहे ऐं तव्हांखे प्रोग्राम पसंदि अची पियो, सो थैंक यू सो मच। रमज़ान भाभी असांखे जॉइन करे चुको आहे, रमज़ान भाउ तव्हांजो बि मोहबतूं आहिनि, तव्हां प्रोग्राम ॿुधो पिया। अच्छा फजीला कहती है कि टॉपिक में देखना चाहूंगी कि हमारी आरजे सिद्रा मुस्कान एफएम पर है या हमेशा के लिए छोड़कर चली गई है रेडियो, क्योंकि आपकी वजह से तो सुनते हैं। यदि वैसे मैं चाहती हूँ कि मेरे बच्चे भी आपका शो सुने, आरजे खाला सिद्रा मुस्कान का शो सुने। अच्छा चलिए जी इंशाल्लाह वो भी सुनेंगे, बहुत शुक्रिया आप हमारे साथ है और डी स्किन ब्यूटी क्रीम लगाती रही है।

जी ओके बिल्कुल, मैं भी यही सोच रही थी कि ये प्रोग्राम शाम के प्रोग्राम, ये गाना जो है वो शाम के प्रोग्राम में अगर फरमाश होता तो क्या ही हो जाता, लेकिन जयपाल भाई इसी प्रोग्राम में आते बोलेंगे मेरी मर्जी। ओके जी, सो डी स्किन ब्यूटी क्रीम इस्तेमाल कीजिए, इसमें आपकी मर्जी बिल्कुल भी नहीं चलेगी, क्योंकि मैं हमेशा चाहती हूँ कि भाई आपकी खूबसूरती जो है वो निखरती रहे, आपकी अगर खूबसूरती निखरेगी तो हमें बड़ा अच्छा लगेगा। अगर आप भी ये चाहते हैं कि भाई चेहरे की वजह से थोड़ा परेशान है, स्किन सेंसिटिव है, कॉम्बिनेशन टाइप है, हर तरह से आपको ये लगता है कि भाई हमारी स्किन के मुताबिक तो कोई प्रोडक्ट तैयार ही नहीं हुआ अभी तक, क्योंकि जो भी प्रोडक्ट आप लगा चुके हैं आपको वैसा रिजल्ट नहीं मिला जैसा आप चाहते हैं, तो एक मरतबा डी स्किन ब्यूटी क्रीम लगाकर देखिए, क्योंकि वैसे ही जब आप दो रातें इस्तेमाल करेंगे तो आपको अच्छा खासा रिजल्ट मिल जाएगा। और डी स्किन ब्यूटी क्रीम की ये भी बात है कि ये मेडिकेटेड फार्मूला है, और जो स्किन के डॉक्टर्स होते हैं ना, बिल्कुल उन सब डॉक्टर्स ने मिलकर डी स्किन ब्यूटी क्रीम को तैयार किया है। और एक मजे की बात है कि इसके अंदर विटामिन ई बीट्स है और माइक्रो बीट्स फार्मुलेशन है। और जब आप डी स्किन ब्यूटी क्रीम लगाएंगे तो आपकी नाइट क्रीम भी हो जाएगी, और आपको मिलेगा ऐसा निखार जो कि खवातीन बहुत महंगे महंगे फेशियल कराकर हासिल करती है, आपको मिल जाएगा जी थोड़े थोड़े टाइम में और थोड़े थोड़े पैसों में। तो डी स्किन ब्यूटी क्रीम का इस्तेमाल करते रहिए, खूबसूरतियाँ हासिल करते रहिए, और अपने करीबी जनरल स्टोर्स पर अवेलेबल कराते रहिए। बिल्कुल जी, शाम जो दिलकश नज़ारो तू वही माँ, समुंड जो छोलियो किनारो तू वही माँ, हिते बियो गानो बुधनासी बस अलाए के जो ही गानो हुंदो तां कने कने मुके चढ़ियो करे छड़ींदा आयो, एडियो गाने जो फरमाइशो कबियो आइन नक्यो बाबा नक्यो, न त कने जन चढ़ियो न मुके केंजी फरमाइश कोने लाईंदी मां मैं। आई बाकी जी ना रहजन था मुके शाम वाले प्रोग्राम में फरमाइश कजो, बिल्कुल ताजा गाना हलाईंदासीं। और एडवोकेट कामरान शाह साकी हमारे साथी जी, वालेकुम अस्सलाम, खुशामदीद कहते हैं भाईजान को।

अच्छा चाचा बिल्कुल सिंधी में नंबर ॿुधाईंदी आहे उन्हनि माण्हुनि जे लाइ जेके सिंधी नंबर जेको आहे न सवलो लॻंदो आहे. अच्छा सफ़दर अब्बास में सुन रहे हैं. अच्छा सफ़दर अब्बास कहते हैं सलाम जी, वालेकुम अस्सलाम, सुपर हिट मैसेज करूं आपको, बहुत अच्छे प्रोग्राम कर रही हैं आप. ओके बहुत शुक्रिया, थैंक यू. अच्छा हिदायतुल्लाह कहते हैं वैसे ये डॉक्टर तो अपनी है, तव्हां सुञाणियो था छा शेरा.

अच्छा बिलाल लिखते हैं कि यूं मिलते हैं जैसे ना कोई जान ना पहचान, दानिस्ता नसीर आज वो अनजान बहुत है। आए हाय। अच्छा कामरान खान सार की बात हमारे मोहब्बत वन प्रोग्राम बुधुपया फरवा, थैंक यू सो मच तुम भी इससे गड मौजूद आए। नहीं चाचा, इतनी सारी प्रोग्राम्स कर लिए ना तो अच्छी खासी स्किन के बारे में नॉलेज हो चुकी है पहले से ही। बिल्कुल जी, पोस्ट को जरा लाइक और शेयर करते रहिएगा, इससे ये होता है कि बहुत सारे लोगों तक हमारे ये पैगाम पहुंचता है और डी स्किन ब्यूटी क्रीम के बारे में बहुत सारे लोग जान जाते हैं। और एडवोकेट कामरान खान भाई लिखते हैं कि आजकल मैं आपका प्रोग्राम बहुत दिल से सुन रहा हूँ, बहुत अच्छा प्रोग्राम है आपका, टाइमिंग रिपीट करें। मेरी प्रोग्राम की टाइमिंग है जी 1 बजे से लेकर 3 बजे तक और मैं दूसरा प्रोग्राम करती हूँ 5 बजे से लेकर 6 बजे तक। जवार मोहम्मद बचल शंबानी भाई आपको भी वेलकम कहा जाता है। किशोर भाई कहते कितनी हसरत है हमें तेरे शो में कमेंट करने की। बस कहते हैं कि सही है, कुछ नहीं कहते।

भाई ये गाने चलाकर हम उन गानों की जो ना वाइब ले रहे होते अच्छा शुएब मंगी भाई वालेकुम अस्सलाम, आपको वेलकम कहा जाता है। इसी के साथ आप लोगों से लेते हैं जी इजाजत, वरी तासा मुलाकात मुझे थे पई पंज बजे वाले प्रोग्राम में। सो पांजो ओ हिनो सारो ख्याल रखंदा आई बिल्कुल डी स्किन ब्यूटी क्रीम के इस्तेमाल कर जो बाबा डी स्किन ब्यूटी क्रीम डाडी भली क्रीम अव मजाक न थवला तवा इस्तेमाल कर दिजो तवा के डाडा भला रिजल्ट मिलंदा। डी स्किन ब्यूटी क्रीम जेका मेडिकेटेड क्रीम आए ट्राई करे दिजो ऐं पंहिंजो इलाही सारो ख़्याल रखो। किथे का ग़लती थी हुजे त माज़रत कयूं था, जंहिंजो फीडबैक रहिजी वियो आहे, गानो शानो रहिजी वियो त माज़रत कयूं था। सो मोकिलाणी नाहे बाबू सिन सलामत सा सलामत अलाह हाफ़िज़ बाय बाय लव यू ऑल।

के सत शर्त पेश करे छड़िया। रूसी मीडिया जो चवण आए तो ईरान टियाकरी कंदड़ मुल्कन जरिए अमेरिका के शर्त पेश कया आन। तहरान सूमर ते मस्कत में इजलास की मेजबानी कंदो, अरब मुल्कन के भी दावत डिनी वही है। नार जे मुल्कन के दावत, नवन रस्तन की तफसील ट्रांसिस इंतजाम का आगाही लाए। ईरानी मीडिया मूजिब अमेरिका पारा दखण वारो रस्तो खोलण लाए जोर भरण बावजूद यो रस्तो बंद कयो वेंदो। ईरान जे कशम बेट ते व्यापारी जहाज ते हमलो, हमले में एक जणो मारजी वयो, टे जणा जख्मी। ईरानी सदर मसूद पज़ेशान चयो आए त खिते जे सभिनी मुल्कन के गजी अमन अमान कायम करण घुर्जे। अमेरिका में हिम्मत आए त ईरानी फौज के मोड़े असा के दबा ए धमकिन सा झुकाए नथो सकजे। अमेरिका जारियत बंद करे त आबने अरुस खुली वेंदो। आबने अरुस बाबत सूमर ते अमान सा मुआदे ते सयूं थी वयूं। हुसैन जा सऊदी अरब ते हमला जारी, वधीक बजणा जख्मी। मस्जिद इमारतन ए गाडियन के नुकसान पहुतो। सऊदी अरब जे शहर जाजान में यमनी हुसैन जे मिसाइल हमले में बजणा जख्मी थी पिया। सऊदी अरब जे सिविल डिफेंस जे तर्जमान जो चवण आए ते शहरी अंदन के निशानो बणायण आलमी कानून जी भंकड़ी आए। लंडन में साउथ एशियन फेस्टिवल पारा तकरीब मुनक़द। नवन सूबन जी मुखालफत, जिलन के इख्तियार देने की घुर। तकरीब में मजहर अब्बास, इफ्तकार आलम, नसीर मेमण, जामी चांडियो, खालिद खोखर, मोहम्मद खान अबड़ो ए बिया। संदन चवण आए तो मुल्क में सूबन के ट्रोण जो गालियों कंदड़ फेड़ पकड़े रहा है। सूबन के ट्रोण से पाकिस्तान तरक्की तो न कंदो पर उबतो मुल्क जो वजूद खतरे में पेजी वेंदो। सूबन के ट्रोण वारन गालियों करण बदरा जिली सतह से इख्तियार दिना वजन। धाबे की पंपिंग स्टेशन से बिजली जो ब्रेक डाउन, कराची के पानी फरामी मुतासिर। बिजली बंद थियण सबब मलीर, लांडी, कोरंगी, डिफेंस, क्लिफ्टन समेत बेन इलाकन के फरामी बंद। पानी की फरामी बंद थियण करे मुख्तलिफ इलाकन में पानी जो बोहरान पैदा थी वो। शहरी तकलीफों जो शिकार वाटर बोर्ड इंतजामिया जो चवण आए त के इलेक्ट्रिक सिस्टम में केबल फॉल्ट सबब सुबह 6 वगे बिजली जो ब्रेक डाउन थियो। बिजली बंद थियण सबब धाबे की पंपिंग स्टेशन जहा 21 मार 10 पंप बंद थी वया। जमायत इस्लामी जा पेट्रोलियम लेवी खिलाफ 36 शहर में धरना जारी। जमायत इस्लामी के अमीर हाफिज नईम है तो इन मुल्क में एक अशराफिया ग्रुप है जो मानून के लुटे रो है। 20 सेप्टेम्बर से सजी इस्लामाबाद में मानू ईदा आवाम पेट्रोलियम लेवी के भत्ताखोरी टैक्स करार दई छो है। धरणन में मानन जो तादाद हर गुजरंदड़ डी सा वधी रो है। पेट्रोलियम लेवी जो पेट्रोल की कीमत से को भी ताल्लुक ना। काजी अहमद में वधंदड़ बदअमनी ए मंशा के आज़ार खिलाफ शहरन की रैली। कौमपरस पार्टियन, सियासी समाजी तंजीमन ए सिविल सोसाइटी पारा रैली कढ़ी थाने आडो एहतजाज कयो वयो। अगवाणन चयो त काजी अहमद में अमन अमान की सूरत आलन ताई खराब है। मंशा जो विक्रो सरेआम जारी है। आई जी सिंध नोटिस वठी मंशा जो विक्रो बंद कराए।

0: आप सुन रहे थे GAFM नेटवर्क पर KTN न्यूज।
1: हर नजर आपकी खूबसूरती पर ठहर जाए और ये है मेरी खूबसूरती का राज, मिल्क राइज ब्यूटी क्रीम। सिर्फ 3 दिन में जिल्द को निखारे और रंगत को रोशन करे, दाग धब्बे, झुर्रियां और कील माह से फौरन कम करे। इस्तेमाल का आसान तरीका, रात को मिल्क राइज ब्यूटी सोप से चेहरा धोएं, फिर मिल्क राइज ब्यूटी क्रीम चेहरे और गर्दन पर लगाएं, नताइज देखें सिर्फ 3 दिन में। एक्नी के लिए मिल्क राइज एक्नी क्रीम इस्तेमाल करें। दस्तियाब प्रोडक्ट्स मिल्क राइज ब्यूटी क्रीम, मिल्क राइज ब्यूटी सोप, मिल्क राइज एक्नी क्रीम। हर अच्छे कॉस्मेटिक जनरल स्टोर से नाम लेकर खरीदें। मजीद मालूमात के लिए मलिक जफर इकबाल एंड एम सिद्दीक, शाही बाजार मेहरापुर, 03000 310 5109, 03000 310 5109।
2: इरशाद ऑटोस आई होंडा शोरूम मेहरापुर, होंडा मोटरसाइकिल जो पुर एतमाद आई बा अख्तियार इदारो, इरशाद ऑटोस आई होंडा शोरूम मेहरापुर, नईन मोटरसाइकिल जी सेल कंपनी जे मुकरर कर रेट ते दस्तयाब आहे। सर्विस सेंटर एटलस होंडा लिमिटेड जो वारंटी क्लेम सेंटर सर्विस एरिया, जिते होंडा मोटरसाइकिल जी बेहतरीन सर्विस कई वेंदी आहे। होंडा कंपनी जा तमाम जेन्युइन स्पेयर पार्ट्स खुसूसी रियायत ते मौजूद। इरशाद ऑटोस ते पंहिंजी होंडा मोटरसाइकिल जी करायो ट्रेनिंग कंप्यूटराइज जैपनीज टेस्टिंग मशीन जरिए, जिनमें मिले थी मोटरसाइकिल जी कारकर्दगी तमाम बेहतर। फ्यूल एडजस्टमेंट, RPM जी एडजस्टमेंट कंप्यूटराइज जापानी मशीन जरिए कई वनी थी। होंडा जे क्वालिफाइड टेक्नीशियन जी जेर निगरानी। इरशाद ऑटोस हालानी रोड मेहरापुर, राब्ते जे लाए 03201800003।
3: खुश खबरी, अपनी जिल्द को दे नई ताजगी, चमक और खूबसूरती हाइड्रा फेशियल के साथ। अब फिकर छोड़िए, आपके शहर मेहरापुर में रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक लेकर आया है गहरी सफाई और फोरी ग्लो। जिल्द को नरम और हाइड्रेट करे, सन डैमेज और रंगत बेहतर बनाने में मददगार। फेशियल रेजुविनेशन, साफ तरोताजगी और जवान नजर आने वाली जिल्द जदीद टेक्नोलॉजी के साथ महफूज और मौसर स्किन केयर। नोट, खवातीन स्टाफ की निगरानी में की जाती है। आज ही अपनी अपॉइंटमेंट करवाएं। पता, रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक, नजद रेलवे फाटक, अक्सा मस्जिद, थरी रोड मेहरापुर, 03000338569।

0: कॉलम में मौजूद आहिन। फौजी बहरन लाइ ख़ुसूसी रियायत हूंदी। राबते लाइ फौजी अब्दुल करीम 0301-54-4456 ऐं तौकीर अहमद 0306-1623-793।
1: अस्सलाम वालेकुम अदा।
2: वालेकुम अस्सलाम अदा, छो परेशान आई?
1: अदा नओ दुकान खोलियो तम पर हले ही न तो, छा कजे?
2: अदा दुकान जी मशवरी कराई थई
1: न अदा?
0: यार आज कल शहरन तोड़े गोछन में जी मेरा पर FM 94 ही हले थो। मु पंजो दुकान खोलियो तो FM मेरा पर ते पब्लिसिटी कराई। कारोबार एड़ो कामयाब हो जो एड बंद कराण ते दिल्ली न थी चवे।
1: मुझे दुकान जी बेड हलंदी?
2: हां दा, कारोबारी इश्तिहारात, आम इतला, मिलाद, मजलिस, सालगिरह जी मुबारक, मतलब हर किस्म जी एडवर्टाइजिंग हलंदी।
1: अदा जल्दी कर, मुखे बुंजी एड्रेस तो बुदा।
0: ऑफिस जी मेरापुर FM 94 नज गर्ल्स डिग्री कॉलेज हालानी रोड मेरापुर।
2: राबते लाए हाकिम अली जिस्कानी
3: 0301-399-2836
0: आई मोहम्मद उमेर गोरी 0319-1556-724।
4: अपना शहर अपना घर मेहराबपुर, और मेहराबपुर की आवाज जी FM 94।

0: खुशखबरी, लेजर हेयर रिमूवल गैर जरूरी बालों को खत्म करने का जदीद हल। अब फिक्र छोड़िए, आपके शहर मेहरापुर में गिम्स अस्पताल गंबर्ट जिल्द के मशहूर डॉक्टर बशीर अहमद मेमन लेकर आए हैं चेहरे, बाजू, टांगे और पूरे जिस्म के गैर जरूरी बालों को खत्म करने के लिए महफूज और मौसर ट्रीटमेंट। बार बार वेक्स और शेविंग से निजात, नरम, साफ और खूबसूरत जिल्द, कम वक्त बेहतरीन नतायज। अब गैर जरूरी बालों की फिक्र खत्म लेजर हेयर रिमूवल के साथ। आज ही राब्ता करें रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक, नज़्द रेलवे फाटक अक्सा मस्जिद, थरी रोड मेहरापुर, 03003385569।
1: मेहरापुर के हो तो आवाज भी मेहरापुर की है। सुनते रहो जी FM 94।

0: खुशखबरी, जर्मन होम्योपैथिक क्लिनिक साम्हूं वधण बोटा पेट्रोल पंप कोटड़ी कबीर रोड मेरा पर कराची ऐं इस्लामाबाद जो मशहूर डॉक्टर मंजूर हुसैन मेमण एम ए डी एच एम एस सिंध आर एच एम पी इस्लामाबाद होम्योपैथिक कंसल्टेंट ऐं फैमिली फिजिशियन सीनियर लेक्चरर नवाबशाह होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज नवाबशाह हर अरबा खमीस जुमे छंछर आचर ऐं सूमर ते सुबुह 10 खां शाम 5 वॻे ताईं मरीज़न जो इलाज कंदा आहिनि। हर जुमे छंछर ऐं आचर ते बग़ैर फीस जे चेकअप कयो वेंदो। याद रखंदा, मरीजन खे दवा स्टोर तां वठणी पवंदी। माहिरे अमराज नक कन गलो पुराणो नज़लो निछो मथे जो सूर नज़र जी कमज़ोरी कन जो वहण कन जो सूर घटि ॿुधण में अचण शुगर ब्लड प्रेशर दिल जा मर्ज़ फालिज खंघ टीबी मादे जी अल्सर मादे जी जलन दिली जो वधण जिगर जा मर्ज़ हेपाटाइटिस बी सी गुर्दे जी पथरी मसाने जी पथरी जो बग़ैर ऑपरेशन जे कामयाब इलाज कयो वञे थो। गुर्दन जो इन्फेक्शन चेहरे जो रंग सांवरो चेहरे जी ख़ारिश फट फुरियूं ॿारनि में कद जो न वधण मर्दन ऐं औरतुनि में वज़न जो न वधण उन्हनि सभिनी बीमारियुनि जो कामयाब इलाज कयो वञे थो। राब्ते लाइ 0301-2196-8051।
1: अब आपकी खूबसूरती का फैन वाइट एज ब्यूटी क्रीम।

0: तो मेरा फैन।
1: वाइट एच ब्यूटी क्रीम 5 डे ब्यूटी प्लान के साथ एलोवेरा विटामिन और एवोकाडो की भरपूर खूबियाँ, जिसके मिनरल्स स्किन में फॉली एब्जॉर्ब हो जाए, स्किन को फेयर और फ्रेश बनाए, आपको दे बेटा निखरा निखरा चेहरा। वाइट एच ब्यूटी सोप से मिले चमकता निखार ताजगी के साथ। वाइट एच ब्यूटी क्रीम, ग्लोइंग स्किन का राज, अ प्रोडक्ट ऑफ बायोकॉन इंटरनेशनल पाकिस्तान।
2: खुशखबरी, क्या आप बालों के झड़ने से परेशान हैं? अब फिक्र छोड़िए, शहर मेहरापुर में रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक लेकर आया है बालों की जदीद और मौसर इलाज, एक्सोसोम्स एंड पीआरपी ट्रीटमेंट के साथ बालों का झड़ना कम करने में मददगार, कमजोर जड़ों को मजबूत बनाए, नए बालों की निशोनुमा में मदद दे, बालों को घना और सेहतमंद बनाए। घने मजबूत और खूबसूरत बालों के लिए आज ही राबता करें रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक, नज़्द रेलवे फाटक अक्सा मस्जिद, थरी रोड मेहरापुर, 03003385 69।

0: हर नजर आपकी खूबसूरती पर ठहर जाए और ये है मेरी खूबसूरती का राज, मिल्क राइज ब्यूटी क्रीम। सिर्फ 3 दिन में जिल्द को निखारे और रंगत को रोशन करे, दाग धब्बे, झुर्रियां और कील मुहासे फौरन कम करे। इस्तेमाल का आसान तरीका, रात को मिल्क राइज ब्यूटी सोप से चेहरा धोएं, फिर मिल्क राइज ब्यूटी क्रीम चेहरे और गर्दन पर लगाएं, नताइश देखें सिर्फ 3 दिन में। एक्नी के लिए मिल्क राइज एक्नी क्रीम इस्तेमाल करें। दस्तियाब प्रोडक्ट्स, मिल्क राइज ब्यूटी क्रीम, मिल्क राइज ब्यूटी सोप, मिल्क राइज एक्नी क्रीम। हर अच्छे कॉस्मेटिक जर्नल स्टोर से नाम लेकर खरीदें। मजीद मालूमात के लिए मलिक जफर इकबाल एंड एम सिद्दीक, शाही बाजार मेहरापुर, 03000 3105109, 03000 3105109।
1: इरशाद ऑटोस आई होंडा शोरूम मेहरापुर, होंडा मोटरसाइकिल जो पुर एतमाद आई बा अख्तियार इदारो, इरशाद ऑटोस आई होंडा शोरूम मेहरापुर, नईन मोटरसाइकिल जी सेल कंपनी जे मुकरर कर रेट ते दस्तयाब आहे। सर्विस सेंटर एटलस होंडा लिमिटेड जो वारंटी क्लेम सेंटर सर्विस एरिया, जिते होंडा मोटरसाइकिल जी बेहतरीन सर्विस कई वेंदी आहे। होंडा कंपनी जा तमाम जेन्युइन स्पेयर पार्ट्स खुसूसी रियायत ते मौजूद। इरशाद ऑटोस ते पंहिंजी होंडा मोटरसाइकिल जी करायो ट्रेनिंग कंप्यूटराइज जैपनीज टेस्टिंग मशीन जरिए, जिनमें मिले थी मोटरसाइकिल जी कारकर्दगी तमाम बेहतर। फ्यूल एडजस्टमेंट, RPMG एडजस्टमेंट कंप्यूटराइज जापानी मशीन जरिए कई वनी थी। होंडा जे क्वालिफाइड टेक्नीशियन जी जेर निगरानी। इरशाद ऑटोस हालानी रोड मेहरापुर, राब्ते जे लाए 03201800003।
2: खुशखबरी, अपनी जिल्द को दे नई ताजगी, चमक और खूबसूरती हाइड्रा फेशियल के साथ। अब फिकर छोड़िए, आपके शहर मेहरापुर में रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक लेकर आया है। गहरी सफाई और फोरी ग्लो जिल्द को नरम और हाइड्रेट करे, सन डैमेज और रंगत बेहतर बनाने में मददगार। फेशियल रेजुविनेशन, साफ तरोताजगी और जवान नजर आने वाली जिल्द जदीद टेक्नोलॉजी के साथ महफूज और मौसर स्किन केयर। नोट, खवातीन स्टाफ की निगरानी में की जाती है। आज ही अपनी अपॉइंटमेंट बुक करवाएं। पता, रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक, नजद रेलवे फाटक, अक्सा मस्जिद, थरी रोड मेहरापुर, 03005569।
3: अस्सलाम वालेकुम अदा।
4: वालेकुम अस्सलाम अदा, छो परेशान आई?
3: अदा नओ दुकान खोलियो तम पर हले ही न तो, छा कजे?
4: अदा दुकान जी मशहूरी कराई थई
3: न अदा?
5: यार आज कल शहरन तोड़े गोठन में जी मेरा पर FM 94 ही हले थो। मु पंजो दुकान खोलियो तो FM मेरा पर ते पब्लिसिटी कराई। कारोबार एड़ो कामयाब हो जो एड बंद कराण ते दिल्ली न थी चवे।
3: मुझे दुकान जी बेड हलंदी?
4: हां दा, कारोबारी इश्तिहारात, आम इतला, मिलाद, मजलिस, सालगिरह जी मुबारक, मतलब हर किस्म जी एडवर्टाइजिंग हलंदी आए।
3: अदा जल्दी कर, मुखे बुंजी एड्रेस तो बुदा।
5: ऑफिस जी मेरापुर FM 94, नज़ गर्ल्स डिग्री कॉलेज, हालानी रोड मेरापुर।
4: राबते लाए हाकिम अली जिसकानी,
6: 03013992836।
7: अपना शहर अपना घर मेहरापुर, और मेहरापुर की आवाज GA FM 94।

0: खुशखबरी, लेजर हेयर रिमूवल गैर जरूरी बालों को खत्म करने का जदीद हल। अब फिक्र छोड़िए, आपके शहर मेहरापुर में गिम्स अस्पताल गंबर्ट जिल्द के मशहूर डॉक्टर बशीर अहमद मेमन लेकर आए हैं चेहरे, बाजू, टांगे और पूरे जिस्म के गैर जरूरी बालों को खत्म करने के लिए महफूज और मौसर ट्रीटमेंट। बार बार वेक्स और शेविंग से निजात, नरम, साफ और खूबसूरत जिल्द, कम वक्त बेहतरीन नतायज। अब गैर जरूरी बालों की फिक्र खत्म लेजर हेयर रिमूवल के साथ। आज ही राब्ता करें रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक, नज़्द रेलवे फाटक अक्सा मस्जिद, थरी रोड मेहरापुर, 03003385569।
1: मेहरापुर के हो तो आवाज भी मेहरापुर की है। सुनते रहो जी FM 94।

0: सोनी अज त ॾाढी ख़ुशि थी लॻे।
1: हा साईं, ॻाल्हि बि अहिड़ी आहे।
0: भला मूंखे बि ॿुधाए कहिड़ी ॻाल्हि आहे।
1: चाचे, जुम्मन जी खु़शहाली जो राज़ ख़बर पियो आहे।
0: छा छा?
1: उहे पंहिंजे ढोरनि खे जी जान सखर चारो मसालो पिया खाराइनि। हीअ चारो ढोरनि जो हाज़मो दुरुस्त करे थो, ढोर सिहतमंद थियनि था, गोश्त सां गॾो गॾु खीर बि वधे थो।
0: वाह सोनी, वाह वाह जी ॻाल्हि ॿुधाई। पर किथे मिलंदो इहो जी जान सखर चारो मसालो?
1: साईं, रेडीअ ते था ॿुधाइनि, ॿुध ऐं अची वठी अच।
0: मां हाणे ई थो वञा त जीअं असीं बि खीर वधायूं ऐं नोट कमायूं।
1: हा साईं, हा।
2: जी जान चारो मसालो हर वेझे पंसार स्टोर ऐं जानवरनि जे डॉक्टर खां नालो वठी ख़रीद करियो।
3: खूबसूरती का असल राज सिर्फ डी स्किन ब्यूटी क्रीम। इसमें मौजूद विटामिन ई बीड्स और जदीद माइक्रो बीड्स फॉर्मूला आपकी जल्द को बनाए निखरी और चमकदार सिर्फ दो दिन में। डार्क स्पॉट्स को करे फेड और दे कुदरती असली ग्लो। डी स्किन ब्यूटी क्रीम, असली ग्लो हर दिन का शो।
4: खुशखबरी, क्या आप बालों के झड़ने से परेशान हैं? अब फिक्र छोड़िए, शहर मेहरापुर में रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक लेकर आया है बालों की जदीद और मौसर इलाज। एक्सोसोम्स एंड पीआरपी ट्रीटमेंट के साथ बालों का झड़ना कम करने में मददगार, कमजोर जड़ों को मजबूत बनाए, नए बालों की निशोनुमा में मदद दे, बालों को घना और सेहतमंद बनाए। घने मजबूत और खूबसूरत बालों के लिए आज ही राब्ता करें रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक, नज़्द रेलवे फाटक अक्सा मस्जिद, थरी रोड, मेहरापुर, 0300-338-5569।
5: खुशखबरी, जर्मन होम्योपैथिक क्लिनिक साम्हूं वधण बोटा पेट्रोल पंप, कोटड़ी कबीर रोड, मेहरापुर, कराची ऐं इस्लामाबाद जो मशहूर डॉक्टर मंज़ूर हुसैन मेमण एमए डीएचएमएस सिंध आरएचएमपी इस्लामाबाद, होम्योपैथिक कंसल्टेंट ऐं फैमिली फिज़िशियन, सीनियर लेक्चरर, नवाबशाह होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज नवाबशाह, हर अरबा, खमीस जुमे, छंछर आचर ऐं

0: ऐं कालम में मौजूद आहिनि। फ़ौजी ॿाहिरनि लाइ ख़ुसूसी रिआयत हूंदी। राब्ते लाइ फ़ौजी अब्दुल करीम 0301-5431-456 ऐं तौकीर अहमद 0306-1623-793।
1: इरशाद ऑटोस ऐं होंडा शोरूम बहरापुर। होंडा मोटरसाइकिल जो पुर एतमाद ऐं बा अख़्तियार इदारो इरशाद ऑटोस ऐं होंडा शोरूम महरापुर। नईं मोटरसाइकिल जी सेल कंपनीअ जे मुक़रर कयल रेट ते दस्तियाब आहे। सर्विस सेंटर एटलस होंडा लिमिटेड जो वारंटी क्लेम सेंटर सर्विस एरिया, जिते होंडा मोटरसाइकिल जी बेहतरीन सर्विस कई वेंदी आहे। होंडा कंपनीअ जा तमाम जेन्युइन स्पेयर पार्ट्स ख़ुसूसी रियायत ते मौजूद। इरशाद ऑटोस ते पंहिंजी होंडा मोटरसाइकिल जी करायो ट्रेनिंग कंप्यूटराइज जैपनीज टेस्टिंग मशीन ज़रिए, जिनमें मिले थी मोटरसाइकिल जी कारकर्दगी तमाम बेहतर। फ्यूल एडजस्टमेंट, आरपीएम जी एडजस्टमेंट कंप्यूटराइज जापानी मशीन ज़रिए कई वनी थी। होंडा जे क्वालिफाइड टेक्नीशियन जी ज़ेर निगरानी। इरशाद ऑटोस, हालाणी रोड महरापुर। राब्ते जे लाइ 0320180003।

अस्सलाम वालेकुम मेरे सुनने वाले लिसनर्स को, मेरी तरफ से और मेरे पूरी टीम की तरफ से हमारे तमाम लिसनर को, सामीन को अस्सलाम वालेकुम। तो जी एक बार फिर से सलाम कर दिया आप लोगों को। तो जनाब आप लोग को आ जाइए, मैं भी आ चुकी हूँ आप लोगों के साथ, आप लोगों का बहुत अच्छे से प्रोग्राम में जो आप लोग लेकर आई हूँ मैं। और मुझे तो ज़रूरत नहीं है बताने की कि मैं कौन हूँ, आप लोग अच्छे से जानते हैं, वही सुर, वही अंदाज, वही अपना यस, वही प्यार भरी आवाज़ जी आप सबकी अपनी आरजे कमर खान। तो जी आप लोगों के लिए आ चुकी हैं प्रोग्राम आवाज़ के रिश्ते में, शाम 5 से शाम 7 बजे तक आपका हमारा साथ रहेगा। तो जी बिल्कुल हम प्रोग्राम को आगे बढ़ाएंगे, बहुत सी बातें करेंगे, कोई ना कोई टॉपिक पर आप लोगों से डेली बात होती है और आज भी होगी क्योंकि आज हमारा लास्ट है इंशाल्लाह। फिर नेक्स्ट हम जरूर और अच्छा टॉपिक लेकर आएंगे।

जी बिल्कुल, प्रोग्राम आवाज के रिश्ते में जहाँ आवाज वहाँ रिश्ता, दिल से दिल तक का एक रिश्ता जो आप लोगों के साथ जुड़ जाता है और जुड़ा रहता है। फिलहाल इस वक्त हम मैं आपके साथ हूँ और आपके साथ ही रहूंगी शाम 7 बजे तक। जनाब, मैं टॉपिक भी लेकर आई हूँ, उस पर बात भी करेंगे कि आज हम किस टॉपिक पर बात करना चाहते हैं, आज इससे क्या टॉपिक है। तो जाहिर सी बात है, शाम का टाइम है और ये थोड़ा सा रिलैक्स वाला टाइम होता है, सब इसमें रेस्ट कर रहे होते हैं, कोई लेट कर आराम से अपने घर में होते, क्योंकि ऑफिस से मुख्तलिफ जगह से अपने काम से ऑफिस से कारोबार से फ्री होकर बैठे होते हैं और ये थोड़ा ठंडा टाइम भी होता है। तो कोई पार्क में भी जाते हैं घूमने फिरने, तफरी के लिए, आउटिंग के लिए, फ्रेंड्स हैं, सिस्टर्स हैं, कजन्स हैं आपस में, या दोस्त जो हैं वो बाहर आते हैं आउटिंग के लिए चले जाते हैं।

इसी तरीके से तो उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग भी खैरियत से होंगे और प्रोग्राम को बाकायदा आगे लेके चलते हैं। तो आज का जो टॉपिक मैं लेकर आई हूँ वो थोड़ा सा जो है ऐसा टॉपिक है कि कुछ बातें कुछ नई चीज नई आवाज़ के साथ आपका ताल्लुक है। जाहिर सी बात है, एक आवाज़ का रिश्ता है और आवाज़ें जो कुछ आवाज़ें होती हैं जैसे हम बता टॉपिक आज हम अपने प्रोग्राम के नेम के हवाले से टॉपिक भी लेकर मैं आई हूँ। तो जी बिल्कुल, आवाज़ें कुछ आवाज़ें जो दिल में उतर जाती हैं, जी बिल्कुल, एक तो जहन में बैठती हैं लेकिन एक जो दिल में उतर जाती हैं ना वो कभी आपसे भूली नहीं जाती, वो बातें वो अल्फाज वो लहजा जो आप कभी नहीं भूलते। तो आज हम उसी पर बात करेंगे। तो जी दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं कि आवाज़ें कुछ आवाज़ें जो दिल में उतर जाती हैं, अपनी जगह बना लेती हैं और शायद साल उम्रें सदियां बीत जाती हैं। शायद सदियां हम उस हिसाब से कहते हैं कि सबको पता है कि सदियां क्यों कहा जाता है, या उम्रें एक अरसा ज़िंदगी का गुजर जाता है पर वो चीज़ें वो बातें वो अल्फाज हम नहीं भूल पाते। शायद कभी कभी हम तरस जाते हैं, हमें वो उठती है हुड़कती कि हमें वो आवाज़ दोबारा सुनने को मिले। सम टाइम ऐसा होता है कि वो आवाज़ वो लोग वो चेहरे हमें नज़र नहीं आते जो हमसे दूर हो जाते हैं किसी भी वजह से, कोई मजबूरी होती है या कोई दूर जाना पड़ता है, कोई दूसरे सिटी दूसरे

अच्छा मैं आप लोगों को प्रोग्राम में शामिल होने का तरीका ही बताऊँ, उसके साथ एक छोटा ट्रैक भी प्ले करेंगे हम। तो जी प्रोग्राम में आपने शामिल कैसे होना है, आप हमें जी एफएम के हमारे पेज पर ज्वाइन कर सकते हैं एफबी पर, और वहाँ आप लाइव चल रहा है प्रोग्राम, वहाँ में आप कमेंट्स करके शामिल हो सकते हैं प्रोग्राम में। आपका जो मैसेज है आप मुझ तक जरूर पहुँचाएं, आपकी

टाइप करना है अपना जो भी आप मैसेज मुझे देना चाहते हैं कि मैं आपकी वो अल्फाज अपने सामीन अपने जो है सुनने वाले हैं उन तक पहुंचाऊं, आपकी वो दिल की आवाज़ दिल की बात जो आप नहीं कह सकते किसी से आप मेरे ज़रिए आप कह सकते हैं वो, या कोई सॉन्ग कोई भी आप शायरी जो आप चाहते हैं कि मैं सबके साथ शेयर करूँ आपके दिल में जो अल्फाज हैं जिनका आप अल्फाज को आवाज़ नहीं दे पा रहे टाइप करके देन आपने सेंड कर देना 8881 पर 8881 और साथ साथ प्लीज सोर्सी शेयरिंग भी करते रहा करें। इसके साथ ही आज का फर्स्ट जो है वो मैं सॉन्ग प्ले करने जा रही हूँ अपने तमाम लिसनर्स के नाम आवाज के रिश्ते में, जहाँ आवाज वहाँ रिश्ता, दिल से दिल तक के रिश्ते में मैंने एक अच्छा सा ट्रैक प्ले कर दिया है सिलसिले। तो जी मुझे बड़ा पसंद है और उम्मीद करती हूँ आप लोग भी पसंद आएगा, आप लोग भी मेरे साथ एंजॉय करेंगे।

तो जी बिल्कुल, और बातें भी होती रहेंगी साथ साथ। शाम का टाइम है और ये टाइम बड़ा अच्छा गुजरता है। इस टाइम लोग अपने घरों में आ जाते हैं और कुछ घरों में रौनक शौनक लग जाती है, शाम की चाय का समा बन जाता है। फिलहाल आप लोग बोलेंगे कोमल दबा पर पानी पी रही है, भाई मैं पानी बहुत पीती हूँ, मुझे प्यास बहुत लगती है। और आप लोग भी पानी पिया करें, पानी पीना ज्यादा अच्छा है सेहत के लिए। मेरी तरह जैसे मैं पीती हूँ ना, वैसे आप लोग भी पिया करें बार बार। अच्छा जी, तो हम बात कर रहे थे आवाज़ों के ऊपर। तो जी घरों में रौनक चनक होती है, आवाज़ें होती हैं। सम टाइम ये होता है कि अगर आप सुबह सुबह भी रौनक होती है, जब बच्चे स्कूल नहीं जाते हैं, माँ की आवाज़ें आती हैं। जब हम छोटे छोटे होते हैं, अपना भी मैं बताऊँ तो स्कूल नहीं जाना देर हो जाएगी, या कहीं जाना है मदरसे ट्यूशन नहीं जाना देर हो जाएगी, कहीं घूमने जाना भाई जल्दी करो, इतना टाइम तैयार होने में टाइम लगता है। तो ये आवाज़ें वक्त के साथ साथ धीमी पड़ जाती हैं। अल्लाह ताला जिनके माँ बाप हयात हैं मेरे आपके, जिन जिनके उन सबको सदस्य तो तंदुरुस्ती वाली ज़िंदगी दें, आमीन। और जिनके हयात नहीं हैं, दुनिया से जा चुके हैं, तो उनके बच्चों को, उनके घर वालों को सब्र जमील अता फरमाएं और उनको जन्नत में आला मकाम अता फरमाएं। तो जी हम प्रोग्राम में आगे बढ़ रहे हैं, आगे बढ़ते जाएंगे प्रोग्राम, क्योंकि टाइम नहीं है हमारे पास, टाइम हो चुका है 5:40। तो जी बिल्कुल, अच्छा जी एक और अच्छा सा ट्रैक मैं प्ले करती हूँ और साथ साथ आप लोगों से एक ही गुजारिश करूँगी भाई, थोड़ी बहुत शेयरिंग कर दिया करें। शेयरिंग करने से कुछ नहीं जाता, कुछ भी नहीं बिगड़ेगा। अच्छा जी, तो मेरे पास बहुत अच्छे अच्छे मैंने आज सॉन्ग निकाले हैं, क्योंकि हम सैड नहीं रहना चाहते ना, तो हम चाहते हैं हम साथ साथ अच्छा भी सुने। ऑल इज गॉड। तो जी बिल्कुल, इस वक्त मैंने प्ले किया है जिन्हें जमशेद की खूबसूरत सी आवाज़ को पेश कर चुकी हूँ आप लोग की खिदमत में। वो आज हमारे बीच नहीं, लेकिन उनके गाए हुए गाने गीत आज भी हमारे बीच में है। उनके मदाहों को पसंद हैं जैसे मुझे पसंद है, मैं भी शेयर आप लोग के साथ उनको शामिल करती रहती हूँ। और ये सदाबहार सॉन्ग होते हैं इनके, आँखों को आँखों ने। जी बिल्कुल, ये ज़बरदस्त ट्रैक है इनका। तो जी आँखें आँखों को सपना दिखाती हैं, तो मेरे साथ आप भी इंजॉय करें आवाज़ के लिए।

0: 5:45 p.m. This time check is brought to you by
1: Bank Islam ne laya Pakistan ka pehla sharia compliant gold based financing. Sona sirf zevar nahi har ghar ki amanat hoti hai. Isiliye Bank Islam ne laya Pakistan ka pehla sharia compliant gold based financing. Jisse mile 50 lakh rupaye tak ki financing 4 saal tak ki muddat ke saath. Bank Islam gold based financing se अमानत को अपनी जगह रहने दो. आज ही 111-475-264 या bankislami.com.pk पर अप्लाई करें. शराइत और जवाबित लागू हैं.
2: अपना शहर अपना घर मेहराबपुर और मेहराबपुर की आवाज़ GAFM 94.

बलोचिस्तान से इन्होंने हमें ज्वाइन किया, बहुत बहुत शुक्रिया भाई बलोचिस्तान वालों, आप सब आते हो आपको बहुत बहुत शुक्रिया। इसके अलावा हमारे सखर वाले सिंध वाले आज कहाँ चले गए, सखर वालों आप लोग तो आओ, लाइव आप लोग की सिटी से प्रोग्राम चलता है तो इसलिए आप लोग तो लाजमी आया करें। अच्छा जी, इन्होंने लिखा है अब्दुल रजाक साहब ने के शायरी अपना, अच्छा इन्होंने इसको शायरी का नाम दिया है, पहले हम पढ़ लेते हैं इन्होंने क्या क्वाइट लिखा है, बहुत अच्छा था मुझे लगा था। नमक अपना किरदार नमक की तरह रखें, अपना किरदार नमक की तरह रखें, ना कोई आपका ज्यादा इस्तेमाल कर सके और ना कोई आपके बगैर रह सके। डेडिकेट बेवफा जमाल जी, भाई बेवफा जमाल कहाँ है आप, सुन लें आप उनकी, उनसे बात कर लें भाई। अच्छा जी, बहुत अच्छी बात है कि वाकई इंसान का किरदार ऐसे ही होना चाहिए कि ना बहुत ज्यादा आप मीठे बनो और ना ज्यादा आप शहद बन जाओ किसी के लिए, तो जाहिर सी बात है अगर आप बहुत मीठे बन जाएंगे तो हर कोई फायदा उठाएगा, बहुत अच्छे बन जाएंगे मतलब, और कड़वे बनेंगे तो हर कोई दूर भागेगा, तो नॉर्मल रहें, बीच में रहें, ना इधर जाएं ना उधर जाएं, बहुत अच्छी बात है। अच्छा जी, इसके साथ हैं रियाज भट्टी हैं, इन्होंने हमें ज्वाइन किया है, ये कहते हैं कि अस्सलाम वालेकुम रियाज भट्टी फ्रॉम लाहौर से, चलिए भाई पंजाब वाले भाई भी हमारे आए हुए, बहुत बहुत शुक्रिया आपको, वेलकम करते हैं, हमारे पंजाब के लिसनर्स भी हमारे पास शामिल हैं, इंशाल्लाह उम्मीद करते हैं कि आप नेक्स्ट वीक में भी हमारे साथ होंगे प्रोग्राम में, सैटरडे संडे हमारा प्रोग्राम होता है आवाज़ का रिश्ता हर वीकेंड में, तो जी आपको मेरी तरफ से भी वालेकुम सलाम है, बहुत बहुत खुशी हुई कि आप लोग इस तरीके से प्रोग्राम में आते हैं और शामिल होकर बताते हैं कि हम यहाँ से सुन रहे हैं। तो जी हमारे बलोचिस्तान वाले भी आ चुके हैं और पंजाब वाले भी आ गए हैं, सिंध खैरपुर सखर वालों कहाँ चले गए हो भाई, जल्दी से आओ आप लोग भी, आपका भी इंतज़ार है मुझे। अच्छा जी, मैसेज करने का तरीका मैंने आपको बताया था कि आप लोगों ने क्या करना है, 888-1 पे आपने मैसेज

उन्होंने कहा कि यार बस थोड़ा सा गर्मी, थोड़ा सा गर्मी को बर्दाश्त करो, बस अब सर्दियां भी रस्ते में हैं। जी सर्दियां रस्ते में ही, बिल्कुल गर्मियों को तो हमने थोड़ा क्या पूरा बर्दाश्त किया है भाई, बहुत अच्छे से बर्दाश्त किया था। और ये भी अल्लाह ताला की तरफ से हमारे लिए एक नेमत है, दोनों मौसम, तीनों चारों मौसम जो हमारे आते हैं बहुत नेमत है। हर चीज अल्लाह ताला के बनाई हुई है, वो बहुत हमारे लिए जरूरी है, और इसमें कोई ना कोई हमारी इंसानी जात के लिए हिकमत है। जी बिल्कुल, सर्दियां रस्ते में ही हैं, बस आ रही हैं। थोड़ी देर में उनसे बात कर ली थी, वो कह रहे बस हम कुछ दिन में पहुंच रहे हैं। अच्छा जी, इरम सिंह, हमें इन्होंने हमें लड़काना से ज्वाइन किया है। चले जी, बहुत बहुत शुक्रिया।

कंदड़न के माहवार 30 लीटर पेट्रोल 25 लीटर 100 रुपया लिफ्ट मिलो। वजीर आजम चो तो तेल की कीमत में वाद सबब अवाम से पवंदड़ बार जो हुकूमत के एहसास है दुखे वक्त में अवाम के अकेलो न छींदी। हुसैन के सऊदी अरब के कमांड सेंटर से हमले की दावा सऊदी अरब के हथियार वाले डिपो ए कमांड मरकज के निशान बनाया वो। यमन के हूसी बागिन डेड सी के भी कब्जे की दावा कई। यमनी हुसैन जो चवण है तो सऊदी हिमायती फोर्सिस के इस्तेमाल हेठ अमेरिकी ठहल बख्तरबंद टैंक से भी कब्जो किया वो है। अरब मीडिया मूजिब मेवन बेट के कब्जे बाद हुसैन जो बाबुल मदब से मुकम्मल कंट्रोल थी वो। अंसारुल्लाह कब्जो कल इलाके में लखें डॉलर्स जो फौजी सामान जब्त कर वरतो है। ईरान आबना हुर्मुज़ के खोलने लाए अमेरिका के 7 शर्त पेश कर छा। रूसी मीडिया जो चवण है ईरान ट्रैकड़ी कंदड़ मुल्क जरिए अमेरिका के शर्त पेश कया। तेहरान सूमर से मस्कत में इजलास की मेजबानी कंदो। अरब मुल्क के भी दावत दिनी वही। नार के मुल्क के दावत नवन रस्तन की तफसील ट्रांसिट इंतजाम का आगाही लाए है। ईरानी मीडिया मूजिब अमेरिका पारा दखण वो रस्तो खोलने लाए जोर भरण बावजूद यो रस्तो बंद कर वो। ईरान के कशम बेट से व्यापारी जहाज से हमलो। हमले में एक जनो मारजी वो 3 जख्मी। ईरानी सदर मसूद पशेकियान मूजिब खिते के सभी मुल्क के गर्जी अमुन कायम कर घुर्जे। अमेरिका में हिम्मत है तो ईरानी फौज के मुंह दे असा के दबाव ए धमक से झुकाए नो सकजे। अमेरिका जारियत बंद करे तो आबना हुर्मुज़ खुली वो। आबना हुर्मुज़ बाबत सूमर से ओमान से माहदे से सयू थन्दियों।

0: पाकिस्तान के दहशतगर्दी से गंढण की कोशिश नाकाम। मलेशिया के वजीर आजम से एक इंटरव्यू में भारतीय टीवी चैनल के मेजबान पहलगाम वाक़े के पाकिस्तान से गंढण की कोशिश कई तो अनवर इब्राहिम सीधो इनकार कयो। अनवर इब्राहिम असाजे एजेंसियों कदें अड़ी रिपोर्ट न डनी। पाकिस्तान अजीम मुल्क है, अजीम तहजीब ए सकाफती उजाण है।
1: आप सुन रहे थे GAFM नेटवर्क पर KTN न्यूज।
2: इरशाद ऑटोस आई होंडा शोरूम मेहरापुर, होंडा मोटरसाइकिल जो पुर एतमाद आई बा अख्तियार इदारो। इरशाद ऑटोस आई होंडा शोरूम मेहरापुर, नईन मोटरसाइकिल जी सेल कंपनी जे मुकरर कर रेट ते दस्तयाब आहे। सर्विस सेंटर एटलस होंडा लिमिटेड जो वारंटी क्लेम सेंटर सर्विस एरिया, जिते होंडा मोटरसाइकिल जी बेहतरीन सर्विस कई वेंदी आहे। होंडा कंपनी जा तमाम जेन्युइन स्पेयर पार्ट्स खुसूसी रियायत ते मौजूद। इरशाद ऑटोस ते पंहिंजी होंडा मोटरसाइकिल जी करायो ट्रेनिंग कंप्यूटराइज जैपनीज टेस्टिंग मशीन जरिए, जैमें मिले थी मोटरसाइकिल जी कारकर्दगी तमाम बेहतर। फ्यूल एडजस्टमेंट RPMG एडजस्टमेंट कंप्यूटराइज जापानी मशीन जरिए कई वनी थी। होंडा जे क्वालिफाइड टेक्नीशियन जी जेर निगरानी। इरशाद ऑटोस हालानी रोड मेहरापुर, राब्ते जे लाए 0320180003।
3: हर नजर आपकी खूबसूरती पर ठहर जाए और ये है मेरी खूबसूरती का राज, मिल्क राइज ब्यूटी क्रीम। सिर्फ 3 दिन में जिल्द को निखारे और रंगत को रोशन करे, दाग धब्बे झुर्रियां और कील मुहासे फौरन कम करे। इस्तेमाल का आसान तरीका, रात को मिल्क राइज ब्यूटी सोप से चेहरा धोएं, फिर मिल्क राइज ब्यूटी क्रीम चेहरे और गर्दन पर लगाएं, नताइज देखें सिर्फ 3 दिन में। एक्नी के लिए मिल्क राइज एक्नी क्रीम इस्तेमाल करें। दस्तियाब प्रोडक्ट्स मिल्क राइज ब्यूटी क्रीम, मिल्क राइज ब्यूटी सोप, मिल्क राइज एक्नी क्रीम। हर अच्छे कॉस्मेटिक जनरल स्टोर से नाम लेकर खरीदें। मजीद मालूमात के लिए मलिक जफर इकबाल एंड एम सिद्दीक, शाही बाजार मेहरापुर 03000 3105109 0300 3105109।
4: मालवन भारन लाए खुश खबरी, 50 सालन का आजमायल सखर वारन जो जीजान ढोर चारो मसालो, जानवरन में खीर आई गोश्त बधाए, अम्हा के खुशहाल बनाए। हर पंसार आई जानवरन जे डॉक्टरन वट दस्तियाब आहे।

0: ऐं कालम में मौजूद आहिनि। फौजी ॿाहिरनि लाइ ख़ुसूसी रियायत हूंदी। राब्ते लाइ फौजी अब्दुल करीम 0301-54-4456 ऐं तौकीर अहमद 0306-16-23-793।
1: मेहरान आयरन स्टोर हालाणी होलसेल डिपो अ नेम टू बी ट्रस्टेड
2: सरिया गार्डर टीयर एंगल चैनल पट्टी लोही दरवाजा सिल्वर जा चौंग सीमेंट रेती क्रेश ऐं रंग वगैरह बाजार खां बारियर दस्तियाब आहिनि।
1: हाणे अचो मेहरान आयरन स्टोर नज़्द बलोच पेट्रोल पंप नेशनल हाईवे हालाणी।
2: राब्ते लाइ प्रोप्राइटर गुलाम नबी मुगल 0300-320-4372 ऐं 0242-460100।
3: अस्सलाम वालेकुम अदा।
4: वालेकुम अस्सलाम अदा, छो परेशान आई?
3: अदा नओ दुकान खोलियो अथम पर हले ही न तो, छा कजे?
4: अदा दुकान जी मशवरी कराई अथई?
3: न अदा।
1: यार अॼुकल्ह शहरनि तोड़े गोठन में जीअं मीरापुर FM 94 ई हले थो, मूं पंहिंजो दुकान खोलियो त FM मीरापुर ते पब्लिसिटी कराई। कारोबार अहिड़ो कामयाब वियो जो एड बंद कराइण ते दिल्ली नथी चवे।
3: मुंहिंजे दुकान जी बेड हलंदी?
4: हा अदा, कारोबारी इश्तिहारात, आम इतला, मीलाद, मजलिस, सालगिरह जी मुबारक, मतलब हर किस्म जी एडवर्टाइजिंग हलंदी आहे।
3: अदा जल्दी कर, मूंखे मुंहिंजी एड्रेस ॿुधायो।
1: ऑफिस जी मीरापुर FM 94 नज़्द गर्ल्स डिग्री कॉलेज हालाणी रोड मीरापुर।
4: राब्ते लाइ हाकिम अली जिस्कानी
5: 0301-399-2836।
6: अपना शहर अपना घर मेहराबपुर और मेहराबपुर की आवाज़ GA FM 94।

0: जेवर नहीं हर घर की अमानत होती है, इसीलिए बैंक इस्लामनी लाया पाकिस्तान का पहला शरिया कंप्लायंट गोल्ड बेस्ड फाइनेंसिंग, जिससे मिले 50 लाख रुपए तक की फाइनेंसिंग 4 साल तक की मुद्दत के साथ। बैंक इस्लामी गोल्ड बेस्ड फाइनेंसिंग से अमानत को अपनी जगह रहने दो। आज ही 1114752 64 या bankislami.com.pk पर अप्लाई करें। शराइत जवाबित लागू हैं।
1: मेहराबपुर के हो तो आवाज भी मेहराबपुर की है। सुनते रहो GFM 94।

0: कमर्शियल ब्रेक बाद एक दफो बीहर अमां सभिनी खे खुश आमदी चऊं था। प्रोग्राम आहे सिहत जी ॻाल्हि ऐं असांजे स्टूडियो में मौजूदु डॉक्टर मंज़ूर हुसैन मेमून साहबु ऐं असांजे प्रोग्राम में लाइव कॉल ज़रिए शामिलु थी सघो था। असांजे लाइव कॉल जो नंबर आहे 0301-2196-851। डॉक्टर साहब जो एड्रेस ऐं टाइम आहे, डॉक्टर साहब हर अरबा खमीस जुमे छंछर आचर ऐं सूमर ते सुबुह 10 खां शाम 5 वॻे ताईं जर्मन होम्योपैथिक क्लिनिक साम्हूं वधण पुटरा पेट्रोल पंप कोटरी रोड मेरापुर में मरीज़नि जो इलाज कंदा आहिनि। ऐं नोट, अंगारे जे ॾींहुं क्लिनिक बंदि हूंदी आहे ऐं हिन में हफ़्ते जा 3 ॾींहं जुमो छंछर आचर चेकअप फीस बिल्कुलु फ्री हूंदी आहे। बाक़ी दवा मरीज़ खे स्टोर तां वठणी हूंदी आहे। डॉक्टर साहब कॉल जी तरफ़ हलंदासीं, वधीक इंतज़ारु नथा करियूं कॉलर्स खे। अस्सलाम वालेकुम।
1: वालेकुम सलाम
0: जी। अदा केरे किथां खां? फ़क़ीराबाद खां। छा पुछणु चाहींदा डॉक्टर साहब खां? अच्छा, ठीकु आहे, मूंखे ॿुधायो थो डॉक्टर साहब, रेडियो ॿुधो।
1: ठीकु आहे
0: जी सर।
2: मरीज़ में मुबतला हूंदा आहिनि, उन हवाले सां हिकु त चांहि जो इस्तेमालु घटि करिणो आहे, तरियल शयूं, खटी शयूं ऐं चांवर जो इस्तेमालु बंदि करिणो आहे, ऐं पपीतो इस्तेमालु कयो ऐं काफ़ी फ़ाइदो पइजी वेंदो आहे। ऐं उन खां पोइ आलू बुखार जेके ख़ुश्क हूंदा आहिनि उहे चूसण सां बि काफ़ी फ़र्क़ु पइजी वेंदो आहे, या सौंफ चूसण सां बि काफ़ी जेको मैदे जा अमराज़ फ़ाइदो पइजी वेंदो आहे। लेकिन जी बहितरीन मुकमल हल जेको आहे न सो होम्योपैथिक दवा में आहे। होम्योपैथिक दवा अव्हां खे ख़बर आहे त जेको आहे सो बेज़र हूंदी आहे, को साइड इफ़ेक्ट न हूंदो आहे। मेडिकल में माण्हू हिकिड़ो ई क़िस्म जो को कैप्सूल या अहिड़ी का दवा रेगुलर खाईंदो ईंदो आहे, ऐं उहे दवाऊं जेको आहे इन जा एतिरा सारा साइड इफ़ेक्ट आहिनि जो माण्हुनि जो कैल्शियम ख़तमु थी थो वञे, हॾनि ते असरात अची वञनि था, गुर्दनि ते असरात अची वञनि था, जिगर ते असरात पइजी वञनि था। इन जे करे उहा इन्हनि शयुनि खां जेको आहे सो ख़ालसतन बचो ऐं कुदरती शयुनि जी तरफ़ जी मां ॻाल्हि कई, सौंफ तमामु बहितरीन, सौंफ ऐं जीरो तव्हां जेको आहे सो काढ़े पाणीअ में पी सघो था, उहो काफ़ी फ़ाइदो तव्हां खे ॾेई सघे थो। सौंफ ईअं तव्हां खाईंदा आहियो ईअं काफ़ी तको फ़ाइदो पइजी वेंदो आहे। पुदीना हिकिड़ो फूदिनो जंहिंखे चवंदा आहियूं त उहो तमामु हिकिड़ो इन जे लाइ तमामु बहितरीन आहे। फूदिने जो शरबत थींदो आहे, उहो तव्हां पी सघो था जेको आहे सो। ऐं अहिड़ियूं शयूं जेके नुक़सानु ॾियनि थियूं ऐं उहो तव्हां उनखे बंदि करे छॾियो, ऐं पंहिंजो खाइण पीअण जो जेको रूटीन आहे, लाइफ स्टाइल पंहिंजो आहे, उनखे थोरो चेंज कयो। यानी हिकिड़ो राति जो देरि सां मानी न खाइणु घुरिजे, घटि में घटि शाम जो माण्हू 7-8 बजे जेको आहे सो यानी राति जी मानी खाए त जीअं उहा हज़म थिए ऐं माण्हू जेको आहे सो सुम्ही सघे सही तरीक़े सां, ऐं सही तरीक़े सां उहो जेको आहे सो मादो उनखे एक्सेप्ट कंदो आहे। खीर बि राति जो जेको आहे सो घटि में घटि खीर बि पंहिंजो हज़म करण लाइ 2 कलाक वठंदो आहे। इन जे करे खीर बि अहिड़े तरीक़े सां तव्हांखे देरि सां नाहे पीअणो। घणा माण्हू राति जो निंड मां उथी करे खीर पीअंदा आहिनि, या इहो बि तमामु हिकिड़ो ग़लति हूंदो आहे। चांहि जो इस्तेमालु घणो हूंदो आहे, स्मोकिंग हूंदा आहिनि, त इहो मादे खे नुक़सानु जेको आहे सो थिए थो। ऐं दवाऊं जेके मां होम्योपैथिक जो ॿुधायो त उन में इहो आहे जो माना माण्हू अॻिते हली जेकॾहिं उनखे छॾे पियो वञे थो त आदि कोन थो थिए, सो होम्योपैथिक दवा इस्तेमालु कंदा कयो। असांजी क्लिनिक ते तव्हां कहिड़े बि टाइम ते अची सघो था, महिरबानी।
0: प्रोग्राम आहे सिहत जी ॻाल्हि ऐं असांजे स्टूडियो में मौजूदु आहिनि डॉक्टर मंज़ूर हुसैन मेमून साहबु, जेके मुख़्तलिफ़ बीमारियुनि बाबति असांखे ॼाण ॾींदा आहिनि। ऐं अव्हां असांजे प्रोग्राम में लाइव कॉल ज़रिए शामिलु थी सघो था। असांजे लाइव कॉल जो नंबर आहे 0301-2196-851, 0301-2196-851। डॉक्टर साहब मुख़्तलिफ़ बीमारियुनि जा माहिर डॉक्टरनि जिन में गुर्दे, पिते ऐं मसाने जी पथरी जो बग़ैर ऑपरेशन जे कामयाबु इलाज कंदा आहिनि। संदनि, जोड़नि, गोॾनि जो सूरु, कुनरक जो सूरु, नक, कन, गलो, पुराणो, नज़लो, निछूं, मथे जो सूरु, अधु मथे जो सूरु, नज़र जी कमज़ोरी, कन जो वहणु, कन जो सूरु, घटि ॿुधण में अचणु, शुगर, ब्लड प्रेशर, दिलि जा मर्ज़, फाल जी खंघि, टीबी, मैदे जो सूरु, मैदे जी अल्सर, तिली जो वधणु, जिगर, हेपेटाइटिस बीसी, गुर्दनि जो इन्फेक्शन, चेहरे जो रंग सांवरो, चेहरे जी ख़ारिश, फट फुरणियूं, ॿारनि में कद जो न वधणु ऐं औरतुनि ऐं मर्दनि जे पोशीदा बीमारियुनि जो कामयाबु इलाजु कंदा आहिनि। ऐं असांजे प्रोग्राम में लाइव कॉल बि ज़रिए शामिलु थी सघो था। असांजे लाइव कॉल जो नंबर आहे 0301-9196-851। डॉक्टर साहब, हर अरबा खमीस जुमे छंछरु आचे ऐं सूमर ते सुबुह 10 खां शाम 5 वॻे ताईं जर्मन होम्योपैथिक क्लिनिक साम्हूं वधण पोटा पेट्रोल पंप कोटरी रोड मेहरापुर में मरीज़नि जो इलाजु कंदा आहिनि। कॉल जी तरफ़ हलंदासीं, ॾिसूं था केरु लाइन ते आहे मौजूदु। अस्सलाम वालेकुम। हैलो, अस्सलाम वालेकुम। डॉक्टर साहब, कुझु लिसनर्स अहिड़ा हूंदा आहिनि कॉल करे मतिलबु इलाज असांजो बि टाइम ज़ाया कंदा आहिनि, ऐं तव्हां बि चयो पहिरियां त उनखे कॉल करण ॾींदा जंहिंजो उन मक़सदु हूंदो आहे कॉल जो, या को मरीज़ हूंदा आहिनि का ॻाल्हि पुछणु चाहींदा आहिनि त महिरबानी करे उन्हनि खे कॉल करण जो मौक़ो ॾींदा कयूं।
2: जी साईं, बिल्कुलु। ऐं इहा ॻाल्हि मां प्रोग्राम जी शुरूआत में करियमि त अहिड़े क़िस्म जा असां अॼुकल्ह पंहिंजे मोबाइल में हिकु ऐप इस्तेमालु कंदासीं।
0: जी जी साईं।
2: जिन सां उन्हनि जा नंबर्स अची वेंदा आहिनि, उहे हमेशह जे लाइ हिकु त ब्लॉक थी वेंदा, ऐं असांजी मथीं एजेंसी हूंदी आहे उन ॾे उहे नंबर थी वेंदा।
0: बिल्कुलु सर।
2: जीअं उन्हनि ते बि वरी एक्शन खणी सघे, छो जो हिकिड़ो बार बार माण्हू चवे थो पियो त उन ॻाल्हि खे सम्झणु घुरिजे।
0: बिल्कुलु सर, मजबूरनि करिणो पवंदो।
2: या हिकिड़ो आवाज़ घणा माण्हू जेको आहे सो चेंज करे ॻाल्हाइनि था, या तमामु हिकिड़ो इंतिहाई ग़लति आहे। अॼुकल्ह इन ते तमामु सख़्ती बि आहे, ऐं इहो हिकिड़ो ग़लति कमु करणु आहे। इन जे करे असां वरी बि हिकु दफ़ो गुज़ारिश कंदासीं त महिरबानी करे इहो कमु हरगिज़ न कजो। सुभाणे तव्हां कंहिं बि मसइले में पइजी।
0: बिल्कुलु सर, मजबूरन पोइ ईअं ई करिणो पवंदो आहे। हलंदासीं हिकु ॿी कॉल जी तरफ़। अस्सलाम वालेकुम।
1: हलो, अस्सलाम वालेकुम।
0: वालेकुम सलाम। जी जी, छा पुछणु चाहींदा डॉक्टर साहिब खां?
1: साईं, मूंखे दिमाग़ी मसइलो आहे। घटि में घटि 6-7 साल सां दवा वरिती आहे मेडिकल जी, राणीपुर मां वरिती आहे गंबट मां। उन मसइले बाबति पुछाईंदासीं।
0: जी जी, तव्हां किथां पिया ॻाल्हायो?
2: ठीकु आहे, अधे जो मसइलो आहे अधे खे बि इहो ई मशवरो ॾींदासीं त हिकु त जेको पुराणो मसइलो आहे, मसइलो दिमाग़ जो त हज़ारे मसइला हूंदा आहिनि। दिमाग़ जो छा मसइलो आहे, निंड नथी अचे, या सोच घणी आहे, या टेंशन आहे, या डिप्रेशन आहे, या साइकोलॉजिकली को असरु आहे, त उहो सॼो पंहिंजो केस खणी ऐं सुभाणे रूबरू क्लिनिक ते ॾेखारींदा त वधीक बहितर।
0: रूबरू अचे त वधीक सर डायग्नोसिस थी सघे थो हुनजो। बिल्कुलु। प्रोग्राम आहे सिहत जी ॻाल्हि, असांजे स्टूडियो में मौजूदु डॉक्टर मंज़ूर हुसैन महमूद साहब। हलंदासीं हिकु ॿी कॉल जी तरफ़। ॾिसंदासीं लाइन ते केरु आहे असांजो मौजूदु। अस्सलाम वालेकुम।
1: साईं, वालेकुम अस्सलाम। मां मुजाहिद हुसैन सर थो ॻाल्हायां।
0: जी जी
1: साईं, मूंखे हिकिड़ो मसइलो आहे, गोॾे में सूरु आहे ॾाढो। गाॾी स्टार्ट कयां थो त पोइ माना वेलण बि उथलियो वञे, ऐं गोॾे में सूरु आहे ॾाढो। जेकॾहिं महीनो खनि नथो हलायां गाॾी त पोइ सूरु ख़तमु थी थो अचे।
0: अच्छा, हा बिल्कुलु, तव्हां क़रीब आहियो। अगरि रूबरू ॾेखारियो त वधीक बहितर आहे, वरना डॉक्टर साहिबु मूंखे ॿुधायो थो। रेडियो ॿुधो। जी सर।
2: अॼु असीं बिल्कुलु अधे चवंदासीं त हिकु त जेको आहे सो कोशिशि कयो त जेकॾहिं कंहिंजे टंग में तकलीफ़ आहे त उन ते वज़न घणो या औकड़ूं घणो जेको आहे सम्झो, या हिकिड़ी सट पाइण सां मूंखे तकलीफ़ थिए थी त उनखे कंहिं तरीक़े सां जेको आहे सो यानी आराम वारे तरीक़े सां जेको आहे सो तव्हां उनखे हैंडल करे सघो था। ऐं उनखां पोइ तेल सरे जो गरम करे उनमें हेड विझी ऐं उहो उनखे लॻाइण सां काफ़ी फ़र्क़ु पइजी वेंदो आहे, काफ़ी असरअंदाज़ थींदो आहे। ज़ैतून जो तेल बि उनखे काफ़ी जेको आहे सो फ़ाइदो ॾेई सघे थो। राति जे टाइम में तेल सरे जो या ॾींहं जे टाइम में बि तव्हां लॻाए सघो था। ऐं उनखां अलावा राति जे टाइम में खीरु काढ़े ऐं उनमें बि जेको आहे सो हेड विझी थोरी ऐं उहो पी सघो था। उन सां बि काफ़ी फ़र्क़ु पइजी वेंदो आहे। वरना जो तव्हां एक्सरे कराए ऐं रूबरू ॾेखारींदव त उनमें बि ख़बर पइजी वेंदी त छा मसइलो आहे, त उनजे हवाले सां बि ट्रीटमेंट करे सघिजे थी। वॾी महिरबानी।
0: प्रोग्राम सिहत जी ॻाल्हि, ऐं असांजे स्टूडियो में मौजूदु डॉक्टर मंज़ूर हुसैन महमूद साहबु। डॉक्टर साहबु, हर अरबा खमीस जुमे छंछरु आचर ऐं सूमर ते सुबुह 10 खां शाम 5 वॻे ताईं जर्मन होम्योपैथिक क्लिनिक साम्हूं वधण पोटा पेट्रोल पंप कोटरी रोड मेहरापुर में मरीज़नि जो इलाजु कंदा आहिनि। ऐं नोट, अंगारे जे ॾींहुं डॉक्टर साहिब जी क्लिनिक बंदि हूंदी आहे। ऐं असांजे प्रोग्राम में लाइव कॉल ज़रिए बि शामिलु थी सघो था। असांजो लाइव कॉल जो नंबर आहे 0301-96-8051। हलंदासीं हिकु ॿी कॉल जी तरफ़। अस्सलामु अलैकुम।
1: हलो
0: जी, अदा केरु आहे, किथां खां? छा पुछणु चाहींदा डॉक्टर साहिब खां? डॉक्टर साहब ॿुधाए थो, लेकिन रूबरू ॾेखारींदो त वधीक बहितर थींदो। ठीकु आहे, रेडियो ॿुधो, डॉक्टर साहब ॿुधाए थो। जी सर,
2: अॼु साईं बिल्कुलु ही अहिड़ी क़िस्म जी तकलीफ़ हूंदी आहे, को आम तकलीफ़ न आहे, का उल्टी या बुखार या नज़लो हुजे जो तव्हांखे फ़िलहालु को आरज़ी टोटको ॿुधाइजे या मथे जो सूरु हुजे। हीअ पिते में पथरी आहे, ज़ाहिर आहे त उन जो हल थींदो ऐं हूअ मेडिकल में उनजो हल ऑपरेशन आहे। असां वटि इन जी हल जेको आहे सो ट्रीटमेंट ई आहे, दवा ई आहे। सो बि को हिकिड़े वेले जे हिसाब सां दवा न हूंदी आहे, तक़रीबन 3-4 महीना दवा खाइबी आहे। सो बि पेशंट जो अल्ट्रासाउंड थियलु हूंदो, उनखे रूबरू ॾिसी करे त उनमें ॾिसिबो त उनखे केतिरी MM जी पथरी आहे, उन हिसाब सां पिते जी छा पोज़ीशन आहे, उनजा वाल्स जी छा पोज़ीशन आहे, पोइ जेको आहे सो ऐं पेशंट जी कंडीशन छा आहे, उनखे ब्लड प्रेशर आहे, शुगर आहे, या रत जी कमी आहे, या मादे जी तकलीफ़ आहे, या फैटी लिवर आहे, या ॿिया का तकलीफ़ आहे, त पोइ जेको आहे सो उनखे उन हिसाब सां तकलीफ़ रहंदी आहे। इहे हिते तव्हां उनखे यानी नसपंद वारी बीमारी न सम्झो, हीअ हिकिड़ी तकलीफ़ आहे जंहिंजी मुकमल ट्रीटमेंट थींदी त अलाह कंदो बग़ैर ऑपरेशन जे तव्हांजे पिते जी पथरी निकिरी वेंदी, पर इलाज सां। ठीकु आहे दादा, सो तव्हां सुभाणे रूबरू पेशंट खे वठी अची ऐं अल्ट्रासाउंड बि खणी ॾेखारे वञो, वॾी महिरबानी।
0: प्रोग्राम आहे सिहत जी ॻाल्हि, ऐं प्रोग्राम सिहत जी ॻाल्हि में असां शामिलु थी सघो था। इन लाइ लाइव कॉल नंबर आहे 0301-96-8051, 0301-216-851। डॉक्टर साहब जो एड्रेस ऐं टाइम नोट कंदा। डॉक्टर साहब हर बा खमीस जुमे छंछरु आचर ऐं सूमर ते सुबुह 10 खां 5 वॻे ताईं जर्मन होम्योपैथी क्लिनिक साम्हूं वदनपोटा पेट्रोल पंप कोटी रोड मेरापुर में मरीज़नि जो इलाज कंदा आहिनि। इन में हफ़्ते जा 3 ॾींहं जुमो छंछरु आचर ऐं चेकअप फीस बिल्कुलु फ्री हूंदी आहे, बाक़ी दवा मरीज़नि खे स्टोर तां वठणी हूंदी आहे। डॉक्टर साहब मुख़्तलिफ़ बीमारियुनि जा माहिर डॉक्टर आहिनि, जिन में संदनि, जोड़नि, गोॾनि जो सूरु, कुन रग जो सूरु, नक, किन, गलो, पुराणो नज़लो, निछो, मथे जो सूरु, अधु मथे जो सूरु, नज़र जी कमज़ोरी, कन जो वहणु, कन जो सूरु, घटि ॿुधण में अचणु, शुगर, ब्लड प्रेशर, दिलि जा मर्ज़, फालिज, खंघु, TB, मैदे जो सूरु, मैदे जी अल्सर, तिली जो वधणु, जिगर, हेपेटाइटिस BC, गुर्दनि जो इन्फेक्शन, चेहरे जो रंग सांवरो, चेहरे जी ख़ारिश, फट फुरणियूं, ॿारनि में कद जो न वधणु, ऐं औरतुनि ऐं मर्दनि जे पोशीदा बीमारियुनि जो कामयाब इलाज कंदा आहिनि। हाणे असांजे प्रोग्राम में लाइव कॉल ज़रिए शामिलु थी सघो था, ऐं असांजे लाइव कॉल जो नंबर आहे 0301-96-8051। इन नंबर ते कॉल करे तव्हां कंहिं बि वक़्तु डॉक्टर साहिब सां राबितो करे सघो था, ऐं कंहिं बि बीमारी बाबति तव्हां ॼाण हासिलु करे सघो था।

वज़ीर आज़म शहबाज़ शरीफ तेल महांगो थियण सबबि ख़ासि रिलीफ जो ऐलान करे छॾियो। स्कीम तहत मोटरसाइकिल, रक्षा ऐं चुंगची ते माहवार 20 लीटर पेट्रोल ताईं 20 लीटर पेट्रोल ते 100 रुपया रिलीफ ॾिनो वेंदो। 800 सीसीअ ताईं नंढियूं गाॾियूं इस्तेमाल कंदड़नि खे माहवार 30 लीटर पेट्रोल ताईं 20 लीटर ते 100 रुपया रिलीफ मिलंदो। वज़ीर आज़म चयो त तेल जी क़ीमतुनि में वाध सबबि अवाम ते पवंदड़ भार जो हुकूमत खे अहसासु आहे ऐं ॾुखे वक़्त में अवाम खे अकेलो न छॾींदासीं।

हुसैन जी सऊदी अरब के कमान सेंटर से हमले की दावा सऊदी अरब के हथियारों वाले डिपू ए कमान मरकज के निशानो बनाए वो यमन के हूसी बागिन रेड सी के स्ट्रेट के बेट से भी कब्जे की दावा कई यमनी हुसैन जो चवण है सऊदी हिमायती फोर्सिस के इस्तेमाल हेठ अमरीकी ठहल बख्तर बंद टैंक से भी कब्जो कर वरतो है। अरब मीडिया मूजिब मेवन बेट के कब्जे बाद हुसैन जो बाबुल मदद से मुकम्मल कंट्रोल थी वो अंसारुल्लाह कब्जो कल इलाक़ में लखें डॉलर्स जो फौजी सामान जब्त कर वरतो है।

ईरान आबनाए हुरमस के खोलण लाइ अमरीका के सत शर्त पेश करे छॾिया। रूसी मीडिया जो चवण आहे त ईरान ट्रैकड़ी कंदड़ मुल्कनि ज़रिए अमरीका के शर्त पेश कया। तहरान सूमर ते मस्कत में इजलास जी मेज़बानी कंदो। अरब मुल्कनि खे बि दावत ॾिनी वई। नार जे मुल्कनि खे दावत नवनि रस्तनि जी तफ़सील ट्रांज़िट इंतज़ामनि खां आगाहीअ लाइ आहे। ईरानी मीडिया मूजिबि अमरीका पारां ॾखिण वारो रस्तो खोलण लाइ ज़ोर भरण बावजूद इहो रस्तो बंदि कयो वेंदो। ईरान जे कशम बेट ते वापारी जहाज ते हमलो। हमले में हिकु ॼणो मारिजी वियो, टे ज़ख़्मी। ईरानी सदर मसूद पशकियान चयो आहे त खिते जे सभिनी मुल्कनि खे गॾिजी अमन अमान क़ाइमु करणु घुर्जे। अमरीका में हिमत आहे त ईरानी फ़ौज खे मुंहुं ॾे, असांखे दबाउ ऐं धमकियुनि सां झुकाए नथो सघिजे। अमरीका जारियत बंदि करे त आबनाए हुरमस खुली वेंदो। आबनाए हुरमस बाबति सूमर ते ओमान सां माहिदे ते सहियूं थींदियूं।

0: पाकिस्तान के दहशतगर्दी से गंढण की कोशिश नाकाम। मलेशिया के वजीर आजम से एक इंटरव्यू में भारतीय टीवी चैनल के मेजबान पहलगाम वाके के पाकिस्तान से गंढण की कोशिश कई तो अनवर इब्राहिम सीधो इनकार कर। अनवर इब्राहिम चयो तो असि एजेंसी कदें अड़ी रिपोर्ट न डिनी। पाकिस्तान अजीम मुल्क है। पाक फौज हरनाई में कोयले के खान में गैस धमाके का रेस्क्यू ऑपरेशन मुकम्मल। फाथल पंज मजदूर के बचाया वो। खान में गैस धमाके के नतीजे में चार पोरत फौत पंज जख्मी थी पाया हुआ। जख्मी के इलाज लाए कोयटिया मुंतकिल कर वो। हरनाई के रहवासन बर वक्त इमदादी कार्रवाई करण से पाक फौज की सारा कहते तो पाक फौज रेस्क्यू ऑपरेशन से फाथल मजदूर की जिंदगी बची वो। वफाकी वजीर अहसन इकबाल जो जमात इस्लामी के नायब अमीर लियाकत बलोच से राबतो। हुकूमत गालन की टे दौर लाधिक एक डी की मोहरत घुरी वरती। जमात इस्लामी ए हुकूमत विच में पेट्रोलियम लेवी से गालन जो टो दौर सूमर से थियण हो। जमात इस्लामी के नायब अमीर लियाकत बलोच जो चवना है अहसन इकबाल वजीर आजम शहबाज शरीफ जो पैगाम पहुंचा। वजीर आजम चाहे तो पेट्रोलियम लेवी से गाल अंगारे से थियन। पेट्रोलियम लेवी से हुकूमत से गाल अंगारे ए आईपीपीज बाबत अरबाते थन्द। हैदराबाद में सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन खिलाफ शागिर्दन जो एहतजाज 51 डी भी जारी। शागिर्द अगवाणन मुतालबन की मान्यता लाए भुख हड़ताल शुरू कर छी। संदन चवण हो तो सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन में मेरिट के उबतड़ मनपसंद मानून के नवाजो वो। सीसी 2024 के नतीजन से भी खेन सख्त एतराज हैं। तकरारी होने बावजूद बीहर इम्तिहान वरता पे वन।
1: आप सुन रहे थे जीएफएम नेटवर्क पर केटीएन न्यूज़।

0: इरशाद ऑटोस आई होंडा शोरूम मेहरापुर होंडा मोटरसाइकिल जो पुर एतमाद आई बा अख्तियार इदारो इरशाद ऑटोस आई होंडा शोरूम मेहरापुर नईन मोटरसाइकिल जी सेल कंपनी जे मुकरर कर रेट ते दस्तयाब आहे सर्विस सेंटर एटलस होंडा लिमिटेड जो वारंटी क्लेम सेंटर सर्विस एरिया जिते होंडा मोटरसाइकिल जी बेहतरीन सर्विस कई वेंदी आहे होंडा कंपनी जा तमाम जेन्युइन स्पेयर पार्ट्स खुसूसी रियायत ते मौजूद इरशाद ऑटोस ते पंहिंजी होंडा मोटरसाइकिल जी करायो ट्रेनिंग कंप्यूटराइज जैपनीज टेस्टिंग मशीन ज़रिए जंहिंमें मिले थी मोटरसाइकिल जी कारकर्दगी तमाम बेहतर फ्यूल एडजस्टमेंट RPM जी एडजस्टमेंट कंप्यूटराइज जापानी मशीन ज़रिए कई वञे थी होंडा जे क्वालिफाइड टेक्नीशियन जी ज़ेर निगरानी इरशाद ऑटोस हालाणी रोड मेहरापुर राब्ते जे लाइ 03201800003
1: खुशखबरी अपनी जिल्द को दे नई ताजगी चमक और खूबसूरती हाइड्रा फेशियल के साथ अब फिक्र छोड़िए आपके शहर मेहरापुर में रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक लेकर आया है गहरी सफाई और फोरी ग्लो जिल्द को नरम और हाइड्रेट करे सन डैमेज और रंगत बेहतर बनाने में मददगार फेशियल रेजुविनेशन साफ तरोताजगी और जवान नजर आने वाली जिल्द जदीद टेक्नोलॉजी के साथ महफूज और मौसर स्किन केयर नोट खवातीन स्टाफ की निगरानी में की जाती है आज ही अपनी अपॉइंटमेंट बुक करवाएं पता रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक नजद रेलवे फाटक अक्सा मस्जिद थरी रोड मेहरापुर 03003385 69

0: जी हाँ दोस्तों,
1: आखिर जिसका डर था या जो होना था वो हो ही गया। पाकिस्तान को इंग्लैंड के हाथों व्हाइट वॉश से कोई नहीं बचा सका। रजाउल्लाह ने बहुत एफर्ट की, बहुत कोशिश की, मगर उनकी कोई कोशिश भी बराबर नहीं हो सकी, उनकी कोई कोशिश भी कामयाब नहीं हो सकी। और होकर रहा वो जो होना था, जो ऑन द कार्ड था। तीनों टेस्ट मैचेस बिलाकर पाकिस्तान हार गया। बहुत ही मायूस कुन, बहुत ही खराब, बहुत ही जिसे कहना चाहिए कि ऐसी कारकर्दगी जो कि बिल्कुल भी जिसे कहना चाहिए कि अप टू द मार्क नहीं है, वो पाकिस्तान ने दिखाई। तीसरे टेस्ट मैच का ही जिक्र कर रहे हैं आप, दो टेस्ट मैच तो आप देख ही चुके थे, तीसरा भी अभी जो कल खत्म हुआ है उसी की आप बात कर लें। हुआ क्या है, हुआ ये है कि उस टेस्ट मैच में फ्लैट विकेट पे यार रजाउल्लाह ने भी 81 रन बनाए और 9 छक्के लगाए। साथ साथ जो है वो इंग्लैंड ने पहली इनिंग्स में 452 और दूसरी इनिंग्स में 2 विकेट पे टारगेट चेज किया। तो पाकिस्तान ने पहली इनिंग्स ऐसी खेली, सबको हैरान कर दिया और 132 पे पूरी टीम आउट हो गई। दे वर एब्सोल्युटली नोवेयर, मतलब कि ऐसी ऐसी जैसे कहना चाहिए कि कारकर्दगी, इतनी पैथेटिक, इतनी मायूस कुन, नोबडी वाज एक्सपेक्टिंग। मैं खुद भी हैरान हूं। हमने इंग्लैंड के टूर्स पे टीमों को देखा है, 93 में जब जावेद मियांदाद वाज द कैप्टन टूर्ड इंग्लैंड, पाकिस्तान टेस्ट मैच जीता था, 2-1 से सीरीज जीता था। 96 में वसीम अकरम वाज द कैप्टन, 2-0 से हम जीते थे। 2001 में 1-1 से हम बराबर करके आए थे, वकार यूनुस वाज द कैप्टन। 2006 में भी वो ओवल टेस्ट मैच का तनाजा हो गया, वो अपनी जगह, बट पाकिस्तान वाज डूइंग अ गुड जॉब। उसके अलावा भी जो है वो आज मार के उसके अलावा भी जो है वो कई मरतबा ऐसा हुआ कि पाकिस्तान ने इंग्लैंड में अच्छी क्रिकेट खेली। इवन व्हेन मिसा टुक द साइड 2016 में, तो 2-2 से सीरीज हमने बराबर कर दी थी। मगर ये तो इस दफा कुछ ऐसा हुआ है कि 1-1-1 कैन ओनली मोर्न अबाउट दैट। एक बंदा हैरान हो सकता है, अपना स्तर पकड़ सकता है, परेशान हो सकता है, और हुए भी हैं हम सब। बहुत ही बेकार, बहुत ही दर्दनाक वो कारकर्दगी। पहले आप बांग्लादेश से बांग्लादेश में हारते हैं, बांग्लादेश से पाकिस्तान में हारते हैं, वेस्ट इंडीज से पहला टेस्ट हार जाते हैं, दूसरा फॉर्चुनेटली और अनफॉर्चुनेटली जीत जाते हैं, तीसरा टेस्ट मैच जो है वो उसके बाद इंग्लैंड से आप तीनों टेस्ट मैच हारते हैं। वो इंग्लैंड जो न्यूजीलैंड के अगेंस्ट न्यूजीलैंड में भी स्ट्रगल कर रही थी, श्रीलंका के अगेंस्ट श्रीलंका में कुछ स्ट्रगल कर रही थी, यहाँ इंग्लैंड में भी न्यूजीलैंड के अगेंस्ट स्ट्रगल कर रही थी। ऑस्ट्रेलिया से एशेज वो व्हाइट वॉश हो गया है। इंग्लैंड की टीम उस वक्त कोई बहुत अच्छी टीम नहीं है, उनके पास एंडरसन नहीं है, उनके पास ब्रॉड नहीं है, उनके पास बेन स्टोक्स नहीं है, और कोई बहुत बहुत लोग उनकी टीम से चले गए हैं। जो रूट हैज बीन गिवन द कैप्टनसी बैक अगेन, मगर पाकिस्तान ने पूरा मौका दिया जो रूट को कि अपनी कैप्टनसी को भी सुधारे, अपने बैटिंग को भी सुधारे। जो जो कुछ नहीं कर रहा वो हमारे खिलाफ हमेशा से होता है, वो करता है, एंड दैट्स एग्जैक्टली व्हाट हैपेंड तीसरे टेस्ट मैच में खास तौर पे। वो व्हाट अ बैड परफॉर्मेंस। अब उसमें एक ग्लिम्प्स ऑफ होप कह सकते हैं कि रजाउल्लाह ने पहली इनिंग्स में 4 खिलाड़ी आउट किए, बहुत तारीफ हो रही है, 150 पे बॉल कर दी, 145 पे बॉल कर, मगर लुक एट हिज फिगर इन फर्स्ट इनिंग्स, 23 ओवर 148 रन इन अ टेस्ट मैच, कोई 6.5 की इकोनॉमी रन दे रहे हैं वो, और 4 आउट कर दिए 148 रन देकर, तो हमारी तारीफों के मतलब ये कि हमारे तजिया कार भी जो हैं, अलबत्ता या ही बैटेड एक्सट्रीमली वेल, हिट स्ट्रक 9 sixes फॉर 82 और 81 व्हाट ही मेड, और उन्होंने बहुत जबरदस्त बैटिंग की, इंग्लैंड के बॉलर्स के छक्के छुड़ाए, और कुछ सबक भी दिया कि ऊपर भी बैटिंग की जा सकती थी जरा जोर लगाकर और जरा अच्छे अंदाज में, दिलेराना अंदाज में। बाबर आजम 3 इनिंग्स में बिल्कुल फेल रहे, 14 इनिंग्स में उन्होंने 76 रन बना दिए तीसरे टेस्ट मैच की दूसरी इनिंग्स में। बट एक वक्त ऐसा है जब मैं खुद भी उस वक्त टेलीविजन स्क्रीन के साथ चिपका हुआ था, मैच देख रहा था, बिकॉज बाबर एंड शकील वर प्लेइंग वेल, उन्होंने उनको शॉर्ट पिच गेंदों के जरिए पैम्पर्ड किया गया और ट्रैप

किया गया जॉफर आर्चर, रॉबिनसन और एटकिंसन की जानिब से, और बाबर आजम वॉज नोवेयर। बाबर आजम को पता ही नहीं चल रहा था किस गेंद को कहां खेलना है, क्या खेलना है। ही वॉज स्ट्रगलिंग एंड स्ट्रगलिंग बिग टाइम, स्ट्रगलिंग एंड स्ट्रगलिंग बाय ऑल मीन्स। और बिल्कुल भी बाबर आजम जो थे वो लगे नहीं कि ये वही बाबर आजम है जिनको हम जानते हैं, ये वही बाबर आजम है जिनके बारे में हम तारीफें करते रहते हैं। अब इंग्लैंड के लोग माइकल होल्डिंग, बड़े बड़े लोगों ने उनकी टेक्निक की, उनके अंदाज की, उनके कवर ड्राइव्स की, उनके स्ट्रेट ड्राइव्स की तारीफ की, मैं भी करता हूं। मगर मुझे सबसे अच्छा तबसरा स्टुअर्ट ब्रॉड का लगा जब ड्यूरिंग कमेंट्री उन्होंने कहा कि ये पाकिस्तान के टॉप ऑर्डर के बैट्समैन हैं और इतनी सी देर में ये चंद शॉर्ट पिच बॉलों से ये तो घबरा गए। तीन या चार स्ट्रोक्स उन्होंने विद इन द स्पैन ऑफ 10 मिनट्स मौके खराब स्ट्रोक खेले। एक उन्होंने पुल किया जाफरा को, वो बिल्कुल मिड विकेट के करीब से निकल गया, स्टुअर्ट ब्रॉ जो रूट के करीब से उनके राइट हैंड के। फिर वो पीछे हटे जब हैंडल नहीं हो रही थी उनसे, हुक और पुल वो मैनेज कर नहीं सकते, शोएब मलिक भी नहीं कर सकते थे और बहुत सारे नहीं कर सकते थे, हुक और पुल ही नहीं खेलना था। और कैसे आप अगेंस्ट साउथ अफ्रीका में, अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया में, इंग्लैंड में जब आपको शॉर्ट पिच स्टफ से टेस्ट किया जाएगा तो कैसे

डिफेंस करेंगे। तो उन्होंने वहां फिर पीछे हटके कट किया, पापर कट, और वो थर्ड मैन पे छक्का हो गया क्योंकि हाथ को लगकर एमिलियो गे के, और उसके बाद उन्होंने एक और खराब शॉट खेला एंड देन ही वाज ट्राइंग टू पुल वन अवे टुवर्ड्स द फाइन लेग, उन्होंने विकेट कीपर को कैच थमा दिया और अपनी जान छुड़ाई एक तरह से, मैं कहता हूँ इन्हें कहते हैं इफेक्ट अवे, भाग जाना कहीं से। सो आई मीन कोई रेजिस्टेंस, कोई टॉप क्लास काउंटर अटैक, कोई कुछ नहीं,

जैसा मैंने जिक्र किया, हम मानते हैं ऑस्ट्रेलिया में टीम हार जाती थी, ऑस्ट्रेलिया में अकरम की क्यादत में बिन सुमाम यूसुफ सब गए हार जाते थे, मगर वहां भी कोई हम मार्क छोड़ते थे। 99 में जब अकरम टीम लेके गए, 95 में तो टेस्ट में जीते थे इन सिडनी, एजाज गॉट अ बिग 100, 137 आई स्टिल रिमेम्बर, और मुश्ताक अहमद ने बहुत अच्छी बॉलिंग की थी। अच्छा 99 में भी जब हम गए हैं, सईद अनवर गॉट 100 ब्रिस्बेन, 119 रन सईद अनवर ने किए, देन इंजमाम गॉट 100 एट हॉबार्ट 118, और ऑस्ट्रेलिया 125 पे 5 आउट से 370 चेस करते हुए इन हॉबार्ट 99, मुझे अच्छी तरह याद है। वो तो फिर बहुत ही खराब अंपायरिंग की पीटर पार्कर ने, गिलक्रिस्ट को आउट नहीं दिया, लैंगर को आउट नहीं किया दिया, और बहुत सारे, और मुझे मार्क टेलर की कमेंट्री अभी तक याद है। मार्क टेलर ने कहा कि जस्ट लैंगर इज बेयरिंग हिज माउथ एंड हिज हेलमेट बेयरिंग हिज फेस, यानी अपना वो दबा रहे हैं अपने चेहरे को छुपा रहे हैं, बिकॉज ही न्यू दैट ही वाज आउट, बट बिकॉज अंपायर डिडंट रेज हिज फिंगर ही स्टूड देयर एंड स्कोर 100 एंड गिलक्रिस्ट स्कोर 100 एज वेल, और पाकिस्तान वो 370 रन चेस करवा के हार गए। कहने का मकसद ये, देन एजाज गॉट 100 एट पर्थ, नेक्स्ट मैच में भी एजाज अहमद स्कोर्ड फैंटास्टिक 116 अगेंस्ट मैग्रा, शेन वॉन एंड गिलेस्पी। अच्छा एक बात और, चाहे एजाज थे, इंजमाम, आमिर सोहेल, ये तमाम बहुत अच्छा पुल और हुक करते थे, और उसके बाद ये तमाम लोग जो थे सईद अनवर वगैरह, दे न्यू देयर क्रिकेट। अब हमारे यहाँ तो पुल और हुक, कोई शॉर्ट पिच कोई अच्छा बॉलर आ जाए उसको कर नहीं पाते बहुत। आई मीन साउथ शकील ने हालांकि कुछ अच्छे पुल किए सीरीज में, मगर इस मैच में मैंने उनको भी देखा, ही वाज आल्सो स्ट्रगलिंग अगेंस्ट द शॉर्ट पिच स्टफ। तो भैया बहुत आई डोंट नो के इन विच डायरेक्शन वी आर हेडिंग, हम किस डायरेक्शन में जा रहे हैं और क्या बनने वाला है और क्या होगा, आई डोंट नो एंड आई डोंट वॉन्ट टू नो। अब जान के क्या किया जाएगा, पीपल विल गेट एंग्री के ये बात कोई अच्छी नहीं है, लेकिन इतनी तनकीद करना, मगर बात यह है कि तनकीद की ही जानी चाहिए, और उसकी वजह यह है कि तनकीद बनती है, और अब क्या किया जाए, आई ओनली कैन वंडर अबाउट दैट, और बाकी ये कि देखते हैं क्या सूरत हाल बनती। जरूर जो है वो हम आपसे ये बातें भी करेंगे, लेकिन साथ साथ इस वक्त पहले ब्रेक पे जाने से पहले अफगानिस्तान और इंडिया के दरमियान एक मुकाबला खेला जा रहा है T20 का, उस पर जरा बात कर लेते हैं, और उसका मैं आपको बता देता हूँ इस वक्त क्या ताजा सूरत हाल है। अफगानिस्तान की टीम बैटिंग कर रही है, न्यू दिल्ली में ये मुकाबला खेला जा रहा है, और इंडिया ने टॉस जीत के जो है वो बॉलिंग का फैसला किया है एट न्यू दिल्ली। अफगानिस्तान का स्कोर है इस वक्त दूसरे ओवर के खेल में, जो लास्ट न्यूज मेरे पास आ रही है, दे आर इन फोर ओवर दे आर 38 for 2, यानी दे आर बैटिंग वेल। सदीकुल अतल इज ऑन 13 of 12 बॉल, जिसमें एक चौका और एक छक्का शामिल है, और अभी अभी एक बंदा आउट भी हुआ है, हु गॉट आउट वो आपको बता देते हैं, आपको भी पूरा स्कोर कार्ड इसका शेयर कर लेता हूँ। पर रन रेट तो अच्छा अफगानिस्तान ने, एटलीस्ट ये तो है कि वो दलेरी से क्रिकेट खेल रहे हैं, जो कि हमें नजर नहीं आती। 4 ओवरों में 38 रन, लुक्स अ गुड स्कोर। इब्राहिम जाद रहमानुल्लाह गुरबाज आउट हुए बगैर कोई रन बनाए, इब्राहिम जादराम ने 11 रन बनाए 10 गेंदों पे, 2 चौके लगाए, वो भी वो रन आउट हो गए, और गुरबाज तो कोई रन बना नहीं सके थे। अतुल ने 13 रन बना रखे 12 गेंदों, और दे हैव बीन 14 एक्स्ट्रास, सो इंडियन बॉलर्स आर कंसीडिंग एक्स्ट्रास विद ग्रेट जेनरोसिटी, दैट्स द अनदर थिंग। तो एक्स्ट्रास काफी दे रहे हैं ये, बट लेकिन उम्मीद है कि अफगानिस्तान विल गिव इंडिया गुड गुड गुड गुड बैटल और गुड फाइट इन दिस T20 मैच जो कि न्यू दिल्ली में खेला जा रहा है। बहरहाल प्रोग्राम स्पोर्ट्स राउंड अप आप सुन रहे हैं जीए एफएम रेडियो नेटवर्क पे, और मेरे यानी राणा चौहान के साथ होते हैं आप हर संडे की शाम 7 बजे से लेकर 8 बजे तक। प्रोग्राम के दूसरे हिस्से में हम जिक्र करेंगे कि वसीम अकरम ने क्या कहा है
रजाउल्ला के हवाले से, टीम के हवाले से, वो कोचिंग में क्यों नहीं आते, और बहुत सारी चीजों के हवाले से उनकी बातचीत सुनाई, मैं आपसे उनके हवाले से गुफ्तगू करूंगा। इमरान खान को लेकर बहुत सारे क्रिकेटर्स के मामला अभी भी चल रहे हैं, बहुत सारी बातें हो रही हैं, वो भी आपको सुनाएंगे, वो भी आपसे शेयर करेंगे। इसके अलावा वुमेन की जो एशिया कप खेली जा रही है, और उसका पाकिस्तान सेमीफाइनल हार गई है, और सेमीफाइनल हार

0: It's 7:30 PM. This time check is brought to you by.
1: अगर खूबसूरती चाहिए तो आर्च अपनाए. आर्च ब्यूटी क्रीम स्पार्कलिंग और दे शानदार मिरेकल ग्लो. आर्च ब्यूटी क्रीम.

0: मेरा फैन।
1: वाइट एज ब्यूटी क्रीम 5 डे ब्यूटी प्लान के साथ एलोवेरा विटामिन और एवोकाडो की भरपूर खूबियाँ, जिसके मिनरल्स स्किन में फॉली एब्जॉर्ब हो जाए, स्किन को फेयर और फ्रेश बनाए, आपको दे बेटा निखरा निखरा चेहरा। वाइट एज ब्यूटी सोप से मिले चमकता निखार ताजगी के साथ। वाइट एज ब्यूटी क्रीम, ग्लोइंग स्किन का राज। आप
2: खुशखबरी, लेजर हेयर रिमूवल गैर जरूरी बालों को खत्म करने का जदीद हल। अब फिक्र छोड़िए, आपके शहर मेहरापुर में गिम्स अस्पताल गंबर्ट जिल्द के मशहूर डॉक्टर बशीर अहमद मेमन लेकर आए हैं चेहरे, बाजू, टांगे और पूरे जिस्म के गैर जरूरी बालों को खत्म करने के लिए महफूज और मौसर ट्रीटमेंट। बार बार वेक्स और शेविंग से निजात, नरम, साफ और खूबसूरत जिल्द, कम वक्त बेहतरीन नतायज। अब गैर जरूरी बालों की फिक्र खत्म लेजर हेयर रिमूवल के साथ। आज ही राब्ता करें रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक, नज़्द रेलवे फाटक अक्सा मस्जिद, खरी रोड मेहरापुर, 03003385 69।

0: मेरा
1: फैन। White H Beauty Cream 5 Day Beauty Plan के साथ एलोवेरा vitamins और एवोकाडो की भरपूर खूबियाँ, जिसके मिनरल्स स्किन में फॉली एब्जॉर्ब हो जाएं, स्किन को फेयर और फ्रेश बनाए, आपको दे बेटा निखरा निखरा चेहरा। White H Beauty Soap से मिले चमकता निखार ताजगी के साथ। White H Beauty Cream, ग्लोइंग स्किन का राज। अ प्रोडक्ट ऑफ बायोकॉन इंटरनेशनल पाकिस्तान।
2: अस्सलाम वालेकुम अदा।
3: वालेकुम अस्सलाम अदा, छो परेशान आई?
2: अदा नओ दुकान खोलियो तम पर हले ही न तो, छा कजे?
3: अदा दुकान जी मशवरी कराई थई
2: न अदा?
4: यार आजकल शहरन तोड़े गोछन में जी मेरा पर FM 94 ही हले थो। मु पंजो दुकान खोलियो तो FM मेरा पर ते पब्लिसिटी कराई, कारोबार एड़ो कामयाब हो जो एड बंद कराण ते दिल्ली नथी चवे।
2: मुझे दुकान जी बेड हलंदी?
3: हां अदा, कारोबारी इश्तिहारात, आम इतला, मिलाद, मजलिस, सालगिरह जी मुबारक, मतलब हर किस्म जी एडवर्टाइजिंग हलंदी आए।
2: अदा जल्दी कर मुखे बुंजी एड्रेस तो बुदा।
4: ऑफिस जी मेरापुर FM 94 नज़ गर्ल्स डिग्री कॉलेज हालानी रोड मेरापुर। राबते लाए मंसूर अहमद मेमन 0301-380-8743।
5: खुशखबरी, क्या आप बालों के झड़ने से परेशान हैं? अब फिक्र छोड़िए, शहर मेहरापुर में रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक लेकर आया है बालों की जदीद और मौसर इलाज, एक्सोसोम्स एंड PRP ट्रीटमेंट के साथ बालों का झड़ना कम करने में मददगार, कमजोर जड़ों को मजबूत बनाए, नए बालों की निशोनुमा में मदद दे, बालों को घना और सेहतमंद बनाए। घने मजबूत और खूबसूरत बालों के लिए आज ही राबता करें रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक, नज़द रेलवे फाटक अक्सा मस्जिद, थरी रोड मेहरापुर, 0300-338-5569।
6: खुशखबरी, जर्मन होम्योपैथिक क्लिनिक सामू वधन बोटा पेट्रोल पंप कोटली कबीर रोड मेरापुर कराची इस्लामाबाद जो मशहूर डॉक्टर मंजूर हुसैन मेमन MA DHMS सिंध RHMP इस्लामाबाद होम्योपैथिक कंसल्टेंट एंड फैमिली फिजिशियन सीनियर लेक्चरर नवाबशाह होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज नवाबशाह हर अरबा खमीस जुमे छंछर आचर एंड सूमर ते सुबह 10 का शाम 5 बजे तक मरीजन जो इलाज कंदा आहिन। हर जुमे छंछर एंड आचर ते बगैर फीस जे चेकअप कयो वेंदो। याद रखंदा मरीजन के दवा स्टोर दा वठनी पौंदी। माहिरे अमराज नक कन गलो पुरानो नज़लो निछो मथे जो सूर नजर जी कमजोरी कन जो वण कन जो सूर घट बुधण में अचण शुगर ब्लड प्रेशर दिल जा मर्ज फालिज खंघ टीबी मादे जी अल्सर मादे जी जलन दिली जो वधण जिगर जा मर्ज हेपेटाइटिस BC गुर्दे जी पथरी मसाने जी पथरी जो बगैर ऑपरेशन जी कामयाब इलाज कयो वने थो। गुर्दन जो इन्फेक्शन चेहरे जो रंग सांवरो चेहरे की खारिश फट फुरड़ियों बारन में कद जो न वधण मर्दन एं औरतन में वजन जो न वधण उन्हें सभी बीमारियों जो कामयाब इलाज कयो वने थो। राबते लाए 0301-9196-851।
7: मेहरापुर के हो तो आवाज भी मेहरापुर की है, सुनते रहो जी FM 94।

तो पहला ओवर जरूर उन्होंने ऐसे ही खेला, लेकिन उसके बाद अगली 8 गेंदों में 18 रन इंडियन बैटर्स ने बनाए हैं एंड दे आर रियली गोइंग आफ्टर बॉलिंग एंड देयर सम अटैकिंग क्रिकेट एंड अटैकिंग स्ट्रोक्स. ये सूरत हाल है. तो बहरहाल आपको मैं बताता चलूं कि प्रोग्राम स्पोर्ट्स राउंड अप आप सुनते हैं मेरे यानी राणा अशफाक के साथ हर एतवार की शाम 7 बजे से लेकर 8 बजे तक. और अभी भी आजकल 8 बजे के करीब जो है वो ईशा की नमाज का वक्त हो जाता है और ऐसा लगता है कि काफी गहरी रात हो गई है, क्योंकि सर्दियों के दिनों में रातें लंबी और दिन छोटे होते हैं. तो बहरहाल आप जहाँ कहीं भी होंगे, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप इंजॉय कर रहे होंगे, बावजूद इसके कि हमारी क्रिकेट स्ट्रगल कर रही है, बावजूद इसके कि हमारी हॉकी स्ट्रगल कर रही है. बीइंग अ नेशन भी यकीनन कोई बहुत अच्छे मामलात नहीं है, बट स्टिल वन कैन होप कि आप जो हैं जिंदा दिली का मुजाहरा करेंगे, क्योंकि हम एक जिंदा कौम है. हार को कबूल करेंगे, पॉजिटिव टेकआउट करेंगे. कुछ पॉजिटिव रहे वो ये कि एक तो उन्होंने 81 रन की इनिंग्स खेली है 9वें 10वें नंबर पे आकर, रजाउल्ला ने वो बहुत अच्छी थी. साउथ शकील ने 2-3 अच्छी इनिंग्स खेली, पर्टिकुलरली जो 97 रन एक उन्होंने किए दैट वाज आउटस्टैंडिंग इनिंग्स. इस मैच में उन्होंने 43 और साथ साथ सेकंड इनिंग्स में भी कुछ रन किए. सो ही इज गेटिंग बैटर, होपफुली कि वो एक अच्छे जेन्युइन मिडिल ऑर्डर लेफ्ट हैंडेड बैटर की सूरत में उभर कर सामने. कोई खास मोहम्मद अब्बास ने बैटिंग भी अच्छी की, 40 प्लस रन भी किए और सेकंड इनिंग्स में जब इंग्लैंड वो बात है कि वो एक जो टेम्पो जिसे हम कहते हैं एक जो रिदम होता है वो बरकरार नहीं रख पाती पाकिस्तान की टीम, चाहे बैटिंग हो चाहे बॉलिंग हो. वन एक स्टेज पे बाबर आजम एंड साउथ शकील वाज डूइंग अ ग्रेट जॉब, लेकिन फिर एकदम विकेट गिरी एक एक करके बाद एक बाद एक 8 विकेट गिर गई. 9वीं विकेट पे जाकर कोई पार्टनरशिप लगी 127 रन की. तो कहीं ना कहीं आकर ये जो आ जाता है, मतलब कि ब्लॉक आ जाता है, आई डोंट नो, आई डोंट अंडरस्टैंड. तो ये एक इस चीज से बचना होगा, इस चीज से इज्तनाब करना होगा. बाकी यकीनन फिर भी मैं समझता हूँ कि टैलेंट को तलाश करना चाहिए, बेहतर से बेहतर फैसले लेने चाहिए. और क्या बेहतर फैसले किए जा सकते हैं, क्या चेंजिंग की जा सकती है, क्या नहीं, इस पे मजीद जो है वो प्रोग्राम के अगले हिस्से में भी बात करेंगे. इस वक्त प्रोग्राम स्पोर्ट्स राउंड अप में हम बढ़ गए स्पोर्ट्स राउंड अप में. लेट्स टेक ए ब्रेक.

कैसी परफॉर्मेंस दिखाएंगे. दोज़ आर द थिंग्स जिनका हम जिक्र कर रहे हैं, और साथ साथ जो है वो देखते हैं कौन चैंपियन बनता है, वुमेन का क्या सूरत हाल बनती है, एशिया कप का जहां तक ताल्लुक है अफगानिस्तान इंडिया में क्या सूरत हाल होती है. जस्ट अब आपको कुछ जो है वो लोकल क्रिकेट के हवाले से भी आगाह करते चलें कि पाकिस्तान की जो ग्रेड टू है थ्री डेज, उसका आगाज 19 अक्टूबर से हो रहा है. मुकाबले बहुत सारे कराची में खेले जाएंगे, कराची की मुख्तलिफ वेन्यूज को यूज किया जा रहा है, जिसमें यूबीएल स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स भी है, नेशनल स्टेडियम भी है, स्टेट बैंक का जो कॉम्प्लेक्स है वो भी है, एंड देयर आर अदर वेन्यूज एज वेल. और उसके अलावा रावलपिंडी और इस्लामाबाद की मुख्तलिफ वेन्यूज को यूज किया जाएगा. एंड देन लॉट ऑफ डोमेस्टिक क्रिकेट ऑफ पाकिस्तान इज कमिंग इन योर वे, जो कि यकीनन उससे उस पर नजर रखनी चाहिए और कोशिश करनी चाहिए टैलेंट तलाश करने की कि क्या सूरत हाल बनेंगी और किस अंदाज में जो है वो टैलेंट को तलाश किया जाएगा और कौन से खिलाड़ी कुछ उभर कर सामने आएंगे. अजान अवैस को अभी हमने कवर किया टेस्ट सीरीज में, उसके अलावा हमने उनको कवर किया था जो लास्ट मैंने डोमेस्टिक का किया था इवेंट जो है वो जिसे कहना चाहिए उसमें जो है वो अच्छे अंदाज में उस इवेंट में बड़ा जबरदस्त खेल का मुजाहरा उन्होंने किया था, खासतौर पे एबटाबाद में, एंड वहां से उन लगा था कि इनके अंदर टैलेंट है, एंड दैट्स एग्जैक्टली व्हाट ही प्रूव्ड. और फिर वहां जबरदस्त अंदाज में उन्होंने परफॉर्म किया था. तो बहरहाल अब देखना ही है कि क्या सूरत हाल बनती है और किस अंदाज से खेल जो है वो आगे बढ़ाते ही है और पाकिस्तान वाले. बहरहाल प्रोग्राम स्पोर्ट्स राउंडअप में अब इजाजत लेने का वक्त आ गया है, और इंशाल्लाह अजीज आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट संडे. तब तक अपने मेजबान राना शफाक को दीजिए इजाजत. टेक ए गुड केयर ऑफ योरसेल्फ. अल्लाह निगहबान.

0: सिंध से जुड़ी हफ्ते भर की खबरें, तकरीबात का हाल, मसाइल की सूरतेहाल, सिंध के रहने वालों के ख्याल, जानिए ये सब सिंध राउंड अप में। सिंध राउंड अप हर इतवार की शब 8 बजे सिर्फ GAFM 88 रेडियो नेटवर्क पर।
1: अस्सलाम वालेकुम सामेईन, तां बुधो पिया GAFM नेटवर्क सिंध राउंड अप संगदे माया गुलाब खान बेणा।

सिंधराम डप्पी अज अवां बुझी सकंदा सिंध में नए मकानी निज़ाम बाबत तरमीमी बिल ते गौर एम क्यू एम जमायत इस्लामी ए पीटीआई की मुखालफत लोड शेडिंग छो सिंध असेंबली पारा हेस्को सेपको के इलेक्ट्रिक चीफ 23 सेप्टेंबर से तलब मकानी चूंडू वक्त ते थींदियूं मेयर ऐं चेयरमैन एडमिनिस्ट्रेटर भी थी सघंदा बिल पेश कमेटी भी कायम जखराणी भाइरनि में इख़्तिलाफ़ घटि न थी सघिया पीपल्स पार्टी एम एन ए एजाज़ जखराणी जे नंढे भाउ भाइरनि ज़िले काउंसिल जी मेंबरशिप तां इस्तीफ़ा ॾेई छॾी गमसमी औरत स्टाफ हिरासमेंट जो शिकार केस दाख़िल जवाबदार गिरफ़्तार सिंध जे मुख़्तलिफ़ इलाइक़नि में 14 खां 16 सेप्टेंबर ताईं गजगोड़ सां बरसाति जी अॻकथी ऐं स्पेशल रिपोर्ट में अवां ॿुधी सघंदा मुंदुनि जी तब्दीली ऐं उन जा सबब सूबाई घरू वज़ीर ज़ियालु सलंजार जे सदारत हेठि सिंध असेंबली जे 12 रुकनी ख़ासि कमेटी जो पहिरियों इजलास थियो जंहिं में मकानी निज़ाम बाबति तरमीमी बिल ते ग़ौर कयो वियो इजलास दौरान एम क्यू एम जमायत इस्लामी ऐं तहरीक इंसाफ़ तरमीमी बिल खे रद्द करे छॾियो उन मौक़े ते ज़ियालु सलंजार चयो त एम क्यू एम जो बिल अञा नाहे आयो असेंबली जी इजाज़त सां ई उन ते ग़ौर कयो वेंदो हुन चयो त चूंड शेड्यूल जारी थींदे ई इंतज़ाम चूंडियल नुमाइंदनि हवाले कया वेंदा जॾहिं त एडमिनिस्ट्रेटर रुॻो रोज़ानो जा मामला हलाए सघे थो सिंध असेंबली जे स्पीकर अवेस कादर शाह हेस्को सेपको ऐं के इलेक्ट्रिक जे सीईओस खे 23 सेप्टेंबर ते हर सूरत में पार्लियामानी कमेटी आॾो पेश थियण जो पाबंद कंदे घरू वज़ीर खे हिदायत कई आहे त जेकॾहिं 3 सीईओस पेश नथा थियनि त घरू खातो संदन मौजूदगी यकीनी बणाए इजलास में पीटीआई जे एमपीए सजाद सूमरो ध्यानु छिकायो नोटिस ते ॻाल्हाईंदे चयो त लोडशेडिंग सबब लियारीअ जी आवाम अज़ाब में आहे पहिरियां हक़ ॾियनि ऐं पोइ सूबनि जी ॻाल्हि कनि जंहिं ते स्पीकर अवेस कादर शाह चयो त बिजली जो मसलो रुॻो कराचीअ जो नाहे सिंध जे माण्हुनि जे उन अहम मसले ते हेस्को सेपको ऐं के इलेक्ट्रिक ध्यानु नथा ॾियनि सीनियर वज़ीर शर्जील इनाम मेमण उन मामले ते प्रेस कॉन्फ्रेंस करे सुभाणे लोडशेडिंग ख़िलाफ़ अवामी एहतजाज कंदो त असां अवाम सां बीहंदासीं उन मौक़े ते सीनियर वज़ीर शर्जील इनाम मेमण चयो त बिजली संगीन मसलो आहे पावर वारी वज़ारत जी नाअहली ऐं मिसमेनेजमेंट करे अवाम वापारी ऐं सनतकार भोगिन था के इलेक्ट्रिक खानगाइण बावजूद लोड शेडिंग आहे के इलेक्ट्रिक हेस्को ऐं सेपको अवाम खे सर्विस ॾियण में नाकाम विया आहिनि हेठी सतह ते को मेकेनिज़म नाहे जेका बाद में पारो 50 सेंटीग्रेड हूंदे माण्हुनि खे गर्मीअ में मारियो पियो वञे अवाम जी ज़िंदगी अज़ाब में आहे रुगो बिजली न पर गैस ऐं पीअण जे पाणीअ में बि सिंध सां नाइंसाफ़ी थी रही आहे उन खां अॻु सिंध असेंबली रेंजर्स जे सिंध जी मुक़ररी में 19 जुलाई 2027 ताईं 1 साल ताईं वाद फातमदीद इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी ऐं शहीद बेनज़ीर भुट्टो रिसर्च बोर्ड जे क़याम ऐं इकरा यूनिवर्सिटी जे एक्मी तरमीमी मंज़ूरी करे वरितियूं इजलास में पाकिस्तान जे बानी क़ाइद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना खे भेटा पेश करण जो ठहराउ बि यकराए सां मंज़ूरु कयो वियो सिंधु हुकूमत मकानी इदारनि जो मुदो ख़तमु थियण खां 120 ॾींहं अॻु इलेक्शन कमीशन खे मकानी चूंडूं कराइण जूं दरख़्वास्त ॾींदी नए मकानी चूंडनि ताईं मौजूदा मेयर ऐं चेयरमैन एडमिनिस्ट्रेटर तौरु उहिदनि ते बरक़रार रहंदा सिंध जे लोकल गवर्नमेंट कानून में तरमीम लाइ बिल पेश ख़ासि कमेटी बि क़ाइमु काल्ह सिंध असेंबलीअ में लोकल बॉडीज़ एक्ट 2013 में तरमीम वारे बिल पेश कयो वियो जंहिंखे लोकल बॉडीज़ तरमीमी बिल 2026 जो नालो ॾिनो वियो मसूदे मूजिबि नए कानून तहत मेयर ऐं चेयरमैन पंहिंजो मुदो मुकमल थियण खां पोइ बि एडमिनिस्ट्रेटर तौरु कमु जारी रखे सघंदा तरमीमी बिल में तजवीज़ ॾिनी वई त मकानी इदारनि जूं चूंडूं कराइण लाइ मुदो ख़तमु थियण खां 120 ॾींहं अॻु इलेक्शन कमीशन खे लेटर लिखियो वेंदो बिल मूजिबि डिप्टी मेयर ऐं वाइस चेयरमैननि हाणे मुशरफ़ दौर जे ज़िले हुकूमतुनि जीअं लाॻापियल काउंसिल जा कन्वेनर हूंदा उहे काउंसिल जे इजलास जी सदारत पिण कंदा तरमीमी बिल तहत चेयरमैन ऐं वाइस चेयरमैन ख़िलाफ़ बेतमादी जी रिथ 2/3 जी अक्सरियत सां मंज़ूरु थी सघंदी तरमीमी बिल में कराची मेट्रोपोलिटन कारपोरेशन जे चीफ एग्ज़ीक्यूटिव खे मेट्रोपोलिटन कमिश्नर तौरु मुक़ररु करण जी तजवीज़ पिणु शामिल आहे सिंध लोकल गवर्नमेंट एक्ट तरमीमी बिल 2026 तहत SHOs UC चेयरमैननि ऐं SSPs मेयर या ज़िले चेयरमैननि सां अवामी तहफ़ुज़ ऐं अमन अमान बाबति राबितो रखंदा ऐं सलाह मशवरा कंदा बाक़ी बलदियाती नुमाइंदनि खे पुलिस जे इंतिज़ामी तहक़ीक़ाती मामलनि में मुदाख़लत करण जो अख़्तियार न हूंदो यूनियन कॉमिटियुनि ऐं
यूनियन काउंसिलनि जे चेयरमैननि खे सफ़ाई जी सूरतहाल ऐं गैरक़ानूनी अदावतुनि जी सिधी रीत सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी ॾांहुं निशानदही करण वारा इख़्तियार पिण ॾिना विया आहिनि। तरमीमी बिल में बलदियाती इदारनि खे मक़ामी नुमाइंदनि खे मौसमियाती तब्दीलियुनि ऐं बहितर ख़िदमतुनि बाबति तरबियत ॾियण लाइ पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप तहत तरबियती इदारा क़ाइमु करण जी इजाज़त ॾिनी वई आहे। तरमीमी बिल वारे मसौदे जे जाइज़ो वठण जे लाइ हिकु पार्लियामानी कमेटी पिणु जोड़ी वई, जंहिं में हुकूमत पारां सूबाई वज़ीर ज़ियाल सलंजार, सईद गनी, जाम खान शोरो, नासिर शाह, ख़ास मुआविन सलीम बलोच, समीता अफज़ाल ऐं कासिम सिराज सूमरो ऐं अपोज़िशन मां मोहम्मद तहा, इफ्तिखार आलम, मोहम्मद फारूक ऐं शब्बीर अहमद मेंबर हूंदा। जखराणी ॿाहिरनि में इख़्तिलाफ़ घटि न थी सघिया। पीपल्स पार्टी एम एन ए एजाज़ जखराणी जे नंढे भाउ ज़िले काउंसिल जे मेंबरशिप तां इस्तीफ़ा ॾेई छॾी। अॻूणे एम एन ए मरहूम मीर बाबल जखराणीअ जे पुटनि पीपी एम एन ए एजाज़ जखराणी, संदन भाइरनि ख़ालिद जखराणी, आज़ाद जखराणी विच में हलंदड़ इख़्तिलाफ़ ख़तमु न थी सघिया आहिनि। पीपल्स पार्टी एम एन ए एजाज़ जखराणी जे नंढे भाइरनि ख़ालिद जखराणी, आज़ाद जखराणी पंहिंजे ज़िले काउंसिल जी मेंबरशिप तां इस्तीफ़ा ॾेई छॾी आहे। यूसी दादपुर जागीर जे ज़िले काउंसिल मेंबर ख़ालिद जखराणी ऐं यूसी अलीपुर जे ज़िले काउंसिल जे मेंबर मीर आज़ाद जखराणी पंहिंजनि उहिदनि तां इस्तीफ़ा ॾेई छॾी, जॾहिं त मीर ख़ालिद जखराणी ॿिन्ही भाइरनि जी ॾिनल इस्तीफ़ा ॾियण जी तस्दीक कई आहे। होॾां ज़िले काउंसिल जे मेंबर तां इस्तीफ़ा ॾींदड़ एजाज़ जखराणी पंहिंजे ड्राहे पटकियल बंगले ॿाहिरां पहुची मेड़ खे ख़िताबु कंदे चयो त आउं पंहिंजो बंगलो ड्राहिण खां बचाए न सघियो आहियां, त अव्हांखे कीअं तरक़ियाती फंड ॾेई सघंदुसि। हुन राब्तो करण ते ॿुधायो त मुंहिंजी यूसीअ में ईंदड़ बजेट करप्शन जे भर चढ़ी वई आहे ऐं कुझु नथो करे सघां। करप्शन कंदड़ चेयरमैन ख़िलाफ़ एंटी करप्शन ऐं नेब खे दरख़्वास्तूं ॾिनियूं आहिनि त मुंहिंजी यूसी अलीपुर में थींदड़ रिकॉर्ड करप्शन जे मामले जो जांच करे ज़िम्मेवार ख़िलाफ़ कार्रवाई अमल में आंदी वञे। ॿिए पासे ज़रियनि खां मालूम थियो आहे त जेकमाबाद जी मालपीड़ी अॻूणे एम एन ए मरहूम मीर बाबल जखराणी जे हवाले थियल हुई, जेका मालपीड़ी उन जा नंढा पुट ख़ालिद जखराणी ऐं आज़ाद जखराणी संभालींदा हुआ, पर एम एन ए मीर एजाज़ जखराणी जा पुट ज़ैद हुसैन जखराणी जे फौत थियण खां पोइ हलंदड़ इख़्तिलाफ़ खां पोइ मालपीड़ी जो ठीको नंढनि भाइरनि ख़ालिद जखराणी ऐं आज़ाद जखराणी खां खसियो वियो। यादि रहे त पीपल्स पार्टी एम एन ए एजाज़ हुसैन जखराणीअ जे पुट ज़ैद जखराणी जे लाॾाणे खां पोइ भाइरनि में इख़्तिलाफ़ पैदा थिया हुआ। एजाज़ जखराणी पंहिंजे नंढे भाउ मीर आज़ाद जखराणी खां सोशल मीडिया ज़रिए लातालुकीअ जो इज़हार कयो हो, जंहिंखां पोइ जखराणी बिरादरीअ जे मौज़ूदी मामलात खे तय करण जी कोशिश कई वई, पर उन बावजूद मामला ठहण बदिरां वेतर ख़राब थी विया। गम्बट गम्स अस्पताल में औरत स्टाफ के गम्स मुलाजम पारा हिरासा करण जो इंकशाफ। गिम्स जे असिस्टेंट लीगल एडवाइज़र ग़ुलाम अब्बास रतड़ जे फरियाद ते गम्बट थाणे ते हिकु सुञातल एहतशाम लगारी समेत 15 अणसुञातल जवाबदारनि ख़िलाफ़ केस दाख़िल कयो वियो आहे। गिम्स अस्पताल जे असिस्टेंट लीगल एडवाइज़र ग़ुलाम अब्बास रतड़ केस में मौक़ुफ़ इख़्तियार कयो आहे त मूंखे कैंसर शोबे जी हेड डॉक्टर सबदीन शाह पाण वटि घुराए ॿुधायो त गिम्स मुलाज़िम एहतशाम लगारी औरत स्टाफ खे हिरासमेंट करण जूं शिकायतूं कयूं ऐं गिम्स मां दवाऊं चोरी करण जी पिणु शिकायतूं मिलियूं आहिनि, जंहिं बाद मां एहतशाम खे रिलीव कयो आहे। जंहिं बाद एहतशाम लिगारी मुख़्तलिफ़ नंबरनि तां मुख़्तलिफ़ डिपार्टमेंट जो कूड़ो हेठि ॼाणाए कालू कंदो हो त नेकाली नल जवाबदार खे नौकरीअ में बहाल कयो ऐं जाली आईडी ज़रिए 20 लख जी घुर कई। ॿी सूरत में क़तल ऐं अॻवा जूं पिणु धमकियूं मिलंदियूं रहियूं आहिनि। केस में नामज़द जवाबदार मुसलसल मूंखे मुख़्तलिफ़ खातनि जे सरबराह ॼाणायो ऐं हुन 15 माण्हुनि जी गैंग खां प्रेशराइज़ कराईंदो रहंदो हुयो ऐं ब्लैकमेल कंदो रहंदो हुयो। अहिड़ी फरियाद दाख़िल करे मामले जी जांच कई वञे। गम्स जे लीगल एडवाइज़र जी फरियाद ते दाख़िल केस में मुलविस जवाबदार एहतशाम लिगारी खे गम्बट पुलिस गिरफ़्तार करे वरितो आहे। मौसमियात खाते सिंध जे राजधानी कराची मुख़्तलिफ़ इलाइक़नि में 14 खां 16 सेप्टेम्बर ताईं गजगोड़ तेज़ हवाउनि ऐं वक़फ़े सां बरसाति जी अॻकथी कई आहे। मौसमियात खाते मूजिबि उत्तर ओलह नार बंगाल ऐं इंडोनेशिया जे सामूंडी इलाइक़नि में घटि दॿाउ वारी हवा जो सिस्टम मौजूदु आहे, जेको हिन वक़्तु छत्तीसगढ़ ऐं उन सां लाॻापियल इलाइक़नि मथां मौजूदु आहे ऐं उन निज़ाम जी ओलह तरफ़ वधण जो इम्कान आहे। मौसमियात खाते जो चवणु आहे त सुभाणे शाम खां 16 सेप्टेम्बर ताईं थरपारकर, उमरकोट, मीरपुर खास, बद्दीन, ठट्टो, सुजावल ऐं टंडो मोहम्मद खान में वक़फ़े सां तेज़ हवाऊं, अंधारी ऐं बरसाति जो इम्कान आहे। मौसमियात खाते जो चवणु आहे त 14 खां 16 सेप्टेम्बर ताईं सांगड़, खैरपुर, हैदराबाद, टंडो अलयार, मटियारी, शहीद वीरेंद्राबाद ऐं जामशोरो में बि अंधारीअ सां गॾु मींहुं वसी सघे थो।
मौसमियात खाते कराची लाइ बि बरसाति जी अॻकथी कंदे चयो आहे त शहर में 14 खां 16 सेप्टेम्बर ताईं गजगोड़ सां गॾु हल्की बरसाति जो इम्कान आहे, जॾहिं त अॼु ऐं सुभाणे मौसम गरम ऐं घिमियल रहण जो इम्कान पिणु आहे। मौसमियात खाते मूजिबि उन दौरान कराची में वधि खां वधि गर्मी पदु 36 खां 37 डिग्री सेंटीग्रेड ताईं रहण जो इम्कान आहे।

साल दौरान मौसम में ईंदड़ तब्दीलियूं फितरत जो एक अहम हिस्सो आइन। बहार जी खुशगवार हवाओं का वठी उन्हारे जी सख्त गर्मी, सरव जी पनछण आई सियारे जी थद तई हर मुंद पांजी अलग सुजाणप खूबसूरती असर रखे थी। मुंदुन जी तब्दीली जो बुनियादी सबब धरती जो सिज जी चौधारी गर्दिश करण आई पांजे महवर ते लगभग 23.5 दर्जा झुकियल हुजण आहे। धरती जे उन झुकाव सबब साल जे मुख्तलिफ वक्तन में सिज जी रोशनी मुख्तलिफ इलाइकन ते मुख्तलिफ अंदाज सां पवे थी, जंहिंजे नतीजे में गर्मी पद आई मौसमी तब्दीली अचे थी। बहार बहार के फितरत जी सजावट आई गुलन जी मुंद चयो वञे थो। आम तौर ते फरवरी जे विच धारे बहार जी आमद महसूस थियण शुरू थिए थी आई अप्रैल ताईं मौसम खुशगवार रहे थी। हिन मुंद में सियारे जी थद घटण लॻे थी, हवा में नरमी अचे थी आई वणनि ते नवां सावा पन फुटण सां गॾु मुख़्तलिफ़ रंगनि जा गुल टिण शुरू थियनि था। बागन पोखुनि ऐं कुदरती नज़ारनि में नओं साह पैदा थिए थो। उन्हारो उन्हारो साल जे गर्मी तरीन मुंदुनि मां हिकु आहे, जेको आम तौर ते मई खां सेप्टेम्बर ताईं जारी रहे थो। जून ऐं जुलाई में सिंध जे मुख़्तलिफ़ ऐं मुल्क जे केतिरनि ई इलाइक़नि में गर्मी पंहिंजे उरूज ते पहुची वञे थी। हिन मुंद में ॾींहं ढिघा ऐं रातियूं निस्बतनि नंढियूं थियनि थियूं। गर्मी वधण सबबि पाणीअ जी ज़रूरत बि वधी वञे थी। उन्हारे जे पोएं हिसे में ख़ासि तौरु जुलाई खां सेप्टेम्बर ताईं चौमासी जूं बरसातूं केतिरनि ई इलाइक़नि में गर्मीअ जो ज़ोर टोड़ियुनि थियूं ऐं खु़श्क ज़मीन खे नओं जीवन बख़्शनि थियूं। सरव उन्हारे खां पोइ सरव जी मुंद अचे थी, जेका आम तौर ते अक्टूबर ऐं नवंबर में महसूस कई वञे थी। हिन मुंद में गर्मी पद आहिस्ते आहिस्ते घटिजणु शुरू थिए थो ऐं हवा में खनकी पैदा थियणु लॻे थी। केतिरनि ई वणनि जा पन पीला ऐं सुकल थियनि था, पोइ छणु शुरू थियनि था। उन करे सरव खे पन छण जी मुंद पिणु चयो वेंदो आहे। हिन मुंद सियारे जी आमद जो पैगाम खणी अचण वारी मुंद जे नाले सां सॾियो वेंदो आहे। सियारो डिसंबर खां फेबरवरी जे विच ताईं सियारे जी मुंद हूंदी आहे। हीउ साल जो थधो दौरु आहे, जंहिं में ॾींहं नंढा ऐं रातियूं ढिघियूं थींदियूं आहिनि। सिंध जे उतरियनि ज़िलनि, ख़ासि तौर ते जेकमाबाद, कंबर ऐं भरपासे वारनि इलाइक़नि में सियारे दौरान थधि जो ज़ोर वधीक महसूसु थींदो आहे, जॾहिं सामूंडी इलाइक़नि जहिड़ो कराचीअ में मौसम निस्बतनि मुतादल रहंदी आहे। सियारे में माण्हू गरम कपिड़ा इस्तेमालु कंदा आहिनि, जॾहिं त केतिरनि ई इलाइक़नि में सुबुह जो कोहीड़ो पिणु ॾिसण में ईंदो आहे। मुंदुनि जे तब्दीलीअ जो साइंसी राज़ सवाल उहो आहे त आख़िर मौसम छो तब्दील थियनि था। साइंसी तौर ते उन जो बुनियादी सबबु धरतीअ जो पंहिंजे महवर ते लॻभॻि 23.5 दर्जा झुकियल हुजणु ऐं सिज जे चौधारी गर्दिश करणु आहे। जॾहिं त धरतीअ जो को हिसो सिज ॾांहुं वधीक झुकियल हूंदो आहे, त उते सिज जूं किरणूं वधीक सिधियूं पवनि थियूं ऐं गर्मी वधे थी, जंहिं सां उन्हारे जी मुंद पैदा थिए थी। उन जे उबतड़ जॾहिं सिज जूं किरणियूं कंहिं इलाइक़े ते ॾेढियूं पवनि थियूं, त गर्मी घटि पहुचे थी ऐं सियारे जी मुंद अचे थी। बहार उन्हारो सरव ऐं सियारो सिर्फ़ु मौसम जा नाला न पर फितरत जी हिकु मुसलसल तब्दीलीअ जो ख़ूबसूरत सिलसिलो आहिनि। हर मुंद इंसान जानवरनि पखियुनि ऐं वणनि फसलनि ऐं रोज़मर्रा जी ज़िंदगीअ ते पंहिंजो असरु छॾे थी। मुंदुनि जी उहा तब्दीली असांखे उहो बि ॿुधाए थी त धरती हिकु ज़िंदा ऐं मुतहरिक निज़ाम जो हिसो आहे, जिते सिज धरती ऐं कुदरत जा मुख़्तलिफ़ अमल गॾिजी ज़िंदगीअ जे रंगनि खे जनम ॾियनि था।

0: कॉलम में मौजूद आहिन फौजी बहरन लाए खुसूसी रियायत हुंदी राबते लाए फौजी अब्दुल करीम 0301-54-31-456 ऐं तौकीर अहमद 0306-16-23-793।
1: इरशाद ऑटोस ऐं होंडा शोरूम मेहरापुर होंडा मोटरसाइकिल जो पुर एतमाद ऐं बा अख्तियार इदारो इरशाद ऑटोस ऐं होंडा शोरूम मेहरापुर नईं मोटरसाइकिल जी सेल कंपनी जे मुकरर कर रेट ते दस्तयाब आहे। सर्विस सेंटर एटलस होंडा लिमिटेड जो वारंटी क्लेम सेंटर सर्विस एरिया जिते होंडा मोटरसाइकिल जी बेहतरीन सर्विस कई वेंदी आहे। होंडा कंपनी जा तमाम जेन्युइन स्पेयर पार्ट्स खुसूसी रियायत ते मौजूद। इरशाद ऑटोस ते पंहिंजी होंडा मोटरसाइकिल जी करायो ट्रेनिंग कंप्यूटराइज जैपनीज टेस्टिंग मशीन जरिए जैमे मिले थी मोटरसाइकिल जी कारकर्दगी तमाम बेहतर। फ्यूल एडजस्टमेंट आरपीएम जी एडजस्टमेंट कंप्यूटराइज जापानी मशीन जरिए कई वने थी। होंडा जे क्वालिफाइड टेक्नीशियन जी जेर निगरानी इरशाद ऑटोस हालानी रोड मेहरापुर राबते जे लाए 0320180003।
2: खुशखबरी अपनी जिल्द को दे नई ताजगी चमक और खूबसूरती हाइड्रा फेशियल के साथ। अब फिकर छोड़िए आपके शहर मेहरापुर में रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक लेकर आया है। गहरी सफाई और फोरी ग्लो जिल्द को नरम और हाइड्रेट करे सन डैमेज और रंगत बेहतर बनाने में मददगार। फेशियल रेजुविनेशन साफ तरोताजगी और जवान नजर आने वाली जिल्द जदीद टेक्नोलॉजी के साथ महफूज और मौसर स्किन केयर नोट खवातीन स्टाफ की निगरानी में की जाती है। आज ही अपनी अपॉइंटमेंट बुक करवाएं। पता रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक नजद रेलवे फाटक अक्सा मस्जिद थरी रोड मेहरापुर 0300-338-5569।
3: हर नजर आपकी खूबसूरती पर ठहर जाए और ये है मेरी खूबसूरती का राज मिल्क राइज ब्यूटी क्रीम। सिर्फ 3 दिन में जिल्द को निखारे और रंगत को रोशन करे दाग धब्बे झुर्रियां और की महा से फौरन कम करे। इस्तेमाल का आसान तरीका रात को मिल्क राइज ब्यूटी सोप से चेहरा धोएं, फिर मिल्क राइज ब्यूटी क्रीम चेहरे और गर्दन पर लगाएं। नताइज देखें सिर्फ 3 दिन में। एक्नी के लिए मिल्क राइज एक्नी क्रीम इस्तेमाल करें। दस्तियाब प्रोडक्ट्स मिल्क राइज ब्यूटी क्रीम मिल्क राइज ब्यूटी सोप मिल्क राइज एक्नी क्रीम हर अच्छे कॉस्मेटिक जर्नल स्टोर से नाम लेकर खरीदें। मजीद मालूमात के लिए मलिक जफर इकबाल एंड एम सिद्दीक शाही बाजार मेहरापुर 0300-310-5109-0300-315-109। रोशनी का काफिला मंजिल की तरफ गामजन मजहर स्कूल सिस्टम मेहरापुर शानदार तालीमी इमारत प्रोफेसर कुर्बान अली मेमन एयर कंडीशन्ड एकेडमिक ब्लॉक का इनेकार मेहनती मुशाक और तजुर्बेकार तदरीसी अमला सरसब्ज बागीचा बेहतरीन फर्नीचर शानदार कंप्यूटर फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी की लैब्स ऑडियो और विजुअल लेक्चर सिस्टम की सहूलत केमिस्ट्री फिजिक्स बायोलॉजी रियाजी और इंग्लिश पर खुसूसी तवज्जा एंट्री टेस्ट के लिए मेडिकल और इंजीनियरिंग में काबिल तहसीन नतायज खेलों का मैदान और वहां मुनक्किद होने वाले मुकाबले तहरीर तकरीर और जहनी आजमाइश के मुकाबले स्टडी टूर्स अपनी आँखों के नूर बच्चियों और प्यारे बेटों की मयारी तालीम तरबियत के लिए आज ही मजर स्कूल सिस्टम मेहरापुर का विजिट करें। मजीद राबते के लिए डॉक्टर अल्ताफ हुसैन मेमन मैनेजिंग डायरेक्टर मजर स्कूल सिस्टम 0300-002-7234 निसार अहमद मेमन प्रिंसिपल मजहर स्कूल सिस्टम मेहरापुर 0301-386-5453।
0: मेहरान आयरन स्टोर हालानी होलसेल डिपो अ नेम टू बी ट्रस्टेड
4: सरिया गार्डर टीयर एंगल चैनल पट्टी लोही दरवाजा सिल्वर जा चौंक सीमेंट रेती क्रेश आई रंग वगैरह बाजार का बारिया दस्तयाब आहिन।
0: हाने यचो मेहरान आयरन स्टोर नज बलोच पेट्रोल पंप नेशनल हाईवे हालानी
4: राबते लाए प्रोप्राइटर गुलाम नबी मुगल 0300-3204-372।

0: अस्सलाम वालेकुम अदा।
1: वालेकुम अस्सलाम अदा, छो परेशान आई?
0: अदा नओ दुकान खोलियो तम पर हले ही न तो, छा कजे?
1: अदा दुकान जी मशवरी कराई थई
0: न अदा?
2: यार आज कल शहरन तोड़े गोठन में जी मेरा पर FM 94 ही हले थो। मु पंजो दुकान खोलियो तो FM मेरा पर ते पब्लिसिटी कराई। कारोबार एड़ो कामयाब हो जो एड बंद कराण ते दिल्ली न थी चवे।
0: मुझे दुकान जी बेड हलंदी?
1: हां अदा, कारोबारी इश्तिहारात, आम इतला, मिलाद, मजलिस, सालगिरह जी मुबारक, मतलब हर किस्म जी एडवर्टाइजिंग हलंदी।
0: अदा जल्दी कर, मुखे बुंजी एड्रेस तो बुदा।
2: ऑफिस जी मेरापुर FM 94 नर्द गर्ल्स डिग्री कॉलेज हालानी रोड मेरापुर।
1: राबते लाए हाकिम अली जिसकानी
3: 03013992836।
2: मोहम्मद उमेर गोरी 0319 1557024।
4: मेहरापुर के हो तो आवाज भी मेहरापुर की है। सुनते रहो जी FM 94।

खुशखबरी जर्मन होम्योपैथिक क्लिनिक सामू वधन बोटा पेट्रोल पंप कोटली कबीर रोड मेरा पर कराची इस्लामाबाद जो मशहूर डॉक्टर मंजूर हुसैन मेमन एमए डीएचएमएस सिंध आरएचएमबी इस्लामाबाद होम्योपैथिक कंसल्टेंट एंड फैमिली फिजिशियन सीनियर लेक्चरर नवाबशाह होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज नवाबशाह हर अरबा खमीस जुमे छंछर आचर सूमर

0: पुराणो नज़लो निछो मथे जो सूर नज़र जी कमजोरी कन जो वण कन जो सूर घट ॿुधण में अचण शुगर ब्लड प्रेशर दिल जा मर्ज़ फालिज खंघ टीबी मादे जी अल्सर मादे जी जलन दिली जो वधण जिगर जा मर्ज़ हेपेटाइटिस बी सी गुर्दे जी पथरी मसाने जी पथरी जो बगैर ऑपरेशन जे कामयाब इलाज कयो वञे थो गुर्दन जो इन्फेक्शन चेहरे जो रंग सांवरो चेहरे जी ख़ारिश फट फुरड़ियूं ॿारनि में कद जो न वधण मर्दनि ऐं औरतुनि में वज़न जो न वधण उन्हनि सभिनी बीमारियुनि जो कामयाब इलाज कयो वञे थो राब्ते लाइ 0301-2196-851
1: हर नज़र आपकी खूबसूरती पर ठहर जाए और ये है मेरी खूबसूरती का राज मिल्क राइज ब्यूटी क्रीम सिर्फ 3 दिन में जिल्द को निखारे और रंगत को रोशन करे दाग धब्बे झुर्रियां और कील मुहासे फौरन कम करे इस्तेमाल का आसान तरीका रात को मिल्क राइज ब्यूटी सोप से चेहरा धोएं फिर मिल्क राइज ब्यूटी क्रीम चेहरे और गर्दन पर लगाएं नताइज देखें सिर्फ 3 दिन में एक्नी के लिए मिल्क राइज एक्नी क्रीम इस्तेमाल करें दस्तियाब प्रोडक्ट्स मिल्क राइज ब्यूटी क्रीम मिल्क राइज ब्यूटी सोप मिल्क राइज एक्नी क्रीम हर अच्छे कॉस्मेटिक जर्नल स्टोर से नाम लेकर खरीदें मजीद मालूमात के लिए मलिक जफर इकबाल एंड एम सिद्दीक शाही बाजार मेहरापुर 03000-3105-109 03000-3105-109
2: सुबह की

0: 11:45 PM. This time check is brought to you by
1: Bank Islamani Laya, Pakistan ka pehla Sharia compliant gold based financing.
2: जिंदगी गुजारियो एतमाद सा कुरान के समझी बुधंदा रहो डॉक्टर फरहत हाशमी जो प्रोग्राम तालीमुल कुरान रोजानो सुबह 9:05 PM ते सिर्फ GFM 88 नेटवर्क ते
3: मेहराबपुर के हो तो आवाज भी मेहराबपुर की है सुनते रहो GFM 94।

0: It's 9 p.m. This time check is brought to you by
1: White-ish Beauty Cream Glowing Skin Jo Raaz, a product by Biocon International Pakistan.
2: सिंध से जुड़ी हफ्ते भर की खबरें, तकरीबात का हाल, मसाइल की सूरतेहाल, सिंध के रहने वालों के ख्याल, जानिए ये सब सिंध राउंडअप में। सिंध राउंडअप हर इतवार की शब 8 बजे सिर्फ GAFM 88 रेडियो नेटवर्क पर।
3: अस्सलाम वालेकुम सामेईन, तव्हां ॿुधो पिया GAFM नेटवर्क सिंध राउंडअप सां गॾु, मां आहियां गुलाब खान भेण।

साल दौरान मौसम में ईंदड़ तब्दीलियूं फितरत जो एक अहम हिस्सो आइन। बहार जी खुशगवार हवाओं का वठी उन्हारे जी सख्त गर्मी, सरव जी पनछण ऐं सियारे जी थद ताईं हर मुंद पंहिंजी अलॻि सुञाणप, खूबसूरती ऐं असर रखे थी। मुंदुनि जी तब्दीलीअ जो बुनियादी सबबु धरतीअ जो सिज जे चौधारी गर्दिश करण ऐं पंहिंजे महवर ते लॻभॻि 23.5 दर्जा झुकियल हुजणु आहे। धरतीअ जे उन झुकाव सबबु साल जे मुख़्तलिफ़ वक़्तनि में सिज जी रोशनी मुख़्तलिफ़ इलाइक़नि ते मुख़्तलिफ़ अंदाज़ सां पवे थी, जंहिंजे नतीजे में गर्मी पद ऐं मौसमी तब्दीली अचे थी। बहार बहार के फितरत जी सजावट ऐं गुलन जी मुंद चयो वञे थो। आम तौर ते फरवरीअ जे विच धारे बहार जी आमद महसूस थियण शुरू थिए थी ऐं अप्रैल ताईं मौसम खुशगवार रहे थी। हिन मुंद में सियारे जी थधि घटिजण लॻे थी, हवा में नरमी अचे थी ऐं वणनि ते नवां सावा पन फुटण सां गॾु मुख़्तलिफ़ रंगनि जा गुल टिण शुरू थियनि था। बाग़नि, पोखुनि ऐं कुदरती नज़ारनि में नओं साह पैदा थिए थो। उन्हारो उन्हारो साल जे गर्मी तरीन मुंदुनि मां हिकु आहे, जेको आम तौर ते मई खां सेप्टेम्बर ताईं जारी रहे थो। जून ऐं जुलाई में सिंध जे मुख़्तलिफ़ ऐं मुल्क जे केतिरनि ई इलाइक़नि में गर्मी पंहिंजे उरूज ते पहुची वञे थी। हिन मुंद में ॾींहं ड्रिघा ऐं रातियूं निस्बतनि नंढियूं थियनि थियूं। गर्मी वधण सबबु पाणीअ जी ज़रूरत बि वधी वञे थी। उन्हारे जे पोएं हिसे में ख़ासि तौरु जुलाई खां सेप्टेम्बर ताईं चौमासी जूं बरसातूं केतिरनि ई इलाइक़नि में गर्मीअ जो ज़ोर टोड़ियुनि थियूं ऐं खु़श्क ज़मीन खे नओं जीवन बख़्शनि थियूं। सरव उन्हारे खां पोइ सरव जी मुंद अचे थी, जेका आम तौर ते अक्टूबर ऐं नवंबर में महसूस कई वञे थी। हिन मुंद में गर्मी पद आहिस्ते घटिजण शुरू थिए थो ऐं हवा में खनकी पैदा थियणु लॻे थी। केतिरनि ई वणनि जा पन पीला ऐं सुकल थियनि था, पोइ छण शुरू थियनि था। उन करे सरव खे पन छण जी मुंद पिणु चयो वेंदो आहे। हिन मुंद सियारे जी आमद जो पैगाम खणी अचण वारी मुंद जे नाले सां सॾियो वेंदो आहे। सियारो डिसंबर खां फेबरवरीअ जे विच ताईं सियारे जी मुंद हूंदी आहे। हीउ साल जो थधो दौरु आहे, जंहिं में ॾींहं नंढा ऐं रातियूं डिघियूं थींदियूं आहिनि। सिंध जे उतरियनि ज़िलनि, ख़ासि तौर ते जेकमाबाद, कंबर ऐं भरपासे वारनि इलाइक़नि में सियारे दौरान थधि जो ज़ोर वधीक महसूसु थींदो आहे, जॾहिं सामूंडी इलाइक़नि जहिड़ो कराचीअ में मौसम निस्बतनि मुतादल रहंदी आहे। सियारे में माण्हू गरम कपिड़ा इस्तेमालु कंदा आहिनि, जॾहिं त केतिरनि ई इलाइक़नि में सुबुह जो कोहीड़ो पिणु ॾिसण में ईंदो आहे। मुंदुनि जे तब्दीलीअ जो साइंसी राज़ सवाल उहो आहे त आख़िर मौसम छो तब्दील थियनि था। साइंसी तौर ते उन जो बुनियादी सबबु धरतीअ जो पंहिंजे महवर ते लॻभॻि 23.5 दर्जा झुकियल हुजण ऐं सिज जे चौधारी गर्दिश करणु आहे। जॾहिं त धरतीअ जो को हिसो सिज ॾांहुं वधीक झुकियल हूंदो आहे, त उते सिज जूं किरणूं वधीक सिधियूं पवनि थियूं ऐं गर्मी वधे थी, जंहिं सां उन्हारे जी मुंद पैदा थिए थी। उन जे उबतड़ जॾहिं सिज जूं किरणियूं कंहिं इलाइक़े ते ॾेढियूं पवनि थियूं, त गर्मी घटि पहुचे थी ऐं सियारे जी मुंद अचे थी। बहार, उन्हारो, सरव ऐं सियारो सिर्फ़ु मौसम जा नाला न पर फितरत जी हिकु मुसलसल तब्दीलीअ जो ख़ूबसूरत सिलसिलो आहिनि। हर मुंद इंसानु, जानवरनि, पखियुनि ऐं वणनि, फसलनि ऐं रोज़मर्रा जी ज़िंदगीअ ते पंहिंजो असरु छॾे थी। मुंदुनि जी उहा तब्दीली असांखे उहो बि ॿुधाए थी त धरती हिकु ज़िंदा ऐं मुतहरिक निज़ाम जो हिसो आहे, जिते सिज, धरती ऐं कुदरत जा मुख़्तलिफ़ अमल गॾिजी ज़िंदगीअ जे रंगनि खे जनम ॾियनि था।

0: हुयो हिन वक्त जो सिंध राउंड अप बे आचर जे सिंध राउंड अप तई गुलाब खान भेण के दिन इजाजत अल्लाह निगहबान।
1: आशिक होंडा शोरूम मेहरापुर एटलेस होंडा मोटरसाइकिल जो पुर एतमाद आई मा अख्तियार 3S डीलर आशिक होंडा मोटर्स मेहरापुर जिते नई मोटरसाइकिल जी सेल कंपनी जे मुकरर कल रेट ते दस्तियाब है। सर्विस सेंटर एटलेस होंडा लिमिटेड जो वारंटी क्लेम सेंटर सर्विस एरिया जिते होंडा मोटरसाइकिल जी बेहतरीन सर्विस कई वेंदी आहे। होंडा कंपनी जा तमाम जेन्युइन स्पेयर पार्ट्स खुसूसी रियायत ते मौजूद। आशिक होंडा मोटर्स ते पहेंजे होंडा मोटरसाइकिल जी ट्यूनिंग करायो कंप्यूटराइज जैपनी स्टेचिंग मशीन जे जरिए जिनमें मिले थी मोटरसाइकिल जी कारकर्दगी तमाम बेहतर फ्यूल एडजस्टमेंट आरपीएम जी एडजस्टमेंट

0: तौकीर अहमद 0306-1623-793।
1: जिते ढोर इंसान जी खुशहाली जो जरियो आहिन, उते सुठी खुराक ढोरन जी जरूरत आहे।
2: जी जा ढोर चारो मसालो हाजमेदार वधाए खीर ए गोश्त जी पैदावार 50 सालन खा आजमायल सखरवारन जो जी जा ढोर चारो मसालो हर पंसार ए जानवरन जे डॉक्टरन खा नालो वठी तलब कंदा।
3: हर नजर आपकी खूबसूरती पर ठहर जाए और ये है मेरी खूबसूरती का राज, मिल्क राइज ब्यूटी क्रीम। सिर्फ 3 दिन में जिल्द को निखारे और रंगत को रोशन करे, दाग धब्बे झुर्रियां और कील मुहासे फौरन कम करे। इस्तेमाल का आसान तरीका, रात को मिल्क राइज ब्यूटी सोप से चेहरा धोएं, फिर मिल्क राइज ब्यूटी क्रीम चेहरे और गर्दन पर लगाएं, नताइश देखें सिर्फ 3 दिन में। एक्नी के लिए मिल्क राइज एक्नी क्रीम इस्तेमाल करें। दस्तियाब प्रोडक्ट्स मिल्क राइज ब्यूटी क्रीम, मिल्क राइज ब्यूटी सोप, मिल्क राइज एक्नी क्रीम। हर अच्छे कॉस्मेटिक जर्नल स्टोर से नाम लेकर खरीदें। मजीद मालूमात के लिए मलिक जफर इकबाल एंड एम सिद्दीक, शाही बाजार मेहरापुर 0300-310-509-0300-510-5109।
4: इरशाद ऑटोज आई होंडा शोरूम मेहरापुर, होंडा मोटरसाइकिल जो पुर एतमाद आई बा अख्तियार इदारो। इरशाद ऑटोज आई होंडा शोरूम मेहरापुर, नईन मोटरसाइकिल जी सेल कंपनी जे मुकरर कर रेट ते दस्तयाब आहे। सर्विस सेंटर एटलेस होंडा लिमिटेड जो वारंटी क्लेम सेंटर सर्विस एरिया, जिते होंडा मोटरसाइकिल जी बेहतरीन सर्विस कई वेंदी आहे। होंडा कंपनी जा तमाम जेन्युइन स्पेयर पार्ट्स खुसूसी रियायत ते मौजूद। इरशाद ऑटोज ते पंहिंजी होंडा मोटरसाइकिल जी करायो ट्रेनिंग कंप्यूटराइज जैपनीज टेस्टिंग मशीन जरिए, जिनमें मिले थी मोटरसाइकिल की कारकर्दगी तमाम बेहतर। फ्यूल एडजस्टमेंट RPMG एडजस्टमेंट कंप्यूटराइज जापानी मशीन जरिए कई वनिए थी। होंडा जे क्वालिफाइड टेक्नीशियन जी जेर निगरानी। इरशाद ऑटोज हालानी रोड मेहरापुर, राब्ते जे लाए 0320-1800-003।
5: खुशखबरी, अपनी जिल्द को दे नई ताजगी, चमक और खूबसूरती हाइड्रा फेशियल के साथ। अब फिकर छोड़िए, आपके शहर मेहरापुर में रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक लेकर आया है। गहरी सफाई और फोरी ग्लो जिल्द को नरम और हाइड्रेट करे, सन डैमेज और रंगत बेहतर बनाने में मददगार। फेशियल रेजुविनेशन, साफ तरोताजगी और जवान नजर आने वाली जिल्द, जदीद टेक्नोलॉजी के साथ महफूज और मौसर स्किन केयर। नोट, खवातीन स्टाफ की निगरानी में की जाती है। आज ही अपनी अपॉइंटमेंट बुक करवाएं। पता, रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक, नजद रेलवे फाटक अक्सा मस्जिद, थरी रोड मेहरापुर, 0300-338-5569।
6: मेरान आयरन स्टोर हालानी, होलसेल डिपो, अ नेम टू बी ट्रस्टेड।
7: सरिया, गार्डर, टीयर, एंगल, चैनल पट्टी, लोही दरवाजा, सिल्वर जा चौंक, सीमेंट, रेती, क्रेश, रंग वगैरह बाजार का बारिया दस्तियाब आहिन।
6: हाने यचो मेहरान आयरन स्टोर, नज़द बलोच पेट्रोल पंप, नेशनल हाईवे हालानी।
7: राब्ते लाए प्रोप्राइटर गुलाम नबी मुगल, 0300-320-4372-0242-460100।

0: खुशखबरी, जर्मन होम्योपैथिक क्लिनिक सामू वधन बोटा पेट्रोल पंप कोटली कबीर रोड मेरा पर कराची इस्लामाबाद जो मशहूर डॉक्टर मंजूर हुसैन मेमन एमए डीएचएमएस सिंध आरएचएमबी इस्लामाबाद होम्योपैथिक कंसल्टेंट एंड फैमिली फिजिशियन सीनियर लेक्चरर नवाबशाह होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज नवाबशाह हर अरबा खमीस जुमे छंछर आचर एंड सूमर ते सुबह 10 का शाम 5 बजे ताई मरीजन जो इलाज कंदा आहिन हर जुमे छंछर एंड आचर ते बगैर फीस जे चेकअप कयो वेंदो याद रखंदा मरीजन के दवा स्टोर दा वठनी पौंदी माहिर अमराज नक कन गलो पुरानो नजलो निछो मथे जो सूर नजर जी कमजोरी कन जो वण कन जो सूर घट बुधन में अचन शुगर ब्लड प्रेशर दिल जा मर्ज फालिज खंग टीबी मादे जी अल्सर मादे जी जलन दिली जो वदन जिगर जा मर्ज हेपेटाइटिस बी सी गुर्दे जी पथरी मसाने जी पथरी जो बगैर ऑपरेशन जी कामयाब इलाज कयो वने तो गुर्दन जो इन्फेक्शन चेहरे जो रंग सांवरो चेहरे जी खारिश फट फुरड़ियो बारन में कद जो न वदन मर्दन एं औरतन में वजन जो न वदन उनन सबनी बीमारन जो कामयाब इलाज कयो वने तो राबते लए 0301-9196-851।
1: खुशखबरी, क्या आप बालों के झड़ने से परेशान हैं? अब फिक्र छोड़िए, शहर मेहरापुर में रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक लेकर आया है बालों की जदीद और मौसर इलाज एक्सोसोम्स एंड पीआरपी ट्रीटमेंट के साथ बालों का झड़ना कम करने में मददगार कमजोर जड़ों को मजबूत बनाए नए बालों की निशोनुमा में मदद दे बालों को घना और सेहतमंद बनाए घने मजबूत और खूबसूरत बालों के लिए आज ही राबता करें रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक नज़्द रेलवे फाटक अक्सा मस्जिद थरी रोड मेहरापुर 0300-338-5569। खुशखबरी, अपनी जिल्द को दे नई ताजगी चमक और खूबसूरती हाइड्रा फेशियल के साथ अब फिक्र छोड़िए आपके शहर मेहरापुर में रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक लेकर आया है गहरी सफाई और फोरी ग्लो जिल्द को नरम और हाइड्रेट करे सन डैमेज और रंगत बेहतर बनाने में मददगार फेशियल रेजुविनेशन साफ तरोताजगी और जवान नजर आने वाली जिल्द जदीद टेक्नोलॉजी के साथ महफूज और मौसर स्किन केयर नोट खवातीन स्टाफ की निगरानी में की जाती है आज ही अपनी अपॉइंटमेंट बुक करवाएं पता रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक नज़्द रेलवे फाटक अक्सा मस्जिद थरी रोड मेहरापुर 0300-338-5569।

ग्राउंड अप भी अज अवां बुझी सकंदा सिंध में नए मकानी निज़ाम बाबत तरमीमी बिल ते गौर एम क्यू एम जमायत इस्लामी ए पीटीआई की मुखालफत लोड शेडिंग छो सिंध असेंबली पारा हेस्को सेपको के इलेक्ट्रिक चीफ 23 सितंबर से तलब मकानी चूंडू वक्त ते थींदियूं मेयर ऐं चेयरमैन एडमिनिस्ट्रेटर भी थी सघंदा बिल पेश कमेटी भी कायम जखराणी भाइरनि में इख़्तिलाफ़ घटि न थी सघिया पीपल्स पार्टी एमएनए एजाज जखराणी जे नंढे भाउ भाइरनि ज़िले काउंसिल जी मेंबरशिप तां इस्तीफ़ा ॾेई छॾी गम्स में औरत स्टाफ हिरासमेंट जो शिकार केस दाख़िल जवाबदार गिरफ़्तार सिंध के मुख्तलिफ़ इलाक़नि में 14 खां 16 सेप्टेंबर ताईं गजगोड़ सां बरसात की अग कथी स्पेशल रिपोर्ट में अवां बुझी सकंदा मुंदुनि जी तब्दीली उन जा सबब सूबाई घरू वजीर ज़ियालु सलंजार जे सदारत हेठि सिंध असेंबली जे 12 रुकनी ख़ासि कमेटी जो पहिरियों इजलास थियो जंहिं में मकानी निज़ाम बाबति तरमीमी बिल ते ग़ौर कयो वियो इजलास दौरान एम क्यू एम जमायत इस्लामी ऐं तहरीक इंसाफ़ तरमीमी बिल खे रद्द करे छॾियो उन मौक़े ते ज़ियालु सलंजार चयो त एम क्यू एम जो बिल अञा नाहे आयो असेंबली जी इजाज़त सां ई उन ते ग़ौर कयो वेंदो हुन चयो त चूंड शेड्यूल जारी थींदे ई इंतज़ाम चूंडियल नुमाइंदनि हवाले कया वेंदा जॾहिं त एडमिनिस्ट्रेटर रुॻो रोज़ानो जा मामला हलाए सघे थो सिंध असेंबली के स्पीकर अवेस कादर शाह हेस्को सेपको के इलेक्ट्रिक के सीईओज के 23 सितंबर से हर सूरत में पार्लियामानी कमेटी आडो पेश थियण जो पाबंद कदे घरू वजीर के हिदायत कई है जैसे टई सीईओज पेश नथा थियन तो घरू खातो संदन मौजूदगी यकीनी बनाए इजलास में पीटीआई के एमपीए सजाद सूमरो ध्यान छिकाय नोटिस से गालाइंदे चयो तो लोडशेडिंग सबब लियारी की आवाम अजाब में है पहिरियां हक़ ॾियनि ऐं पोइ सूबनि जी ॻाल्हि कनि जंहिं ते स्पीकर अवेस कादर शाह चयो त बिजली जो मसलो रुॻो कराचीअ जो नाहे सिंध जे माण्हुनि जे उन अहम मसले ते हेस्को सेपको ऐं के इलेक्ट्रिक ध्यानु नथा ॾियनि सीनियर वज़ीर शर्जील इनाम मेमण उन मामले ते प्रेस कॉन्फ्रेंस करे सुभाणे लोडशेडिंग ख़िलाफ़ु अवामी एहतजाज कंदो त असां अवाम सां बीहंदासीं उन मौक़े ते सीनियर वज़ीर शर्जील इनाम मेमण चयो त बिजली संगीन मसलो आहे पावर वारी वज़ारत जी नाअहली ऐं मिसमेनेजमेंट करे अवाम वापारी ऐं सनतकार भोगिन था के इलेक्ट्रिक खानगाइण बावजूद लोड शेडिंग आहे के इलेक्ट्रिक हेस्को ऐं सेपको अवाम खे सर्विस ॾियण में नाकाम विया आहिनि हेठी सतह ते को मेकेनिज़म नाहे जेका बाद में पारो 50 सेंटीग्रेड हूंदे माण्हुनि खे गर्मीअ में मारियो पियो वञे अवाम जी ज़िंदगी अज़ाब में आहे रुगो बिजली न पर गैस ऐं पीअण जे पाणीअ में बि सिंध सां नाइंसाफ़ी थी रही आहे उन खां अॻु सिंध असेंबली रेंजर्स जे सिंध जी मुक़ररी में 19 जुलाई 2027 ताईं हिकु साल ताईं वाद फातमदीद इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी ऐं शहीद बेनज़ीर भुट्टो रिसर्च बोर्ड जे क़याम ऐं इकरा यूनिवर्सिटी जे एक्ट में तरमीमी मंज़ूरी करे वरितियूं इजलास में पाकिस्तान जे बानी क़ाइद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना खे भेटा पेश करण जो ठहराउ बि यकराए सां मंज़ूरु कयो वियो सिंधु हुकूमत मकानी इदारनि जो मुदो ख़त्मु थियण खां 120 ॾींहं अॻु इलेक्शन कमीशन खे मकानी चूंडूं कराइण जूं दरख़्वास्त ॾींदी नए मकानी चूंडनि ताईं मौजूदा मेयर ऐं चेयरमैन एडमिनिस्ट्रेटर तौरु उहिदनि ते बरक़रार रहंदा सिंध जे लोकल गवर्नमेंट कानून में तरमीम लाइ बिल पेश ख़ासि कमेटी बि क़ाइमु काल्ह सिंध असेंबलीअ में लोकल बॉडीज़ एक्ट 2013 में तरमीम वारे बिल पेश कयो वियो जंहिंखे लोकल बॉडीज़ तरमीमी बिल 2026 जो नालो ॾिनो वियो मसूदे मूजिबि नए कानून तहत मेयर ऐं चेयरमैन पंहिंजो मुदो मुकमल थियण खां पोइ बि एडमिनिस्ट्रेटर तौरु कमु जारी रखे सघंदा तरमीमी बिल में तजवीज़ ॾिनी वई त मकानी इदारनि जूं चूंडूं कराइण लाइ मुदो ख़तमु थियण खां 120 ॾींहं अॻु इलेक्शन कमीशन खे लेटर लिखियो वेंदो बिल मूजिबि डिप्टी मेयर ऐं वाइस चेयरमैननि हाणे मुशरफ़ दौर जे ज़िले हुकूमतुनि जीअं लाॻापियल काउंसिल जा कन्वेनर हूंदा उहे काउंसिल जे इजलास जी सदारत पिण कंदा तरमीमी बिल तहत चेयरमैन ऐं वाइस चेयरमैन ख़िलाफ़ु बेतमादी जी रिथ 2/3 जी अक्सरियत सां मंज़ूरु थी सघंदी तरमीमी बिल में कराची मेट्रोपोलिटन कारपोरेशन जे चीफ एग्ज़ीक्यूटिव खे मेट्रोपोलिटन कमिश्नर तौरु मुक़ररु करण जी तजवीज़ पिणु शामिल आहे सिंध लोकल गवर्नमेंट एक्ट तरमीमी बिल 2026 तहत SHOs UC चेयरमैननि ऐं SSPs मेयर या ज़िले चेयरमैननि सां अवामी तहफ़ुज़ ऐं अमन अमान बाबति राबितो रखंदा ऐं सलाह मशवरा कंदा बाक़ी बलदियाती नुमाइंदनि के पुलिस के इंतजामी तहकीकती मामलों में मुदाखलत करने जो अख्तियार न हों यूनियन कमेटी
यूनियन काउंसिलनि जे चेयरमैननि खे सफ़ाई जी सूरतहाल ऐं गैरक़ानूनी अदावतुनि जी सिधी रीत सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी ॾांहुं निशानदेही करण वारा इख़्तियार पिणु ॾिना विया आहिनि। तरमीमी बिल में बलदियाती इदारनि खे मक़ामी नुमाइंदनि खे मौसमियाती तब्दीलियुनि ऐं बहितर ख़िदमतुनि बाबति तरबियत ॾियण लाइ पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप तहत तरबियती इदारा क़ाइमु करण जी इजाज़त ॾिनी वई आहे। तरमीमी बिल वारे मसौदे जे जाइज़ो वठण जे लाइ हिकु पार्लियामानी कमेटी पिणु जोड़ी वई, जंहिं में हुकूमत पारां सूबाई वज़ीर ज़ियाल सलंजार, सईद गनी, जाम खान शोरो, नासिर शाह, ख़ास मुआविन सलीम बलोच, समीता अफज़ाल ऐं कासिम सिराज सूमरो ऐं अपोज़िशन मां मोहम्मद तहा, इफ्तिखार आलम, मोहम्मद फारूक ऐं शब्बीर अहमद मेंबर हूंदा। जखराणी ॿाहिरनि में इख़्तिलाफ़ घटि न थी सघिया। पीपल्स पार्टी एम एन ए एजाज़ जखराणी जे नंढे भाउ ज़िले काउंसिल जे मेंबरशिप तां इस्तीफ़ा ॾेई छॾी। अॻूणे एम एन ए मरहूम मीर बाबल जखराणीअ जे पुटनि पी पी एम एन ए एजाज़ जखराणी, संदन भाइरनि ख़ालिद जखराणी, आज़ाद जखराणी विच में हलंदड़ इख़्तिलाफ़ ख़तमु न थी सघिया आहिनि। पीपल्स पार्टी एम एन ए एजाज़ जखराणी जे नंढे भाइरनि ख़ालिद जखराणी, आज़ाद जखराणी पंहिंजे ज़िले काउंसिल जी मेंबरशिप तां इस्तीफ़ा ॾेई छॾी आहे। यूसी दादपुर जागीर जे ज़िले काउंसिल मेंबर ख़ालिद जखराणी ऐं यूसी अलीपुर जे ज़िले काउंसिल जे मेंबर मीर आज़ाद जखराणी पंहिंजनि उहिदनि तां इस्तीफ़ा ॾेई छॾी, जॾहिं त मीर ख़ालिद जखराणी ॿिन्ही भाइरनि जी ॾिनल इस्तीफ़ा ॾियण जी तस्दीक कई आहे। होॾां ज़िले काउंसिल जे मेंबर तां इस्तीफ़ा ॾींदड़ एजाज़ जखराणी पंहिंजे ड्राहे पटकियल बंगले ॿाहिरां पहुची मेड़ खे ख़िताबु कंदे चयो त आउं पंहिंजो बंगलो ड्राहिण खां बचाए न सघियो आहियां, त अव्हांखे कीअं तरक़ियाती फंड ॾेई सघंदुसि। हुन राब्तो करण ते ॿुधायो त मुंहिंजी यूसीअ में ईंदड़ बजेट करप्शन जे भर चढ़ी वई आहे ऐं कुझु नथो करे सघां। करप्शन कंदड़ चेयरमैन ख़िलाफ़ एंटी करप्शन ऐं नेब खे दरख़्वास्तूं ॾिनियूं आहिनि त मुंहिंजी यूसी अलीपुर में थींदड़ रिकॉर्ड करप्शन जे मामले जो जांच करे ज़िमेवार ख़िलाफ़ कार्रवाई अमल में आंदी वञे। ॿिए पासे ज़रियनि खां मालूम थियो आहे त जेकमाबाद जी मालपीड़ी अॻूणे एम एन ए मरहूम मीर बाबल जखराणी जे हवाले थियल हुई, जेका मालपीड़ी उन जा नंढा पुट ख़ालिद जखराणी ऐं आज़ाद जखराणी संभालींदा हुआ, पर एम एन ए मीर एजाज़ जखराणी जा पुट ज़ैद हुसैन जखराणी जे फौत थियण खां पोइ हलंदड़ इख़्तिलाफ़ खां पोइ मालपीड़ी जो ठीको नंढनि भाइरनि ख़ालिद जखराणी ऐं आज़ाद जखराणी खां खसियो वियो। यादि रहे त पीपल्स पार्टी एम एन ए एजाज़ हुसैन जखराणीअ जे पुट ज़ैद जखराणी जे लाॾाणे खां पोइ भाइरनि में इख़्तिलाफ़ पैदा थिया हुआ। एजाज़ जखराणी पंहिंजे नंढे भाउ मीर आज़ाद जखराणी खां सोशल मीडिया ज़रिए लातालुकीअ जो इज़हार कयो हो, जंहिंखां पोइ जखराणी बिरादरीअ जे मौज़ूदी मामलात खे तय करण जी कोशिश कई वई, पर उन बावजूद मामला ठहण बदिरां वेतर ख़राब थी विया। गम्बट गम्स अस्पताल में औरत स्टाफ के गम्स मुलाजिम पारा हिरासा करण जो इंकशाफ। गिम्स जे असिस्टेंट लीगल एडवाइज़र ग़ुलाम अब्बास रतड़ जे फरियाद ते गम्बट थाणे ते हिकु सुञातल एहतशाम लगारी समेत 15 अणसुञातल जवाबदारनि ख़िलाफ़ केस दाख़िल कयो वियो आहे। गिम्स अस्पताल जे असिस्टेंट लीगल एडवाइज़र ग़ुलाम अब्बास रतड़ केस में मौक़िफ़ इख़्तियार कयो आहे त मूंखे कैंसर शोबे जी हेड डॉक्टर सबदीन शाह पाण वटि घुराए ॿुधायो त गिम्स मुलाज़िम एहतशाम लगारी औरत स्टाफ खे हिरासमेंट करण जूं शिकायतूं कयूं ऐं गिम्स मां दवाऊं चोरी करण जी पिणु शिकायतूं मिलियूं आहिनि, जंहिं बाद मां एहतशाम खे रिलीव कयो आहे। जंहिं बाद एहतशाम लिगारी मुख़्तलिफ़ नंबरनि तां मुख़्तलिफ़ डिपार्टमेंट जो कूड़ो हेठि ॼाणाए कालू कंदो हो त नेकाली नल जवाबदार खे नौकरीअ में बहाल कयो ऐं जाली आई डी ज़रिए 20 लख जी घुर कई। ॿी सूरत में क़तल ऐं अगवा जूं पिणु धमकियूं मिलंदियूं रहियूं आहिनि। केस में नामज़द जवाबदार मुसलसल मूंखे मुख़्तलिफ़ खातनि जे सरबराह ॼाणायो ऐं हुन 15 माण्हुनि जी गैंग खां प्रेशराइज़ कराईंदो रहंदो हुयो ऐं ब्लैकमेल कंदो रहंदो हुयो। अहिड़ी फरियाद दाख़िल करे मामले जी जांच कई वञे। गम्स जे लीगल एडवाइज़र जी फरियाद ते दाख़िल केस में मुलविस जवाबदार एहतशाम लिगारी खे गम्बट पुलिस गिरफ़्तार करे वरितो आहे। मौसमियात खाते सिंध जे राजधानी कराची मुख़्तलिफ़ इलाइक़नि में 14 खां 16 सेप्टेम्बर ताईं गजगोड़ तेज़ हवाउनि ऐं वक़फ़े सां बरसाति जी अॻकथी कई आहे। मौसमियात खाते मूजिबि उत्तर ओलह नार बंगाल ऐं इंडोनेशिया जे सामूंडी इलाइक़नि में घटि दॿाउ वारी हवा जो सिस्टम मौजूदु आहे, जेको हिन वक़्तु छत्तीसगढ़ ऐं उन सां लाॻापियल इलाइक़नि मथां मौजूदु आहे ऐं उन निज़ाम जी ओलह तरफ़ वधण जो इम्कान आहे। मौसमियात खाते जो चवणु आहे त सुभाणे शाम खां 16 सेप्टेम्बर ताईं थरपारकर, उमरकोट, मीरपुर खास, बद्दीन, टटो, सुजावल ऐं टंडो मोहम्मद खान में

जून ऐं जुलाई में सिंध जे मुख़्तलिफ़ ऐं मुल्क जे केतिरनि ई इलाइक़नि में गर्मी पंहिंजे उरूज ते पहुची वञे थी। हिन मुंद में ॾींहं ड्रिघा ऐं रातियूं निस्बतन नंढियूं थियनि थियूं। गर्मी वधण सबबि पाणीअ जी ज़रूरत बि वधी वञे थी। उन्हारे जे पोएं हिसे में ख़ासि तौरु जुलाई खां सेप्टेम्बर ताईं चौमासी जूं बरसातूं केतिरनि ई इलाइक़नि में गर्मीअ जो ज़ोर टोड़ियुनि थियूं ऐं खु़श्क ज़मीन खे नओं जीवन बख़्शनि थियूं। सरउ उन्हारे खां पोइ सरउ जी मुंद अचे थी, जेका आम तौर ते अक्टूबर ऐं नवंबर में महसूसु कई वञे थी। हिन मुंद में गर्मी पद आहिस्ते आहिस्ते घटिजणु शुरू थिए थो ऐं हवा में खनकी पैदा थियणु लॻे थी। केतिरनि ई वणनि जा पन पीला ऐं सुकल थियनि था, पोइ छणु शुरू थियनि था। उन करे सरउ खे पन छण जी मुंद पिणु चयो वेंदो आहे। हिन मुंद सियारे जी आमद जो पैगाम खणी अचण वारी मुंद जे नाले सां सॾियो वेंदो आहे। सियारो डिसंबर खां फेबरवरीअ जे विच ताईं सियारे जी मुंद हूंदी आहे। हीउ साल जो थधो दौरु आहे, जंहिं में ॾींहं नंढा ऐं रातियूं डिघियूं थींदियूं आहिनि। सिंध जे उतरियनि ज़िलनि, ख़ासि तौर ते जेकमाबाद, कंबर ऐं भरपासे वारनि इलाइक़नि में सियारे दौरान थधि जो ज़ोर वधीक महसूसु थींदो आहे, जॾहिं सामूंडी इलाइक़नि जहिड़ो कराचीअ में मौसम निस्बतन मुतादल रहंदी आहे। सियारे में माण्हू गरम कपिड़ा इस्तेमालु कंदा आहिनि, जॾहिं त केतिरनि ई इलाइक़नि में सुबुह जो कोहीड़ो पिणु ॾिसण में ईंदो आहे। मुंदुनि जे तब्दीलीअ जो साइंसी राज़ सवाल उहो आहे त आख़िर मौसम छो तब्दील थियनि था। साइंसी तौर ते उन जो बुनियादी सबबु धरतीअ जो पंहिंजे महवर ते लॻभॻि 23.5 दर्जा झुकियल हुजणु ऐं सिज जे चौधारी गर्दिश करणु आहे। जॾहिं त धरतीअ जो को हिसो सिज ॾांहुं वधीक झुकियल हूंदो आहे, त उते सिज जूं किरणूं वधीक सिधियूं पवनि थियूं ऐं गर्मी वधे थी, जंहिं सां उन्हारे जी मुंद पैदा थिए थी। उन जे उबतड़ जॾहिं सिज जूं किरणियूं कंहिं इलाइक़े ते ॾेढियूं पवनि थियूं, त गर्मी घटि पहुचे थी ऐं सियारे जी मुंद अचे थी। बहार, उन्हारो, सरउ ऐं सियारो सिर्फ़ मौसम जा नाला न पर फितरत जी हिकु मुसलसल तब्दीलीअ जो ख़ूबसूरत सिलसिलो आहिनि। हर मुंद इंसान, जानवरनि, पखियुनि ऐं वणनि, फसलनि ऐं रोज़मर्रा जी ज़िंदगीअ ते पंहिंजो असरु छॾे थी। मुंदुनि जी उहा तब्दीली असांखे उहो बि ॿुधाए थी त धरती हिकु ज़िंदा ऐं मुतहरिक निज़ाम जो हिसो आहे, जिते सिजु, धरती ऐं कुदरत जा मुख़्तलिफ़ अमल गॾिजी ज़िंदगीअ जे रंगनि खे जनम ॾियनि था।